सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज सोमवार है, श्रावण मास की 19वीं तिथि तदनुसार 10 अगस्त 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, आनंद, ज्ञान आप ही हैं। वाचन स्वर है विनय ध्यानी का।
3: ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ, खुश रहो, खुशियां बांटो। न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख दुख, मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आनंद, ज्ञान आप ही हैं। वाचन स्वर्धा विनय ध्यानी का। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब वक्त हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस मातृ वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में अगला भजन शोभा माथुर के स्वर में है।

सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग। और श्रोताओं, जब ये सभी मिलते हैं तो रिश्ते और भी अनमोल हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी मिलकर कठिन समय और दर्द में हमारा साथ देते हैं। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में प्रस्तुत है कार्यक्रम की अगला भजन।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:31 स्टूडियो क्लॉक में हुए हैं और अब सुनिए इस कार्यक्रम का अंतिम भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं और अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट, और रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

आज सुबह 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डेंटल इम्प्लांट क्यों जरूरी, विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम घर गृहस्थी, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, विषय पर श्रीमती अनीता नौटियाल से वार्ता।

आज सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 का। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आज प्रसारित होगा समूह स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत। आज दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अमिता हलदर के गाए भजन।

शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा अशोक राय का सरोद वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग किरवानी। शाम 4:30 पर कार्यक्रम एक कलाकार में आज बात होगी संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश के। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर और पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित होगा शाम 5:45 पर। शाम 7:00 किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। 7:50 पर आप सुनिएगा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। आज रात 9:30 पर सुनिएंगे कार्यक्रम शेरी नशिस्त।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों के अंतर्गत, व्हाट्सएप फरमाइश में दोपहर, माफ कीजिएगा, सुबह 11 बजे। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और तत्पश्चात अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसित भारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्य भावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हर घर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यानसेवा समारब्धा। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डीएमआरसी इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य 80तमे स्वातन्त्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशा राज्ये पुनः प्रचंड वृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावन प्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावन प्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचाप व्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावन प्रवण क्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियन उज्बेकिस्तान ताश्कंद नगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्याम् स्पर्धायाम् पुरुषाणाम् 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकम् प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appealed to the citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki.
1: Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Kharse were present on the occasion. India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation. Prime Minister said he's glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Culture Ministry said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India as achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. The Ministry added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contributions across sectors. Solar energy remains the key growth engine. Jharkhand police has imposed prohibitory orders around the assembly premises and made elaborate security arrangements across Ranchi. The measures have been taken in view of today's Vidhan Sabha march called by students who have been protesting for more than 2 weeks against alleged irregularities in recruitment exams in the state. A prohibitory order has already been promulgated within a 750-meter radius of the Vidhan Sabha building from 6th to 12th of this month. Protesters allege that hundreds of students coming to the state capital from different parts of Jharkhand are being stopped by the police forcefully. The students' protest entered its 17th day today, while six of them are on hunger strike, protesting against alleged irregularities in the recruitment exams. BJP leader Amar Bauri alleged that the party's state unit president Aditya Sahu has been put under house arrest. The Indian Navy, US Navy Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command, Kochi, from today till the 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist, diving and EOD teams of the two navies. The five-day exercise will comprise subject matter expert exchanges, cross-training, equipment demonstrations and scenario-based practical exercises. In squash, India settled for the silver medal in the team event at the FISU World University Championships in Mumbai yesterday. The Indian quartet of Om Semwal, Shamina Riaz, Suraj Kumar Chand and Nirupama Dubey lost the final to Hong Kong China on game difference after the tie ended 2-2. And that is the end of this news bulletin.
3: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है शीर्षक गीत, जिसमें पहला गीत आपको फिल्म चित्रलेखा से सुना रहे हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर के युगल स्वर में।

कार्यक्रम में अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर डॉक्टर विद्या फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने चंपावत में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा की। कहा, आपदा के दौरान प्रभावित लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। UPCL के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने नवंबर तक गंगा कॉरिडोर का भूमिगत विद्युतीकरण पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और हरिद्वार कांवड़ में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर। अब तक विभिन्न राज्यों से 3,80,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में चंपावत में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष और पंचायत विभाग की बैठक हुई। उन्होंने विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जन सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में आपदा से जुड़ी विभिन्न संवेदनशील समस्याओं, रणनीतिक चुनौतियों और विभाग द्वारा की गई तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री कौशिक ने अधिकारियों को आपदा की किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित लोगों तक त्वरित व प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
5: आपदा प्रबंधन में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने आपदा से पहले की तैयारी क्या की है, आपदा के समय की तैयारी क्या है और आपदा के बाद की क्या है, जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है। और अभी आपदा प्रबंधन को लेकर जो हमें तैयारी करनी थी, हमारे सारे अधिकारी, हमारी SDRF, NDRF, ITBP, जितने हमारे फोर्सेज हैं वो सारे तैयार है, सारे विभाग तैयार है। और आपदा की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है ये हमारा, तो उस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। ऐसे की उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं है और हम इस सारे विषय को लेकर चंपावत में पूरी समीक्षा की गई और सबको आवश्यक निर्देश दिए गए।
1: अगस्त क्रांति दिवस पर कल अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने नंदा देवी मंदिर से गांधी पार्क तक रैली निकाली। इस अवसर पर गांधी पार्क में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी और स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के बदौलत भारत को आजादी मिली है, जिस कारण आज विकसित भारत सपना देखा जा रहा है।
6: अपने आप में ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारत माता की लंबी गुलामी के कारण से अंग्रेजों से लगातार संघर्षों के परिणाम में 9 अगस्त 1942 को डू एंड डाई पूरे देश भर के अंदर आंदोलित भारत माता को आजाद करने के लिए भारतवर्ष की जनता हुई, उसी के परिणाम में पूरे कुमाऊं गढ़वाल के अंदर भी क्रांति हुई, जिसके कारण से भारत माता स्वतंत्र हुई। और स्वतंत्र भारत की संकल्पना को अगर आज ही के दिन उसकी शुरुआत के साथ देश को आजादी मिली और आज उनके सपनों को साकार करने के लिए 2047 के विजन को लेकर के भारत माता विकसित भारत के रूप में देश दुनिया के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये उन सभी शहीदों के सपने पूरे हो रहे हैं।
1: उधर ऐतिहासिक कारागार अल्मोड़ा के नेहरू वार्ड में अगस्त क्रांति की 84वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और स्थानीय विधायक मनोज तिवारी सहित नगर के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों ने नेहरू वार्ड में लगी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेहरू वार्ड में आजादी के आंदोलन के दौरान कैद रहे अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
1: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने देहरादून में केंद्र पोषित आरडीएसएस योजना के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। श्री ध्यानी ने गंगा कॉरिडोर क्षेत्र ऋषिकेश में विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण के सभी 7 पैकेजों के विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निश्चित कार्य योजना के अनुसार नवम्बर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक ने आईटी ओटी बिलिंग स्काडा लॉस रिडक्शन भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सीमा चौकियों के विद्युतीकरण और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमांत गांवों के विद्युतीकरण सहित यूपीसीएल के सभी 14 विद्युत वितरण मंडलों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। हरिद्वार में अब डाक कावड़ यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। इसके चलते हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 3,80,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों को रवाना हो चुके हैं। वहीं कल 60,70,000 शिव भक्तों ने हर की पैड़ी और अन्य घाटों से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
7: मैं छठी बार कावड़ लेने आया हूँ। अब की बार व्यवस्था बहुत बढ़िया है।

0: यहाँ पे मेडिकल कैंप, खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सब बढ़िया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी सुविधा है, नहाने धोने की व्यवस्था है, पानी की, जल की, सबकी शौचालय सब चीज है।
2: पुष्प वर्षा की, इससे कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और हम हरिद्वार प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी और हरिद्वार प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
3: श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य व स्वच्छता की व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया है। प्रमुख स्नान घाटों, कांवड़ पटरी मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को विस्तार देते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की है। सूची में 121 प्रदेश कार्य समिति सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित पदेन सदस्य शामिल किए गए हैं। इस तरह प्रदेश संगठन की नई कार्य समिति में 178 नेताओं को स्थान दिया गया है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ विभिन्न संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी कार्यसमिति में जगह देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने चंपावत में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा की, कहा आपदा के दौरान प्रभावित लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। UPCL के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने नवंबर तक गंगा कॉरिडोर का भूमिगत विद्युतीकरण पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और हरिद्वार कांवड़ में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर, अब तक विभिन्न राज्यों से 3,80,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, सुनिए समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।

0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
1: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14

0: तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स।

0: आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे चार विधेयक। मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report. Ghar ghar tiranga, har
4: ghar tiranga. The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the ministry as a first of its kind initiative aimed at bringing Indians across the world together in a global celebration of the tricolour. The ministry has appealed to citizens to hoist the national flag at their homes and upload their selfies on the Har Ghar Tiranga website. The Har Ghar Tiranga campaign has emerged as a nationwide public participation initiative associated with Independence Day celebrations, encouraging citizens to display the national flag and express their connection with the country. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across

जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। इन्हीं खूबसूरत और सकारात्मक पंक्तियों के साथ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडी। श्रोताओं, निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है और इसी के चलते उत्तराखंड में भी एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके जरिए मतदाता सूची की जांच की जा रही है। मतलब सिर्फ कागज पत्र भरना ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सही व्यक्ति का सही नाम और उसकी सही जानकारी भी दर्ज हो। साथ ही साथ अपने परिवारजनों का नाम भी चेक करना ना भूलिए कि उनका नाम उसमें शामिल है या नहीं और सही तरीके से शामिल है या नहीं। और यदि एसआईआर से जुड़ा नोटिस किसी को भी मिला हो तो घबराएं नहीं, बल्कि उसे समझिए और सही समय पर उसका जवाब दीजिए। तो श्रोताओं, इस बारे में चर्चा कार्यक्रम में आगे भी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोतो, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोतो, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नोटिस से संबंधित जानकारी पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से बातचीत, साथ ही क्री गैलरी ऑफ आर्ट की विके आर्य से जानेंगे उनकी लिखी पुस्तक चुल्लू भर चांदनी के बारे में। लेकिन उससे पहले श्रोताओ, एक नज़र डालते हैं आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दून में गांधी पार्क से घंटाघर तक तिरंगे की गूंज भाजपा ने निकाली यात्रा। धर्मनगरी में डाक कांवड़ का सैलाब, आंकड़ा 4 करोड़ पार। दून घाटी के नीचे 156 मीटर तक फैला है भूजल भंडार। वाडिया इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों के अध्ययन में सामने आई भूजल की कुंडली। और NIEPVD में वार्ता के तीसरे दिन भी लिखित आश्वासन न मिलने पर गुस्साए छात्रों ने दी चेतावनी, कहा उग्र होगा आंदोलन। विदुषी निशंक को मिला प्रथम दिल्ली गौरव सम्मान। शिक्षा, न्याय, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए हुआ सम्मान। और अब खबर मौसम से जुड़ी। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल व चंपावत जिले के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली से चमकने, तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में भी भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के अखबारों की सुर्खियां। वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का।
2: छोटी सी ये दुनिया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे एसआईआर के नोटिस की। तो चलिए एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिसे हमसे आज साझा कर रहे हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
2: थैंक यू।
1: तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो अभी 19,26,000 लोगों को जो नोटिस जारी हुए हैं, उसमें क्या प्रोसेस चल रही है जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं?
2: देखिए, पूरे प्रदेश में 24,30,000 नोटिस जारी हुआ है। इस 24,30,000 नोटिस में से 19,26,000 नोटिस ऐसे हैं जहां पर एनोमलीज पाया गया है।
1: जी,
2: एनोमलीज का विभिन्न प्रकार होता है, विशेष रूप से जिसमें नाम में कुछ एरर हो सकता है, आपकी आयु में एरर हो सकता है, आपके और आपके माता पिता के एज में 15 साल से कम अथवा 50 साल से अधिक का अंतर हो सकता है, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उसमें 40 साल से कम का अंतर हो सकता है, एक परिवार में 6 से अधिक प्रोजेनीज बच्चे हो सकते हैं, तो उसको भी मैपिंग के रूप में फिर एरर के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से 19,26,000 वोटर्स जो है एनोमलीज के आधार पर चिन्हित हुए हैं, जिनको नोटिस इश्यू किया जाएगा। इसके इतर जो 5.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको मैपिंग न होने की वजह से जिनको नोटिस इश्यू हुआ है, तो उस दशा में उनको 2003 का जो एसआईआर हुआ होगा उसमें जो निर्वाचक नामावली होगी उसमें स्वयं का नाम अथवा उनके माता पिता का नाम का अभिलेख उपलब्ध कराना होगा, जिसके आधार पर उनकी मैपिंग का अभिलेख को चेक करते हुए फिर ईआरओ उनके नाम को सूची में दोबारा से दर्ज करेगा।
1: अच्छा सर, इसमें कई लोग हैं जिनके नाम अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे मामले में वो किससे संपर्क करें, क्या करें?
2: देखिए, 14 जुलाई को उत्तराखंड प्रदेश में निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हुआ है। उस सूची में जिन व्यक्तियों के द्वारा गन्ना प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराए गए थे एसआईआर के प्रथम चरण के दौरान, उन व्यक्तियों के नामों को दर्ज किया गया है और उसी आधार पर नोटिस इश्यू किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो उस सूची में अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं और उनका नाम उस सूची में किसी कारणवश छूट गया होगा, तो ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो फॉर्म 6 भरकर हमारे बीएलओ को अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म 6 को भरते हुए उपलब्ध करा सकते, जिसके आधार पर फिर एग्जामिन किया जाएगा और उसके पश्चात अगर सही अभिलेख उसमें दिखाई देते हैं तो उनके नाम को निर्वाचक नामावली की सूची में अंतिम प्रकाशन के उपरांत दर्ज किया जाएगा। और ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्य कहीं शिफ्ट हो गए हैं या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे प्रकरणों को अगर हम नाम डिलीट करना चाहते हैं तो उनको फॉर्म 7 भरने का अवसर अभी भी उपलब्ध होगा। वर्तमान अभियान के दौरान आप 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक अपना फॉर्म 6 फॉर्म 7 भरकर आवेदन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके नाम को अपने संबंध में आपको कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, कोई डेटा को ऐड करना है, ऐसी दशा में आपको फॉर्म 8 भरना अनिवार्य होगा।
1: अच्छा, तो सर ये सारी प्रक्रिया जो है फॉर्म्स भरने की, ये ऑनलाइन है या फिर हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा?
2: देखिए, वर्तमान अभियान में बीएलओ घर घर जाकर और अपने बूथ पर उपलब्ध हैं, तो जो मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर पाते हैं तो बीएलओ के पास ब्लैंक फॉर्म्स अवेलेबल हैं, फॉर्म 6, 7 और 8 के, वो उसको भरकर और सही अभिलेख के साथ में उनको जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, जिसमें आपका जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, ईसीआई नेट है और वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इस प्रकार के विभिन्न टेक्निकल टूल्स के माध्यम से भी आप अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं।
1: सर, इसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का भी प्रोसेस है, तो वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हम कब कर सकते हैं?
2: देखिए, प्रथम चरण संपन्न होने के बाद में निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हो जाती है 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई की सूची में अगर आपका नाम शामिल नहीं होता है तो उस दशा में आपको क्लेम करने का अवसर

0: प्राप्त होता है। क्लेम करने के लिए या दावा करने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। आपके दावे के आधार पर फिर आपके नाम को सूची में शामिल करने की कार्रवाई ईआरओ के द्वारा की जाएगी। अगर आपको लगता है आपके बूथ में ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है जो उस बूथ में दर्ज नहीं होना चाहिए अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम को हटाने के लिए आपको आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी। आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आपको फॉर्म 7 भरने का अवसर होता है, जो बीएलओ के माध्यम से अथवा आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं।
1: जी सर, नोटिस पीरियड जो चल रहा है वो मानसून सत्र में चल रहा है और भारी बारिश के कारण कभी कभी अलर्ट भी जारी हो जाता है। कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे हैं, तो इस दौरान वो आ नहीं सकते, तो क्या कुछ हो सकता है इसमें?
0: देखिए, ऐसे जो अभियान चल रहा होगा वहां पर बूथ लेवल पे विभिन्न अधिकारियों की तैनाती किया गया है और डेट वार रोस्टर तैयार किया गया है। तो जो व्यक्ति बूथ लेवल पर अगर उपस्थित हो जाते हैं तो उनका सुनवाई बूथ लेवल पर करने की कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। अगर आप उस डेट पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको पृथक से एक डेट उपलब्ध कराई जाएगी सुनवाई के लिए। हमारे पास में 11 सितंबर तक का समय अवेलेबल है, तो आपका जो सुनवाई होगा 11 सितंबर से पहले किसी भी डेट पर संपन्न हो सकती है। अगर आप किसी कारणवश अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो आपका परिवार का सदस्य आपकी ओर से आपकी बात को रखने के लिए वहां उपस्थित हो सकता है, और दोनों भी अगर कार्रवाई करना संभव नहीं होता है आपके लिए तो ऑनलाइन माध्यम से भी अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।
1: जी सर, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो SIR को भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है?
0: देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR अभियान के दौरान 12 डॉक्यूमेंट्स का सूची उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिव हैं। इससे इतर भी अगर आपके पास में कोई अभिलेख होगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के संबंध में, आपकी जन्म तिथि अथवा आपके निवास स्थान के संबंध में और आपके पहचान को लेकर अन्य अभिलेख अगर पुष्टि करते हैं जो इस सूची में शामिल नहीं है, तो वो अभिलेख भी आप जमा कर सकते हैं। ये सारी सूचियां BLO के पास उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर सकते हैं और उसके आधार पर अपना अभिलेख जमा कर सकते हैं।
1: तो सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ये थे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे। उम्मीद है श्रोताओं, इस जानकारी से आप लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में अगले गीत का।

0: श्रोताओं, आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं क्री गैलरी ऑफ आर्ट की विकी आर्य से, जिनकी गजल संग्रह चुल्लू भर चांदनी का आज विमोचन होने जा रहा है दून लाइब्रेरी में। तो क्या कुछ है खास इस पुस्तक में, इस बारे में सीधे बात करते हैं पुस्तक की लेखिका विकी आर्य से।
1: बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक गजल संग्रह चुल्लू भर चांदनी की खासियत क्या है?
2: इस पुस्तक की खासियत इस गजल संग्रह जो शब्द है उसी में छुपी है। गजल अपने आप में कहीं कोई शब्द नहीं है, किसी शब्द कोश में नहीं है। ये हमने ही खुद कॉइन किया है, क्योंकि जब आप कुछ भी रचना लिखते हैं, हमने ये पाया कि रचना अपने आप खुद से एक अपना अंदाज, अपनी शैली, अपना आकार, अपने शब्दों का चयन करती है और उस पर लेखक का कोई कंट्रोल नहीं होता
1: जी।
2: तो अब तक हमारे जो 7 काव्य संग्रह आ चुके हैं, उनमें से शेष जो संग्रह हैं वो बहुत छोटी कविताओं के थे। और जब जब भी कोई नया संग्रह आता था तो लगता था कि कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो जानी चाहिए, मगर वो वहाँ फिट ही नहीं होती थी। इस तरह से करते करते हमारी कई कविताएं इकट्ठा हो गई।
1: अच्छा,
2: तो जब हमने उनको एनालाइज किया तो ये पाया कि ये कविताएं हैं तो बहुत अच्छी, पर ये गजल नुमा हैं,
1: अच्छा,
2: गजल जैसी हैं। अब क्या है कि गजल अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित अंदाज में चलती है, और उसका अनुशासन, उसके व्याकरण और उसकी बंदिशों पे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो बिना बंदिशों के ही काम करने की आदत है। पर लिखते हैं तो वो ऐसी कविताएं कहाँ जाएं, तो हमने उनको नाम दिया है गजल। हिंदी की कविता का क है और गजल का जल है और मिलकर हो गया गजल। तो इस तरह से ये गजल संग्रह है, ये हिंदुस्तानी जुबान में लिखी हुई उर्दू के बहुतायत शब्दों के साथ लिखी गई रचनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं अतुकांत नहीं है बल्कि तुकांत है और एक लय में चल रही है गीतों की तरह।
1: जी,
0: तो मैम, पुस्तक के विमोचन के दौरान चुल्लू भर गीत का भी आपने जिक्र किया है,
2: क्योंकि ये एक लयबद्ध रचनाएं हैं जो लिखते हुए भी अनुभव हो रहा था कि शायद ये गाई जा सकती हैं। और संगीत का हमें कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन अपने भीतर से संगीत फूट रहा था और वो कह रहा था कि मुझे लयबद्ध होना है। तो इस तरह से ये इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। तो हमने सबसे पहले श्री अरुण भट्ट जी से, जो कि खुद अपने आप में एक बेहतरीन गजल गायक हैं, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने 2 गजल्स पे अपनी धुन बनाई और गाया। तो हमें लगा ये अब आइए डायमेंशन, जो कि असल रिबर्थ हम चाहते थे अपनी किताब का, वो हो रहा है। तो ये पुनर्जन्म है इस किताब का चुल्लू भर चांदनी का, चुल्लू भर गीतों के रूप में।
1: जी, तो एक आध कोई गीत हमारे श्रोता वो सुनना चाहेंगे?
2: जी, चुल्लू भर चांदनी के अंदर एक गजल है जिसका इस तरह से मुकड़ा है कि चांद इन हथेलियों में लूं, बन बावरा बादल फिरूं। तो लिखते लिखते भी शब्द फूट रहे थे और लय के साथ थे, तो हमने इसको कुछ इस तरह से गुनगुनाया था। चांद इन हथेलियों में लूं, और बाद में जब हमने ये रिक्वेस्ट की है अरुण भट्ट जी से, तो उन्होंने इसको इस प्रकार से ये गाया।

0: और इस
1: अच्छा
0: तरह से हमने ये गजल संग्रह से जो उठाई हैं वो सारे गजल नुमा नहीं गा कर किसी को वर्तमान के साथ जोड़ के अतीत के अंदाज में लेकर के सब तरह से लेके देखा है, क्योंकि एक एक तरह का ये गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के रंग हैं तो हर
1: बिल्कुल
0: तरह के भाव हैं।
1: बिल्कुल। और जो शीर्षक है, क्या सोचकर आपने इसका नाम चुल्लू भर चांदनी रखा?
0: दुनिया में सब कुछ है लेकिन हर इंसान के हिस्से में क्या है उसके हिस्से में जो आता है वो चुल्लू भर ही होता है, और वो भी बहुत संयोग से मिलता है। तो ये जो एक मैजिकल मोमेंट्स जिन्हें आपको कहना चाहिए, चमत्कारिक पल जिसमें आप कुछ लिख सको, आप कुछ क्रिएट कर सको, ये तो और भी रेयरेस्ट हैं। तो जब रेयरेस्ट हैं तो हमें लगा कि चुल्लू भर चांदनी एक अच्छा नाम है। आप चांदनी को चुल्लू में भर सकते हैं क्या? उसे तो फैलना ही है। तो क्या ये चुल्लू भर चांदनी में जो गजल लिखी गई है मुझ तक रह जाएंगी?
1: फैलेगी
0: ये
1: बात
0: फैलेंगे।
1: बिल्कुल। तो मैम, टोटल कितनी गजलें हैं इस पुस्तक में और कितनों को आपने संगीतबद्ध किया है?
0: चुल्लू भर चांदनी में लगभग 110 गजल हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि लगभग 48 हैं मध्यम साइज की, लगभग 15 से 20 बहुत छोटे जिनको हम केर कह रहे हैं क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो शेर नहीं है, तो चार चार लाइंस वाले बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनमें से एक अगर आप चाहें तो हम सुना सकते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो इतना करीब है कि क्या कहूँ उससे, वो इतना करीब है कि क्या कहूँ उससे, आवाज दब सी जाए है धड़कन के शोर में।
1: क्या बात है। लास्ट में हमारे तमाम श्रोता जो आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: क्री गैलरी ऑफ आर्ट के चुल्लू भर चांदनी से चुल्लू भर गीत संध्या पर आप सभी आमंत्रित हैं दून लाइब्रेरी में 10 तारीख को 4:30 बजे शाम। आप आइए और संगीत का और लोकार्पण का इस किताब के आनंद लीजिए। सभी का स्वागत है।
1: तो मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस किताब के लिए, इस गजल संग्रह के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो उम्मीद है श्रोताओं, आप लोग विकी आर्य की इस गजल संग्रह चुल्लू भर चांदनी के चुल्लू भर गीत का आनंद उठाने जरूर जाएंगे। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, बारिश का मौसम है और ऐसे में आए दिन बच्चे और बड़ों के साथ हादसे होने की सूचना सामने आ रही है। बच्चों का खास ध्यान रखें, खुली नालियों से उन्हें दूर रखें और उनका विशेष ध्यान रखें। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं और प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है राजकुमार।

श्रोताओं, जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर, है ना। किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आराधना से है।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

कश्मीर की गली फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में दो लोगों के बीच का गहरा भावनात्मक और स्नेहप्रिय रिश्ता था, जिसमें प्यार, आकर्षण और एक दूसरे की परवाह, भावनाओं का सुंदर इजहार हुआ। श्रोतों, प्यार सिर्फ एक शब्द ही तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों और एहसासों से जुड़ा हुआ होता है ना। महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे सनम से है। इस गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने और गीत लिखा है मजरूफ सुल्तानपुरी ने। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए फिल्म मेरे सनम का ये गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9:25 स्टूडियो क्लॉक में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है आशा।

कार्यक्रम का अगला गीत 1963 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना से है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। ये एक रोमांटिक गीत है जिसे शकील बदायूं ने लिखा है और रवि द्वारा रचित ये गीत शम्मी कपूर और बी सरोज देवी पर फिल्माया गया है। इन्जॉय कीजिए इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज से। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी देहरादून है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। सेहत कार्यक्रम में आज सुनिए डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय है डेंटल इम्प्लांट क्यों ज़रूरी।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रीता झा को। आप वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे डेंटल इम्प्लांट क्यों जरूरी है। डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। डेंटल इम्प्लांट क्या है?
3: डेंटल इम्प्लांट एक तरफ से कृत्रिम दांत है। कितनी बार क्या होता है, हमारा दांत निकल जाता है, वहां पे हमारी सॉकेट रहती है, तो वहां पे फिर हम नकली दांत लगाते हैं। पूरा दांत मतलब उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है इम्प्लांट, फिर अबटमेंट और फिर क्राउन। अगर आप सरल भाषा में समझें तो जो इम्प्लांट होता है उसको हम एक स्क्रू बोल सकते हैं, उसके ऊपर क्राउन से जोड़ने के लिए एक पेचकस मान लीजिए जिसको हम अबटमेंट कहते हैं। ये तीनों को मिला के इम्प्लांट बनता है।
2: डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कहते हैं कि एक ही दांत टूटा है या दो दांत ही टूटे हैं, क्या वास्तव में दांत खो जाने से जो मुंह है या हमारा जो स्वास्थ्य है इस पर कोई फर्क पड़ता है?
3: हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जब आपके दांत निकल जाते हैं, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, कितने बार बोलने में दिक्कत होती है, प्लस जो हमारा बोन होता है वहाँ पे धीरे धीरे वो गलने लगता है, तो आपकी शक्ल चेंज हो जाती है, खाना चबाने में दिक्कत होता है, बोलने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आदमी का आत्मविश्वास कम होने लगता है और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है।
2: ब्रिज है, इम्प्लांट है, इनके बीच में क्या अंतर है?
3: देखिए, जो इम्प्लांट होता है उसको बेसिकली हम ये करते हैं कि जहां से हमने दांत को निकाला है तो दांत का जो सॉकेट है उसके अंदर हम इम्प्लांट डालते हैं, उसके ऊपर फिर क्राउन बनाते हैं। ब्रिज में ऐसा होता है कि जो दांत निकला है उसके अगल बगल वाले दांतों को हम छोटा करते हैं और उसके ऊपर क्राउन लगाते हैं। तो इम्प्लांट और ब्रिज में मेन फर्क ये है कि इम्प्लांट अच्छा इसलिए है उसके कारण हमारे अगल बगल वाले दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पर जब आप ब्रिज लगाते हो तो बगल के दो दांतों को छोटा करना होता है
2: जी,
3: अगल बगल वाले का, तो उसमें वो दो दांत भी आपके क्राउन में आ जाते हैं। इम्प्लांट में सिर्फ जो दांत निकला है वही वाला दांत आपका बनेगा।
2: डॉक्टर साहब, डेंचर क्या होता है?
3: डेंचर होता है जबाड़ा, मतलब मैं अगर आम भाषा में बोलूं, कितने लोग, देखिए इम्प्लांट थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है, 16,000 से 25,000 कॉस्ट करता है, तो हर आदमी तो नहीं करा सकता
2: जी,
3: ठीक है, हमारे भारत में। तो अगर आप इम्प्लांट नहीं करा सकते हो तो आप ब्रिज के लिए जा सकते हो, जो आपने कहा था कि अगल बगल वाले दांत को छोटा करके उस पे आप क्राउन लगा के ब्रिज लगवा सकते हो। और सेकेंडली, अगर वो भी नहीं करा सकते हो तो आप निकालने लगाने वाले जो दांत होते हैं वो यूज करा सकते हो, उसको हम डेंचर कहते हैं। अगर एक दो दांत है तो उसको हम रिमूवल पार्शियल डेंचर कहते हैं, और अगर पूरा है ऊपर नीचे का जबाड़ा तो कंप्लीट डेंचर कहते हैं, तो आप वो भी लगवा सकते हो। इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा है कि हर कोई अभी इंडिया में नहीं एफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इम्प्लांट का जो पोस्ट आता है टाइटेनियम का बना होता है वो बहुत कॉस्टली है
2: जी,
3: डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी पे जाओगे तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, 8,000 से लेकर 25,000 तक का एक इम्प्लांट का कॉस्ट आ सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो कर लो। हर केस में इम्प्लांट हम कर भी नहीं सकते, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका मुंह है वो इम्प्लांट के लिए परफेक्ट है कि नहीं है, हड्डियों का क्या कंडीशन है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे आपने कहा डायबिटिक पेशेंट हो गए या कैंसर वाले पेशेंट हो गए, उनमें हम इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्राउन ब्रिज पे जा सकते हो, डेंचर्स पे जा सकते हो।
2: डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति है जिसने कई वर्षों से डेंटल इम्प्लांट नहीं

0: अगर वो चाहे कि आज मैं अपना डेंटल इम्प्लांट करा लूं तो क्या हो सकता है?
1: हाँ देखिए, हो सकता है। उसके लिए पहले उसको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। वो उसके बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह करेंगे, कुछ एक्सरेज करेंगे। अगर आसपास के दांत के हड्डियों का जो पोजीशन है वो सही होगा तो फिर वहां पे इम्प्लांट लग जाएगा, नहीं तो हड्डियां बनाई जा सकती है, बोन ग्राफ्ट किया जा सकता है, उसके बाद आप इम्प्लांट लगवा सकते हो।
0: डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बोन ग्राफ्ट किया जाता है, लोग तो छोटे से छोटे ऑपरेशन के नाम पर डर जाते हैं, आप कह रही बोन ग्राफ्ट करेंगे?
1: बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, नाम बड़ा है, आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो। वो मटेरियल आता है, उसको हम जो सॉकेट होता है वहाँ पे डाल देते हैं, जिससे थोड़े कृत्रिम बोन्स बन जाते हैं ताकि वहाँ पे इम्प्लांट इन्फ्यूज हो सके।
0: डॉक्टर रीता झा, डेंटल इम्प्लांट की जो प्रक्रिया है ये कितनी सुरक्षित है और आरामदायक भी है क्या?
1: हाँ, ये सुरक्षित है, पर बेसिकली आप जब भी इम्प्लांट कराओ बहुत अच्छे डेंटिस्ट से करवाओ जिसको नॉलेज बहुत है। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए जो दांत निकला है तो वहाँ के जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे हम एक चीरा देते हैं, फिर हड्डी में एक छेद करते हैं, उसके अंदर हम इम्प्लांट डालते हैं, फिर वो इम्प्लांट सूचस कर देते हैं, और इम्प्लांट को हड्डियों के साथ मिलने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद फिर हम अबटमेंट लगा के फिर क्राउन लगाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इम्प्लांट को हड्डियों के साथ जुड़ने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी हिदायतें हैं जिन्होंने इम्प्लांट करवाया है उन्हें अपनानी चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखना चाहिए, स्मोकिंग आपको कम करना चाहिए। मेनली ये दो चीज ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आपने इम्प्लांट कराया है, आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ही हाइजीनिक होने चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा तो आपके इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस आपकी जो बाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ये आपका डॉक्टर चेक करेगा। बहुत ही ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे तो भी और बाइट प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है।
0: क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है?
1: हाँ, करवा सकता है, बस 21 साल के बाद के जो युवक होते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है। पर मेन चीज है कि आपका जो बोन हेल्थ है वो कितना स्ट्रांग है, आपकी हड्डियां जो है जबाड़े की कितने अच्छे पोजीशन में है कि वो इम्प्लांट को अच्छे से होल्ड कर सकती है।
0: डॉक्टर साहब, कुछ लोग किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई या कुछ अन्य बीमारियां हो गई, क्या ये लोग भी डेंटल इम्प्लांट करा सकते हैं?
1: नहीं, अगर बहुत हाईली डायबिटिक हैं और डायबिटीज उनका कंट्रोल में नहीं रहता है तो उस केसेस में आप इम्प्लांट नहीं करवाते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट हैं उनमें भी मना करते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी चलती हैं जो आपके बोन्स को बनने नहीं देती है। फिर जिनका इम्यूनिटी लो है, जैसे आपके HIV के पेशेंट्स हो गए, एड्स के पेशेंट्स हो गए, उनमें भी हम इम्प्लांट्स मना करते हैं। और मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मसूड़ों की दिक्कत है तो भी आप में इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इम्प्लांट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, एक सक्सेसफुल इम्प्लांट के लिए व्यक्ति को जिसका डेंटल इम्प्लांट हुआ है उसे कौन सी आदतें अपनानी चाहिए?
1: उसके लिए उनको अपने मसूड़े स्वस्थ रखना चाहिए, अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मसूड़े संक्रमित ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो करेगा और आपके बोन्स धीरे धीरे डिजेनरेट होंगे। तो एक वो हो गया, स्मोकिंग कम करना चाहिए, ड्रिंकिंग कम करना चाहिए। अगर कोई कैंसर वाले पेशेंट है तो उनको नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ मेडिसिन चलती हैं जो बोन्स को प्रॉपरली फ्यूज नहीं होने देती हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, क्या डेंटल इम्प्लांट के बाद कुछ कठोर चीजें होती हैं, जैसे चने चबाना, गन्ने खाना या इस तरह की और चीजें खा
1: खा
0: सकते
1: सकते
0: हैं?
1: हैं, हाँ आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है।
0: डॉक्टर साहब, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इसमें बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देते हैं डेंटल इम्प्लांट को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेके?
1: देखिए, सोशल मीडिया तो आजकल आपको कुछ भी भेज सकता है, मतलब सोशल मीडिया आपको सही भी बता सकता है, गलत भी बता सकता है। पर जो आपको इम्प्लांट लगाना है या कौन सा लगवाना है या आपका जो माउथ है, मतलब आप इम्प्लांट के लिए परफेक्ट पेशेंट हो या न ना हो, ये आपका डेंटिस्ट ही तय कर सकता है, सोशल मीडिया आपको नहीं बता सकता। गूगल आपको नॉलेज दे सकता है इम्प्लांट के बारे में, पर जो फिजिकल पोजीशन है आपके माउथ की वो आपका डेंटिस्ट ही तय करेगा कि आप इम्प्लांट के लिए फिट हो या नहीं हो।
0: डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट की जो सफलता दर है वो कितनी है?
1: 99% सफल होता है इनके, वही है मैंने आपको बताया कि पेशेंट उसको कितना प्रॉपरली मैनेज करता है, कितनी सफाई रखता है, उसको अपना डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप पे जाना चाहिए। देखिए, अगर इम्प्लांट को आप प्रॉपरली माउथ मेंटेन करेंगे, डेंटल हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो आपका इम्प्लांट सफल ही रहेगा। आप स्मोकिंग कम करेंगे, ड्रिंक कम करेंगे, बेसिकली आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या गम्स रिसाइड नहीं करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति डेंटल इम्प्लांट करवाना चाह रहा है

0: अच्छा, ये इम्प्लांट के लिए।
1: डेंटल इम्प्लांट के लिए किसी व्यक्ति को कितने बार क्लिनिक जाना पड़ेगा या
0: देखिए,
1: हॉस्पिटल जाना
0: हाँ,
1: पड़ेगा?
0: डेंटल इम्प्लांट ना थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। जैसे आप पहली बार आओगे तो स्कैन वगैरह होगा, उसके बाद इम्प्लांट को हम हड्डियों में डाल के छोड़ देते हैं। इम्प्लांट को हड्डियों में फ्यूज होने में कम से कम 3 से 6 महीना लगता है,
1: जी
0: डिपेंड करता है, हर पेशेंट में अलग होता है हीलिंग किसका कितना है।
1: जी
0: उसके बाद फिर पेशेंट आएगा 6 महीने के बाद, उसके बाद हम अबटमेंट लगाते हैं उसको, फिर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते।
1: जी
0: उसके बाद हम क्राउन लगाते हैं, तो आप मान के चलिए प्रॉपर इम्प्लांट में 7 से 9 महीने लगते हैं। तो आजकल ऐसा भी होता है कि आप इम्प्लांट डाल देते हो, उसके बाद आप टेम्पररी टूथ उसके ऊपर लगा देते हो। जब प्रॉपरली इम्प्लांट फ्यूज हो जाता है तो फिर से प्रोसेस करके परमानेंट क्राउन लगा देते हो।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत से इस तरह के लोग भी देखे हैं जिन्होंने इम्प्लांट करवाया और क्राउन नहीं लगवाया, या अबेटमेंट जो आप कह रही वो नहीं लगवाया।
0: देखिए, इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू है जो आपके हड्डी में जा रहा है, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप इम्प्लांट के साथ दांत नहीं लगाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है, है ना। इम्प्लांट क्या है? एक स्क्रू है जो आपके जबाड़े के अंदर है, वो तो दिखाई नहीं देगा। उसका तो मेन काम है कि वो फिर जब आप अबटमेंट लगाओगे और उसके ऊपर पोस्ट लगाओगे तभी
1: जी
0: आपका दांत दिखाई देगा, आप खाना खा पाओगे। आप किस लिए करवा रहे हो इम्प्लांट? मेन तो यह है कि आपके दांत दिखने चाहिए ना।
1: अगर कोई आगे के दांत में करवा रहा है।
0: इम्प्लांट हम तभी लगाते हैं जब पूरा दांत टूट चुका होता है, राइट, तो वहां पे तो एक स्पेस आ ही चुका है।
1: जी
0: अगर आप खाली पोस्ट डाल के छोड़ दोगे तो आपको क्या फायदा होगा?
1: डॉक्टर को कितने समय बाद दिखाते रहना चाहिए?
0: देखिए, पहले सेटिंग तो उसकी 14-15 दिन बाद होगी ताकि डॉक्टर देख सके कि सब कुछ प्रॉपरली है कि नहीं है, और 6 महीने के बाद डॉक्टर को विजिट करना चाहिए।
1: हर 6 महीने के बाद।
0: हाँ,
1: डॉक्टर साहब, जो डेंटल इम्प्लांट है जीवन भर चल सकता है?
0: 20 से 25 साल तो आराम से चलता है।
1: इम्प्लांट है, ठीक से ना हो तो व्यक्ति कैसे जानेगा
0: हाँ,
1: कि
0: देखिए,
1: उसका
0: ये
1: जो इम्प्लांट है वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है?
0: इम्प्लांट अगर ठीक से नहीं होता है तो कितनी बार आपको बहुत तेज दर्द होगा।
1: जी
0: इम्प्लांट करने के नॉर्मली भी कुछ दिन, मतलब 2-3 दिन तक आपको दर्द रहेगा, ये नॉर्मल है। आपको अगर बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है,
1: जी
0: ठीक है, वो पता चल जाएगा। अगर आपका कितनी बार क्या होता है ना, इम्प्लांट को आप नस के पास लगा देते हो तो आपको नमनेस आ जाएगी मसूड़ों में। ऊपर के दांत की जगह पे आपको साइनस का प्रॉब्लम आ सकता है, साइनस के एरिया अगर टच कर रहे हैं तो। सेकेंडली, आपके अगर मसूड़ों में पस आ रहा है, बन रहा है,
1: जी
0: तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका इम्प्लांट सक्सेस नहीं हुआ है।
1: जी
0: और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हिल रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे।
1: डॉक्टर साहब, इम्प्लांट के बाद व्यक्ति कौन कौन सी सावधानियां अपनाए?
0: देखिए, इम्प्लांट के बाद बेसिकली ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से रखे अपना। जो उनका अगर बाइट में कोई प्रॉब्लम है, किसी किसी की जो बाइट होती है, मतलब जो चबाने वाले दांत होते हैं थोड़े अलग हो जाते हैं, माल अक्लूजन हो जाए, वो सब उसको देखना पड़ेगा कि जो है वो करे, प्लस स्मोकिंग कम करे, ड्रिंकिंग कम करे सबका।
1: डॉक्टर रीता जी, कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो समय समय पर उन्हें MRI, CT या एक्सरे कराने पड़ते हैं। MRI को लेकर खास तौर से कहा जाता है बहुत ही डेंजरस जांच है, अगर कोई मेटल का हमारे अंदर इम्प्लांट हो रखा है तो। क्या डेंटल इम्प्लांट के बाद MRI सुरक्षित है, करवाया जा सकता है?
0: हाँ, डेंटल इम्प्लांट के बाद आप करवा सकते हो, क्योंकि इसमें जो टाइटेनियम और जिरकोनिया यूज होते हैं वो नॉन फेरेटिक मेटल है, उससे आपको MRI कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप हार्ट का देखोगे, उसमें अगर आपके स्टंट पड़े हैं तो आप MRI नहीं करा सकते हो। बॉडी के किसी और पार्ट में आपके रॉड वगैरह लगे हैं तो नहीं करा सकते हो, पर डेंटल इम्प्लांट में जो मटेरियल यूज होता है वो काफी सेफ है MRI के लिए, आप करवा सकते हो।
1: डॉक्टर रीता जी, अभी आपने टाइटेनियम की बात की, क्या टाइटेनियम सभी की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है या कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि बॉडी टाइटेनियम को
0: बहुत
1: एक्सेप्ट ही ना कर रही हो?
0: बहुत रेयर केसेस है जहाँ नहीं करते हैं। जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, बहुत तरह के आते हैं। तो एलर्जीज बहुत कम केसेस में मिलते हैं, पर हो सकता है कि किसी को एलर्जी हो सकता है इम्प्लांट से, तो वो भी टेस्ट आप एलर्जी टेस्ट करा लो।
1: डॉक्टर साहब, जो लोग वर्षों से टूटे दांत के साथ रह रहे हैं, इलाज टाल रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे?
0: हाँ, मैं यही कहूंगी कि दांत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का, जैसे आपके हाथ पैर हैं वैसे ही दांत है। क्योंकि बेसिकली हम खाना तो दांतों से ही चबाते हैं, और जब तक हम खाना ढंग से नहीं चबाएंगे तब तक हमारे पेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेट का काम है खाने को पचाना, ना कि बड़े बड़े पीसेस को ठीक करना। तो बेसिकली दांत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो खाना चबाने से लेके ही शुरू होता है। प्लस आपका कॉस्मेटिक भी है, आपका कॉन्फिडेंस भी है। तो बेसिकली दांत अगर आपका टूटा है, आपको इम्प्लांट के लिए जाना है, डेंचर के लिए जाना है, तो उस पर आप ध्यान दो और दांतों का ट्रीटमेंट जरूर कराओ।
1: डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को डेंटल इम्प्लांट क्यों जरूरी है विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

सेहत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डेंटल इम्प्लांट क्यों ज़रूरी विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: सुबह के 10 बज रहे हैं, अब सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिनजोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। कहा, समिति समाज को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने चंपावत में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष और पंचायत विभाग की समीक्षा की। कार्यों में तेजी लाने, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जन सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने देहरादून में केंद्र पोषित आरडीएसएस योजना के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को विस्तार देते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की। प्रदेश संगठन की नई कार्य समिति में 178 नेताओं को स्थान दिया गया है। हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर। अब तक 3,80,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था को और पुख्ता किया। सावन के सोमवार पर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में आगामी 17 अगस्त को आयोजित होने वाले बटर फेस्टिवल यानी अंडूड़ी उत्सव की तैयारियां तेज। दूध, मक्खन और मट्ठे से खेले जाने वाली इस अनूठी होली को भव्य रूप देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग से 15,00,000 रुपए की तत्काल स्वीकृति प्रदान की। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 10:02 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अरिजीत सिंह की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म यंगिस्तान से है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बैंग बैंग से है, आवाज़ें हैं बेनी दयाल और नीति मोहन की, और इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत फिल्म यलगार से है। सुदर्शन फकीर का लिखा हुआ ये गीत, आवाज़ें कुमार शानू और सपना मुखर्जी की, संगीत है चन्नी सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से है। सोनू निगम और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ों में ये गीत है। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 104.5 MHz पर। सुबह के 10:27 हुए हैं। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत असीस कौर और दिव्या कुमार की आवाज़ में फिल्म रूही से। संगीत है सचिन जिगर का और अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने क्षत्रिय कल्याण समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समिति समाज और को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ने से प्रदेश को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने युवाओं से भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हुए उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को देहरादून के सहसपुर ब्लॉक की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साकार कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के हाथों से तैयार हो रहा सूती कपड़े का तिरंगा इस बार हर घर तिरंगा अभियान को नई गति दे रहा है। शंकरपुर स्थित सिलाई यूनिट में समूह की महिलाओं ने अब तक 5,000 से ज्यादा तिरंगे तैयार कर लिए हैं। ग्रामीण उद्यमिता एवं आजीविका परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से तिरंगों की लगातार बढ़ती मांग से महिलाओं के हुनर और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि ग्रामीण समूह की महिलाएं हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं न केवल स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं बल्कि राष्ट्रीय उत्सव में अपनी प्रतिभा का परिचय भी पेश कर रही हैं। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में बारिश और भूस्खलन से 62 सड़कें बाधित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को मौसम की इस अवधि में मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करने, आवश्यक सुरक्षा उपकरण अपने साथ रखने और किसी भी आपदा की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों व राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में डाक कावड़ यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। इसके चलते हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने से अब तक 3,80,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों को रवाना हो चुके हैं। वहीं कल 60,70,000 शिव भक्तों ने हर की पैड़ी और अन्य घाटों से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य व स्वच्छता की व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया है। प्रमुख स्नान घाटों, कांवड़ पटरी मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दयारा बुग्याल में आगामी 17 अगस्त को आयोजित होने वाले बटर फेस्टिवल यानी अंडूड़ी उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दूध, मक्खन और मट्ठे से खेले जाने वाली इस अनूठी होली को भव्य स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग से 15,00,000 रुपए की तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर व 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण सदियों से भाद्रपद महीने की संक्रांति को दूध, मक्खन, मट्ठा की होली का आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले साल धराली आपदा के कारण समिति और स्थानीय ग्रामीणों को आयोजन स्थगित करना पड़ा और सूक्ष्म रूप से महज परंपरा का निर्वहन

0: किया, लेकिन इस वर्ष बटर फेस्टिवल को भव्य रूप देने के लिए समिति ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को विस्तार देते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की है। प्रदेश संगठन की नई कार्य समिति में 178 नेताओं को स्थान दिया गया है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ विभिन्न संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी कार्य समिति में जगह देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए समूह स्वर में गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं समूह स्वर में गाए रोहेल खंडी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समोसर मेरू हिलखंडी लोकगीत एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून।

केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, सावन मास भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को बहुत ही प्रिय है और यही कारण है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए पूरे सावन मास स्तुति, उपवास और आराधना की जाती है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किए जाते हैं। जगह जगह पवित्र नदियों से जल लाकर कांवड़ लाई जाती है। भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं ताकि मनोकामना पूरी हो। हम भी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। इसी कामना के साथ लेते हैं व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम में पहला गीत।

ये थी किशोर कुमार, फिल्म का नाम था याराना। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश मलिक भेजी थी तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष, विवेक बेबी आयुष श्रीवास, कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता सुमी सुमो और साथ में है मानस राज। फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, पाकुंड झारखंड।

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी जालंधर से संदीप मैकर, ज्योति मन्नत मक्कड़ और साथ में इनकी परिवारजन ने। फरमाइश होता उन्हें लिख भेजी है, आप हैं खंडवा से पिंकी मिंकी और साथ में इनकी परिवारजन। और साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं गांव दुलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी ऋतिक और साथ में हैं बलवीर सिंह। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और साथ में अपार ढींगिया। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अभिका सानू कुंभार और साथ में अर्चना कुंभार, पुनावले से अजय सोनबनी, करिश्मा अविक और साथ में साइशा सोनबनी। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, बर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और साथ में है आरती अरोड़ा। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष, राजा चैतन्य, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और साथ में है रेदान खुराना। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, ग्राम पंचायत बैठेटा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और साथ में है मिथिलेश वर्मा। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं थाना रोड बक्सर से जीत गुप्ता, आशीष, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और साथ में सानवी गुप्ता। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, फिल्म का नाम है बेताब।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने मैसेज। श्रोता लिखते हैं, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला चीनू, आसमा, दीपक अनुश्री और साथ में दीपक श्याम कुमार। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं, नागलोई दिल्ली से बदन चक्रवर्ती और साथ में राजेंद्र चड्डा। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक समर साथ में वेदिका फूलमाली, जेवर हिसार से वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र शमशेर और साथ में मनोज भ्यान, व्हाइटफील्ड बंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और साथ में पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवर। साथ ही मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं असम से हितेंद्र दास। फरमाइश होता लिखते हैं, आप हैं ऐशबाग लखनऊ से रूपा इलाहाबादी, कुसुम गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र भाई और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है, दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और साथ में नोखेलाल वर्मा। फरमाइश श्रोता लिखते हैं, काटा रोड वाशिम से मास्टर विट्ठल सुरोशी, सुषमा परिधि और साथ में है मायरा सुरोशी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और साथ में है निमित आहूजा। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसप्रीत कौर, हरप्रीत सिंह और साथ में है सहजप्रीत कौर। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, गंज डिंडवारा से मोहम्मद करीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासिन हाशमी और साथ में शमशुल कमराही। और इसी गीत को सुनना चाहा है, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बीबी गर्वी और साथ में बीबी बॉय हिमाक्ष। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम आप आए बाहर आई।

0: बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
1: और दूसरा
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं जिला वारंगल से मोहम्मद खासुद्दीन, मोहम्मद फजीउद्दीन, आयशा तबसुम और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश अमेलिक भेजी है भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंद्र, वरिंद्र, कुलदीप, सिमू, एकम दमन और साथ में है अभिजोत। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और साथ में है भूमिका अरोड़ा। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और साथ में है आर्य कुमार। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है शास्त्री नगर बीजू शहर से किशन सबकाला, आशा, सोनिया, साईराज और साथ में हैं विशाल सबकाल, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान अल्लाह, फरहान, समीरा, आजमिन गुड़िया। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं गनगोला दाता गंज जिला बदायूं से इसरत खान, साईरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन खान, शाहबाज खान, सेफ खान और साथ में ईशान खान। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधुर सागर बालूजा, सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा और साथ में है माही मलिक, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश और साथ में इनके परिवारजन। सिरसा हरियाणा से हैं गांव हांडी खेड़ा से राधेश शर्मा, इंदिरा और साथ में है सार्थक शर्मा। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश और साथ में अनिकेत, दिंडोरी नासिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण और साथ में है भक्ति गवली। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है जुर्माना।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर, गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना सनकसा, अदीब इब्राहिम, सद्दाम, नाजिया और आफिया। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, साधो शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़सी और विनोद खड़सी। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है, आप हैं सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहां, तलत जहां, रिफत जहां, नुजहत और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी और साथ में उज्जवल दास मानिकपुरी। श्रोताओं ने मैसेज लिख भेजा है, आप हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। और इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और साथ में हैं खुशी गोस्वामी। फरमाइश श्रोता लिखते हैं, आप हैं गाडगी नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्न, लक्षिता और साथ में इनका पूरा लोखंडे परिवार। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म का नाम जीवन मृत्यु।

समय 11:33 और 35 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगा हाउस पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना ही, रमन शिंडे, किशोर धनाड़े और साथ में इनके परिवारजन, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा से बालकृष्ण शर्मा, परवीन राहुल और साथ में हैं इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मैसेज श्रोता लिखते हैं, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और साथ में हैं सोना वर्मा, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता। मैसेज हमें लिख भेजा है गणेशपुर गंज डिंडवारा से सरफराज शेख, गुलफराज शेख, साइमा फारूक और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। ये मैसेज लिख भेजा है गोकुल जोगंग जिला शहर सबिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमारिया यानी कुमकुम और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं ऊँचे गाँव नांदेड़।

महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहे पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी गगदी पार्स और साथ में हैं गुड्डू। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, बाजार और मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और साथ में है यश मंसूरी। साथ ही ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर छाया गांगुली को, फिल्म का नाम है गमन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने राही नगर गंज डिंडवारा से शमशुल कमर राही शाइन फातिमा नू खान अदनान खान फैजान खान और साथ में इनकी परिवार जिन ये फरमाए श्रोता हमें लिखते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाइडो गोयल मल्होत्रा इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा।

रोहतक से पीयूष सिक्का कोयले और साथ में हैं डुगू सिक्का। ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और साथ में दीपांशु खोरवाल, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। पंजाब रामटे की यशोधरा और साथ में शाव्या रामटे की। लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश्वर, मंजू, निशांत, कौशिक की दीपाली और साथ में हैं आर के राजा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजय, अभिनय और साथ में हैं साई किरण। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और साथ में हैं वुपुल कांबड़े। और ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मैसेज श्रोता लिखते हैं कस्बा चिलकाना से, मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम, डॉक्टर आमिर राजा, दानिश राजा, मुन्ना नजीम अंसारी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है ज़िला मोतिहारी बिहार से नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार। ज़िला बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार और साथ में हैं संजय कुमार। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है, आप हैं जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, निकट बिजलीघर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, असीम सक्सेना और साथ में ही मुस्तर भाई। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है, जज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और साथ में हैं मयंक भाटिया। और इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीत, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयात, सिकंदर अली और साथ में हैं मोहम्मद आदिश। फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, तेलंगाना स्टेट से हैं आप है भवानी वेंकट और साथ में मास्टर मिथुन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है सलामी।

कार्यक्रम वर्ष से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोर बाली कमला रानी गीती कौर साथ में है भानु प्रकाश। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव बीरपुर पोस्ट बिलसड़ अलीगंजेटा से मिस्त्री विपिन कुमार शाह के सपना रविंद्र शाह के राजेश रमेश चंद्र राजीव टेलर और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप ही निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रिमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फैजी मोहम्मद जुनीद मोहम्मद जुबेर मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम पटेल ज्योति शुभम देवी किशन भावना बन मानस और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। आप है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख रहीमुन्ना दानिश आसिफ शेख। साथ ही नजीबाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं आप हैं मनोज वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। आपने फरमाइश लिख भेजी है गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी पूजा पायल और साथ में हैं जगदीश जोहरी। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा रेखा देवी शोजी कुमार रिम्मी तनुश्री गुप्ता पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी शिवानी कुमारी प्रियंका रिया जिया टूशी अनिरुद्ध बाबू और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आपने फरमाइश लिख भेजी है। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं बड़ा बम्बो सुपाई सही गांव से देवेंद्र ताती राकेश प्रकाश ताती और साथ में इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं करनाल से गोविंदर सिंह पांधा दरजीत कौर बेबी मनवीत और साथ में मनविंदर सिंह पांधा। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और साथ में ओम प्रकाश मल्होत्रा। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप श्रेया मानसी और साथ में निशांत जगताप। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं फतेह खालसा से आप हैं बहरुल हसन सिद्दीकी मोहम्मद आलम सिद्दीकी मोहम्मद सीफान मोहम्मद यूसुफ और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं जिला अमरावती महाराष्ट्र लहेगांव रेलवे से कुमारी कल्पना कुराड़ी वंदना आशीष और दीपक कुराड़ी। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है शक्ति।

आयुष उत्तम बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश किस अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा सदर हम और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफ सईद सईद भाई राशिद भाई असद भाई फिरोजा मुस्कान अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान और साथ में है पूजा परिहार। ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप है अकोला से रमेश कामले और साथ में गणेश कामले, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं ताजपुर वोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम कारी मीना कारी पुंजराज आरती आकर्षण और साथ में है जय श्री। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से निर्मोहन उषा टिल्लू नायक और साथ में है मधु नायक, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और शबनम बानू, जेल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी और फातमा नास, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा काजल मीनाक्षी और साथ में है दिलीप। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं मोहल्ला हलवायन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजिद दारानी और साथ में हैं हीना कौसर। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं रघुवीर नगर से आप हैं दिलावर खान हसीना बानो एली जय नायब और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं रेलवे रोड गंजी टिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम मनवार नजमा बेगम और साथ में भाभी सरिता गौतम। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है खालापार मुजफ्फरनगर से शाहिना परवीन फातिमा खुशबू आयजा और साथ में है मसरूर अली। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं आप हैं महबूबपुरा सनाबर से मोहम्मद जावेद खत्री मोहम्मद इकबाल खत्री जैद मुनीरा और साथ में हैं बाबू भाई खत्री। और साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है गाँव कैरो तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाश दीप अनहद और इनका पोता है गुरु शब्द। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म का नाम धरती।

0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मलिक भेजी थी गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम्बाई और साथ में है दिव्यांश नागनपुरी। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी थी दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर और साथ में स्वीटी छाबड़ा। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप है मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर और साथ में गुरप्रीत सिंह कौर। ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा था आप है गाँव गाला अम्बाला से राजेंद्र कुमार मलकित कौर आरती रानी राघव हरमन और साथ में इनके परिवार के सभी सदस्यगण। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मेहंदी सूरज साइना और साथ में है निवान शर्मा। साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सबिता निकेत ऋषिकेश दले जीविका और साथ में है सानिका दले। और इसी गीत को सुनना चाहा था चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी पप्पू मैक सुनीता आरजू हंसमुख लाल जिंदल और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है राहट गाँव कोम अमरावती से हर्ष रामेकर दिलीप अक्षय रुद्रा रामेकर और साथ में रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और साथ में नरकेश खातून। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहान सूरीहान। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबी राही और महराजा हैं। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आपने मैसेज लिख भेजा है गंज डिंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाजी शेख दानिश शेख और साथ में ही अमन अफरीदी। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है ये मैसेज श्रोता लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और साथ में निमित आहूजा। श्रोता इसी के साथ आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय 12 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा

0: की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students' protests. In the Rajya Sabha, the ministers laid papers of their concerned ministry on

0: table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour, but due to continued sloganeering, the Chairman adjourned the House till 12 noon. Proceedings have now resumed in both Houses. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में. अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है. पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है.
0: India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikasit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervour. Tiranga rallies were organised in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Manipur, Chief Minister Yamnam Khemchand participated in the campaign from his residence. He urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. The gross merchandise value of the government e-marketplace GeM has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. In a social media post, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He added that GeM is emerging as a key driver of self-reliance that is also strengthening the foundation of a Vikasit Bharat. The Indian Navy, US Navy Explosive Ordnance Disposal, EOD, exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command Kochi from today till the 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. Benchmark domestic equity indices were trading marginally higher in the forenoon session today. The Sensex rose 52 points to 78,552, while the Nifty added 11 points to 24,581 when reports last came in. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Vidarbha and parts of Northeast India today. And with that, we end this news bulletin.
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है. 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस.
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रविंद्र सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस. खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार के हर की पैड़ी से ओलंपिक 2036 संकल्प कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया. श्रीमती आर्य ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद देश में ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन का संकल्प लेते हुए गंगाजल उठाया. यात्रा में खेल मंत्री के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित शौर्य स्थल में भव्य सैन्य बैंड प्रदर्शन का आयोजन। कार्यक्रम में सैन्य संगीत की मधुर धुनों के बीच देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का जोश देखने को मिला। सैन्य बैंड की शानदार प्रस्तुतियों ने समारोह में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने चंपावत में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष और पंचायत विभाग की समीक्षा की। कार्यों में तेजी लाने, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। हरिद्वार कांवड़ मेले में स्वास्थ्य विभाग शिव भक्तों की सेवा में मुस्तैद। जिले में कांवड़ पटरी मार्ग सहित 32 स्थानों पर संचालित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 193,000 से अधिक शिव भक्तों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा चुकी हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 60,000 से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तरकाशी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी की। सावन के सोमवार पर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोट विकास खंड में वित्तीय समावेशन कार्यशाला का आयोजन। इस अवसर पर महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, बीमा, ऋण प्रबंधन, लखपति दीदी योजना और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को विस्तार देते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की। प्रदेश संगठन की नई कार्य समिति में 178 नेताओं को स्थान दिया गया है। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए अमृता हल्दर के गायब।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमृता हल्दर के गाए भजन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब इन्हें सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

5 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी बहन सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ सुरक्षित और प्रसन्न होंगी और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रही होंगी। बहनों, आज महिलाएं परिवार को संभालने के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ खेती किसानी, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहनों केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान भी बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हमें तभी मिल पाएगा बहनों जब हमें इनके बारे में सही जानकारी होगी। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती जो उनके लिए बनाई गई है। इसीलिए आज की हमारी बातचीत का उद्देश्य है जानकारी बढ़ाना, जागरूकता फैलाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। इस विषय पर अभी और भी बातचीत करेंगे आपसे, पर अभी कार्यक्रम में सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: पता है 2026-27 से केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNES पर प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
2: अच्छा,
1: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल SSP.UK.GOV.IN पर उपलब्ध है।
2: तो उसके लिए क्या करना होगा?
1: बताता हूँ, बस आपके आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक में आधार जोड़ने के साथ ही DBT की सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल ID swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। तो बहनों, हम बात कर रहे थे सरकारी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, तो इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बेटी केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है बहनों, बल्कि समाज की ताकत है। इसलिए हमें बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के समान अवसर देने चाहिए। तो इसी विषय पर कि बढ़ती जो भागीदारी है महिलाओं की शिक्षा में, हम एक वार्ता लेकर आए हैं आपके लिए। वार्ता का विषय है उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। वार्ताकार है श्रीमती अनीता।

0: नौटियाल। आइए बहनें, सुनते हैं ये वार्ता।
1: यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको शिक्षित बनाना है। हर बच्चे का है यह अधिकार, शिक्षा से हो सबका उद्धार। जब महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक और प्रेरणादायक परिवर्तन है। एक समय था जब भारत में बेटियों की शिक्षा को आवश्यक नहीं माना जाता था। उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाता था। लेकिन आज वही बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, टीचर, सैनिक, प्रोफेसर, प्रशासक और उद्यमी बनकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, जब जब बेटी आगे बढ़ेगी तब तब भारत नई ऊंचाइयां चढ़ेगा। महान समाज सुधारक सावित्री बाई फूले ने कहा था कि शिक्षा से ही मनुष्य अपने अधिकारों को पहचान सकता है। उन्होंने उस समय लड़कियों के लिए विद्यालय खोले जब समाज इसका विरोध करता था। उसके साहस ने भारत में महिला शिक्षा की मजबूत नींव रखी। कल्पना चावला, किरण बेदी, टेसी थॉमस और अनेक महिलाओं ने शिक्षा के बल पर विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज भारत में लड़कियों की शिक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है। सरकारी प्रयासों, सामाजिक जागरूकता और परिवारों की बदलती सोच ने इस परिवर्तन को गति दी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन लगातार बढ़ा है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी अब लगभग पुरुषों से बराबर पहुंच चुकी है। कई विश्वविद्यालयों में छात्राओं की संख्या छात्रों से भी अधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छात्रवृत्ति योजनाएं, निःशुल्क शिक्षा, साइकिल वितरण, छात्रावास सुविधाएं, भोजन की व्यवस्था तथा डिजिटल शिक्षा जैसे प्रयासों ने लाखों बेटियों के सपनों को नई उड़ान दी है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि महिलाओं की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? साथियों, क्योंकि एक शिक्षित महिला आत्मनिर्भर बनती है। वह अपने अधिकारों को जानती है, अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा देती है, आर्थिक रूप से मजबूत बनती है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसीलिए हमें केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर माता पिता, हर शिक्षक और हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक बेटी की शिक्षा में सहयोग करे। महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज हर बेटी का सपना पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। हम सबका दायित्व है कि उनके सपनों को पंख दें। आज महिलाओं की शिक्षा से होने वाले अनेक लाभ हैं, जैसे एक परिवार का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है, महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियां में कमी आई है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार आया है, गरीबी कम करने और देश के विकास में सहायता मिल रही है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व

0: मजबूत हो रहा है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी अनेक चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सीमित सुविधाएं, आर्थिक कठिनाइयां, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, विद्यालयों तक सुरक्षित आवागमन की समस्या, कुछ स्थानों पर सामाजिक रूढ़िवादी सोच। आज हमें चाहिए कि प्रत्येक बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। परिवार तथा समाज को चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, विद्यालयों में सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान की जाए। बहुत जरूरी है कि समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि प्रत्येक बेटी को शिक्षा का अवसर मिले और वह आगे बढ़े। आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में खुलकर अपनी बात रख रही हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि आज भी छात्राएं अध्यापिका के सम्मुख अनेक प्रश्न पूछते, अपने विचार रखते, वाद विवाद, भाषण और समूह चर्चा में बड़े आत्मविश्वास से भाग लेती हैं। पहले जहां लड़कियों को सीमित शिक्षा तक ही रोका जाता था, वहीं आज वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अनेक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ, सांस्कृतिक समितियों का नेतृत्व छात्राएं कर रही हैं। प्रतियोगिताओं में जैसे भाषण, वाद विवाद, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलो अब बात करते हैं साथियों डिजिटल शिक्षा की। यहाँ भी महिलाएं ऑनलाइन कक्षाओं, वेबिनार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपनी शिक्षा, अनुभव और विचार हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, आज की शिक्षित महिलाएं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रही हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, महिला सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार जैसे विषयों पर खुलकर बोल रही हैं और समाज में जागरूकता फैला रही हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, विद्या नामा नरस्य रूपमधिकम प्रछन्नगुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजस्यो पूजिता न तु धनम विद्या वही च पशु। अर्थात विद्या मनुष्य का विशिष्ट छुपे हुए धन के समान है, विद्या भोगने के लिए है और इसी से यश व सुख की प्राप्ति होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या ही एक सच्चे मित्र या भाई की तरह हमारा साथ निभाती है। इस कारण विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या को राजा लोग भी पूछते हैं, धन को नहीं। इसीलिए जिसके पास विद्या अर्थात ज्ञान या शिक्षा नहीं है, वह मनुष्य पशु के समान है। आज की शिक्षित महिला केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, ज्ञान, आत्मविश्वास से समाज को नई दिशा दे रही है। आज जब बेटियां खुलकर बोलती हैं, तभी समाज खुलकर सोचता है और जब समाज खुलकर सोचता है, तभी राष्ट्र प्रगति करता है। शिक्षा ने महिलाओं को केवल डिग्री नहीं दी, बल्कि अपनी बात निर्भीकता से रखने का साहस भी दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी पढ़ेगी, देश बढ़ेगा, ज्ञान का हर दीप जलेगा, नारी होगी जब शिक्षित और सशक्त, भारत बनेगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले, ना कोई बेटी शिक्षा से वंचित रहेगी, ना कोई सपना अधूरा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। वार्ताकार थी श्रीमती अनीता नौटियाल। उम्मीद है आपने वार्ता को ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा और प्रेरणा भी ली होगी आगे बढ़ने की। चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

बहनों, आज हम बात कर रहे थे सरकारी योजनाओं की, तो उन योजना में एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत पात्र छोटे उद्यमी को व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अगर आप अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार जो है कुछ काम करना चाहती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं आप देना चाहती है, या खाने का कोई काम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प या छोटी दुकान, अगर आप व्यवसाय जो है छोटा शुरू करना चाहती है, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकती हैं और इसमें आपको ऋण बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन हाँ, ऋण की राशि, पात्रता और शर्तें संबंधित वित्तीय संस्था और योजना के नियमों पर निर्भर करती है, तो उसकी जानकारी आप जो है अपने निकटतम जो है समूह के जो कार्यालय हैं उनसे ले सकती हैं। साथ ही बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो इस योजना ने भी कई परिवारों के महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं के स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बहनों, जागरूकता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि योजनाओं की जानकारी आपको हो। जागरूकता का अर्थ है कि आप अपने अधिकारों को भी समझें, जरूरी जो दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखें, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में भी सावधानी बरतें, और किसी भी जो संदिग्ध फोन कॉल है या लिंक पर अपनी व्यक्तिगत या बैंक संबंधी जानकारी बिल्कुल साझा ना करें। क्योंकि आजकल क्या होता है, मोबाइल फोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आते हैं। इसलिए अपना ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी जो गोपनीय जानकारी है उनको आप किसी के साथ भी साझा ना करें। और ये भी ध्यान रखें कि हर योजना की पात्रता और दस्तावेज अलग हो सकते हैं, तो इसलिए आप किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक जो जानकारी है, जो कि आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उनको आपको जरूर पढ़ना है। तो इस तरह से आप जागरूक होकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकती है। तो अब बहनों, समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है, ये सब आप हमें जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी, अनुभाग कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001, और आप जगत कृषि @gmail.com पर हमें ईमेल्स भी भेज सकती हैं। तो अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। बहनों, नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1 बजने को है अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें

0: भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने 2036 ओलंपिक की भारत में मेजबानी की मनोकामना के लिए संकल्प कांवड़ यात्रा निकाली। देहरादून में वोकल फॉर लोकल को नई उड़ान। सहसपुर की महिलाओं का हस्तनिर्मित तिरंगा बन रहा घर घर तिरंगा अभियान की शान। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को

0: जागृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वह भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को राजधानी देहरादून के सहसपुर ब्लॉक की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साकार कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार सूती कपड़े का हैंडमेड तिरंगा इस बार हर घर तिरंगा अभियान को नई गति प्रदान कर रहा है। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि रीप परियोजना के तहत समूह की महिलाओं ने अब तक 5,000 से अधिक तिरंगे तैयार कर लिए हैं। क्लस्टर द्वारा हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है।
1: रीप परियोजना के तहत हमने सहसपुर ब्लॉक में एक सिलाई यूनिट का स्थापना की थी और उसी सिलाई यूनिट में हमारी जो आस्था क्लस्टर की महिलाएं हैं वो इसमें झंडा बनाने का काम कर रही हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा झंडे बनाए जाते थे पर क्योंकि अब इनको एक प्रॉपर यूनिट सेटअप करके दिया है तो इस बार इनका बहुत लार्ज स्केल पे झंडा बनाने का योजना है और इसमें हमारी लगभग 15 से 20 महिलाएं हैं जो इसमें झंडा बनाने का कार्य करेंगी। बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव भी है और अच्छा कार्य भी इनको मतलब आमदनी में भी इनकी काफी बढ़ोतरी इससे होगी।
0: वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि समूह की ग्रामीण महिलाएं अपने पसंदीदा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।
2: NRLM और रीप से जुड़ी हुई जो हमारे SHG ग्रुप्स हैं, हमारा ये भी रहता है कि उनकी जो इनकम है वो हम इंक्रीज करें, लखपति दीदी बनाएं, तो उसी क्रम में इस वर्ष भी वो जो आगामी 15 अगस्त है उसमें झंडे बना रही हैं और उनकी डिमांड भी अच्छी है, हम लोग भी ले रहे हैं और लोकल डिमांड भी काफी रहती है। हर घर तिरंगा हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो लोग बढ़ चढ़ कर अच्छे तिरंगे उनसे ले रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन करती है।
0: इस बीच हर घर तिरंगा अभियान एवं वंदे मातरम अभियान के तहत चंपावत मुख्यालय के बस स्टैंड में सशस्त्र सीमा बल की पंचम वाहिनी द्वारा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वाहिनी के कमांडेंट शिवराम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में SSB रानीखेत की ब्रॉस बैंड टीम द्वारा वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना तथा स्वतंत्रता दिवस के प्रति आम जन में उत्साह और उमंग का संचार करना रहा। इस अवसर पर अभियान से जुड़ते हुए अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना प्रदर्शित करने की अपील की गई। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 के समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। श्रोता अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnu@gmail.com पर भेज सकते हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 में भारत को ओलंपिक की मेजबानी दिलाने के संकल्प को पूरा करने की कामना के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने आज हर की पैड़ी से संकल्प कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। ब्रह्मकुंड पर धार्मिक विधि विधान के साथ मां गंगा का जल लेकर रेखा आर्य ऋषिकेश से वीरभद्र के मंदिर के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री श्री महंत हरिग्रीपुरी समेत सैकड़ों की संख्या में महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान धर्मनगरी में हर हर महादेव और भारत माता की जय के उद्घोष के से पूरा मार्ग गुंजायमान रहा।
4: और इस विशेष दिन में भगवान शिव की प्रेरणा से भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे उसी संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इस देवभूमि उत्तराखंड से यह संदेश हमारे श्रद्धेय गुरुजी आदरणीय हरिगिरि जी महाराज जी और हमारे साथ में हमारे समस्त अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र गुरु जी महाराज जी हमारे साथ में आप दोनों के आशीर्वाद से संतों के संकल्प से ये यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ हो रही है। वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए यात्रा अपनी समापन का अंतिम चरण में पहुंचेगी।
0: इस बीच धर्मनगरी में डाक कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों को रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य व स्वच्छता की व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया है। प्रमुख स्नान घाटों, कांवड़ पटरी मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। वहीं कांवड़ मेला में स्वास्थ्य विभाग शिव भक्तों की सेवा में मुस्तैद रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरके सिंह के निर्देशन में जिला में कांवड़ पटरी मार्ग सहित 32 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिव भक्तों का स्वास्थ्य खराब होने या चोट लगने पर तत्काल निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अस्पताल के CMS एवं कांवड़ मेला के दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के नोडल अधिकारी बनाए गए डॉ राजेश गुप्ता ने बताया कि विभिन्न शिविरों में 31,739 शिव भक्तों का निःशुल्क उपचार किया गया। यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 1,93,374 शिव भक्तों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा चुकी हैं। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार के बाद सबसे ज्यादा दबाव देहरादून पर है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री देहरादून के रास्तों से होकर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान बढ़ती शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर दी है। प्रमुख कांवड़ मार्गों, शिवालयों, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जरूरत के अनुसार वाहनों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। इसके साथ ही पुलिस जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत करती नजर आ रही है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में बारिश और भूस्खलन से 62 सड़कें बाधित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने की और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को मौसम की इस अवधि में मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करने, आवश्यक सुरक्षा उपकरण अपने साथ रखने और किसी भी आपदा की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों व राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में आयोजित भव्य तीज महोत्सव में प्रदेश की लोक संस्कृति और नारी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी भूषण ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ते हुए राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी महिला नेतृत्व की आवश्यकता है जो मातृशक्ति की आवाज बने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 2036 ओलंपिक की भारत में मेजबानी की मनोकामना के लिए संकल्प कांवड़ यात्रा निकाली। देहरादून में वोकल फॉर लोकल को नई उड़ान। सहसपुर की महिलाओं का हस्तनिर्मित तिरंगा बन रहा घर घर तिरंगा अभियान की शान। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था छलिया, गीत था कमर जलालाबादी का और संगीत कल्याण जानन जी का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म लव इन टोक्यो के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत। फिल्म का नाम है कारवा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के।

0: नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
1: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई।
0: जी,
1: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया।
1: जी, कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर,
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों।
0: जी,
1: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
1: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावली नोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए

0: जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
1: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
0: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
2: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
3: सुना तुमने?
4: क्या?
3: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
4: हैं?
3: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
4: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
3: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
4: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
0: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपते सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
5: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
6: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
7: ऐसा चाहिए कि जिसके बारे में
3: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
8: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
9: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ

0: आया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
1: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
2: जी हुजूर,
1: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
2: जी हुजूर।
1: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
3: ₹26 जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
1: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
4: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
3: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
5: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
6: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर

0: मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: भारत माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

0: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।
1: Oh!

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए

0: माँ गंगे, आज तुझको ही देता हूँ ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी।

0: has shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh for the day. In Himachal Pradesh, intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
2: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh, with intermittent light rain being reported from several areas, including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today: Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, IMD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
3: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष

0: के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
1: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
2: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
3: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साह पूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।

0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, देश के वीर सपूतों के सामने कैसी भी चुनौती हो, उनसे डरते नहीं बल्कि ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से अपने दायित्व को निभाते हैं। ऐसे ही थे कैप्टन डीके परुलकर। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ था। बचपन से ही बेहद निडर और साहसी थे। यही कारण था कि वे चाहते थे कि निडरता से देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला करें और उनसे देश को सुरक्षित बनाएं।

सैनिक साथियों, कैप्टन दिलीप कमलाकर पारुलकर ने 9 मार्च 1963 को भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए और हर कर्तव्य को उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी ही सूझबूझ से निभाया। वर्ष

1965 की बात है, भारत पाक युद्ध के दौरान इनका विमान दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गया और इनके दाहिने कंधे में चोट लग गई। इस स्थिति में उन्होंने उनके कमांडर द्वारा उन्हें विमान से बाहर निकलने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस क्षतिग्रस्त विमान को वापस बेस तक पहुंचाया। इसके लिए उन्हें बाद में वायुसेना पदक से सम्मानित भी किया गया। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पहले सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथी इस प्रकार से उन्होंने हर मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए डटे रहे। वर्ष 1971 की बात है जब भारत पाक युद्ध के दौरान इनका विमान दुश्मन के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कैप्टन डी के परुलकर को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्हें रावलपिंडी के एक बेहद ही सुरक्षित कैदी शिविर में रखा गया, लेकिन वहां रहते इन्होंने देश के लिए भागने की एक योजना बनाई जो बेहद ही जटिल और साहसी थी। डी के पारुलकर ने 13 अगस्त 1972 की रात को अपने दो साथी पायलट मित्रों विंग कमांडर MS ग्रेवाल और विंग कमांडर हरीश सिंह के साथ एक सुरंग खोदकर और उस कड़े पहरे वाले शिविर से सफलतापूर्वक वहां से भाग निकले, लेकिन भारत की सीमा के करीब पहुंचने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। इनकी इस तरह से हौसले और बुद्धिमत्ता को लेकर बॉलीवुड फिल्म का निर्माण भी हुआ है, द ग्रेट इंडियन एस्केप। और श्रोताओं, इस फिल्म में उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि भारतीय सेना के हौसले और बुद्धिमत्ता को हम कभी कम नहीं आंक सकते।

सैनिक साथियों हमारे देश के जांबाज हर कदम पर हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हम बात कर रहे हैं कैप्टन डी के परुलकर के बारे में। इन्होंने भारतीय वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही 2 साल के लिए सिंगापुर में ये प्रतिनियुक्ति पर भी रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बटालियन कमांडेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। राष्ट्र के प्रति इनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। श्रोताओं इस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करने के बाद ये सेवानिवृत्त हो गए पर 10 अगस्त 1925 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सैनिक साथियों कैप्टन डी के परुलकर का देश के प्रति अदम्य साहस कर्तव्य परायणता और देशभक्ति को हम सलाम करते हैं।

सैनिक साथी इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: यह था फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में युवा विद्यार्थियों से शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों पर संवाद किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 2036 ओलंपिक की भारत में मेजबानी की मनोकामना के लिए संकल्प कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्तों की सुरक्षा और सुगम आवाजाही को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर। हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। अब तक 3,80,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया। प्रदेश में सोमवार को अधिकांश मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जनता दरबार में अलग अलग क्षेत्रों से सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लोगों ने अधिकारियों के सामने रखी। प्रभारी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। देहरादून में वोकल फॉर लोकल को नई उड़ान। सहसपुर की महिलाओं का हस्तनिर्मित तिरंगा बन रहा घर घर तिरंगा अभियान की शान। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून और नैनीताल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

आप सुन रहे थे के और साथियों की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था लाइफ इन मेट्रो। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत। गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लोई ने, आवाज़ें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की। फिल्म का नाम कुछ ना कहो।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

आप सुन रहे थे पलक मुच्छल की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था मैं सिद्धूनी, गीत था मनोज मुंतशिर का और संगीत अमाल मलिक का था। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनु मलिक का संगीत पद किया कार्यक्रम में। ये अगला गीत आवाजें हैं सोनी निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम मैं हूं ना।

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये सर था अरिजीत सिंह का, फिल्म का नाम था मरजावा। शब्द थे रश्मि बिरा की और संगीत तनिष्क बागची का था। श्रोताओं, गानी नई तराने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं समीर के शब्द, हिमेश रेशमिया का संगीत, आवाज़ हिमेश रेशमिया की और फिल्म का नाम आशिक बनाया आपने।

समय 3:34 और 36 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं गानी रे तेराने FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अमल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार को फिल्म का नाम एयरलिफ्ट।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

आप मुझे अच्छे लगने लगे। अभी आप सुन रही थी इस फिल्म से एक गीत, आवाज़ें थी उदित नारायण और साथियों की। गीत को लिखा था दीप कोहली ने और संगीत राजेश रोशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्योंकि, शब्द हैं समीर की और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

ये थे अरिजीत सिंह, फिल्म का नाम था कबीर सिंह, गीत और संगीत मिथुन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़, फिल्म का नाम तेरे नाम। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: अभी आप सुन रही थी कहानी नए तिराने। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से अपने आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में युवा विद्यार्थियों से संवाद कर शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने SGST विभाग को टैक्स चोरी को रोकने के लिए AI आधारित जांच बढ़ाए जाने पर काम किए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में सावन के सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही अधिकांश शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। अब तक 14,45,000 से अधिक शिव भक्तों ने किए दर्शन। अल्मोड़ा जिले के सिद्धनौला से जागेश्वर धाम तक श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। प्रदेश के कई जिलों में जनता दरबार का आयोजन। नई टिहरी में 50 शिकायतें दर्ज, अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के मछोड़ क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए UPCL ने विशेष अभियान शुरू किया। एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमंग पंड्यन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और मौसम विभाग ने प्रदेश के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून और नैनीताल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं, लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए अशोक रॉय का सरोद पर बजाए राग किरवानी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अशोक रॉय का सरोद पर बजाय राग की रवानी। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इस दौर की हम आज बात करने जा रहे हैं जब हिंदी फिल्म संगीत में सब कुछ नया नया था। अनेक फिल्मों का निर्माण किया जा रहा था पर वे ज़्यादा स्थायी नहीं थी, न ही उनको इतनी लोकप्रियता हासिल हो पाई थी। पर फिल्मों में स्थायित्व मिला। जी हाँ, एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मों में संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ और ऐसे में उभर कर एक नाम सामने आया, वो था संगीतकार खेमचंद प्रकाश का, जिन्होंने फिल्मों में अपने संगीत से खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार खेमचंद प्रकाश के बारे में, साथ ही सुनवाएंगे उनके संगीतबद्ध फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं उनके संगीतबद्ध किए इस गीत के साथ।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार, आज की कलाकार संगीतकार खेमचंद प्रकाश। श्रोताओं, खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। इनके पिता संगीत के अच्छे जानकार थे और उनसे इन्होंने शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेमचंद के पिता जयपुर के दरबार में गायक और नर्तक थे और इसके बाद खेमचंद ने भी 19 वर्ष की आयु में जयपुर और बीकानेर में दरबारी गायक बन गए और साथ ही इसके बाद इन्होंने नेपाल दरबार में नौकरी की। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, सुनवाते इनका संगीतबद्ध किया कार्यक्रम में ये अगला गीत।
2: आओ देखें, चलो

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार संगीतकार खेमचंद प्रकाश। श्रोताओं, संगीत के प्रति लगाव के कारण ये नौकरी बीच में ही छोड़कर कलकत्ता चले आए और उस समय संगीत फिल्मों के लिए और रंगमंच के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था कलकत्ता। वहाँ उस समय उन्होंने खेमचंद ने गायन के रूप में कार्य किया और गायक के रूप में फिल्मों से प्रभावित होकर न्यू थिएटर्स के दिग्गज कलाकारों ने इन्हें सहायक के रूप में कार्य दिया। वहाँ उन्होंने उस समय फिल्म स्ट्रीट सिंगर में एक छोटी सी भूमिका निभाई और इनके किरदार को खूब पसंद किया गया।

श्रोताओं, धीरे धीरे लोग फिल्मों के लिए कोलकाता के बाद बम्बई जाने लगे और बम्बई फिल्मों के केंद्र बनने लगा। खेमचंद प्रकाश ने भी अपने मित्र पृथ्वीराज कपूर की प्रेरणा से बम्बई पहुंच गए और वहां उन्होंने सुप्रीम पिक्चर्स के लिए फिल्म गाजी सलाउद्दीन में संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद की सहायता की और फिल्म के लिए संगीत दिया।

श्रोताओं, इस प्रकार से खेमचंद प्रकाश के संगीतबद्ध फिल्मी गीतों को पसंद किया जाने लगा और इन्हें सफलता प्राप्त होने लगी। पर श्रोताओं, इन्होंने इसके बाद फिल्म मेरी आंखों के लिए संगीत दिया और इसके गीतों को बहुत ही पसंद किया गया। और श्रोताओं, इस प्रकार से उसके बाद रणजीत मूवीटोन से जुड़ गए और वहाँ कई फिल्मों के लिए संगीत दिया जो जनता द्वारा खूब पसंद किया गया, और ये फिल्में इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई।

श्रोताओं, लगातार फिल्मों में मिल रही सफलता के बाद संगीतकार खेमचंद प्रकाश बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए और फिल्म महल के लिए इन्होंने गीतों को संगीत दिया और वो संगीत कालजयी संगीत बन गया और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था और वो आज भी पॉपुलर है, आएगा आने वाला। और इस प्रकार से इन्होंने 11 वर्षों के करियर में लगभग 45 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया। परशुतम, अचानक से आज ही के दिन 10 अगस्त 1950 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके संगीत बद्ध गीतों को आज भी याद किया जाता है। श्रद्धांजलि स्वरूप सुनते हैं इनका संगीत बद्ध किया कार्यक्रम में ये अंतिम गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम महल और संगीतकार खेमचंद प्रकाश।

0: कार्यक्रम एक कलाकार में आज आपने सुने संगीत निर्देशक हेमचंद प्रकाश के कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंक कार बही से संबंधित साक्ष्यों के लिए एक कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का

0: प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनिए केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर संक्षिप्त जानकारी।

सायंकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम के 5:10 पर सुनिएगा हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रस्तुत करेंगे शाम 5:45 पर। कार्यक्रम में आज गढ़ कुमाऊं पत्रिका के अंतर्गत सुनिएगा गढ़वाली कविता पाठ डॉक्टर ममता कुंवर द्वारा और कुमाऊंनी कहानी श्रीमती भारती पांडे द्वारा। प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण का समय रहेगा हिंदी में शाम 6:30, गढ़वाली में 6:50 और कुमाऊंनी में 7:30। किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित करेंगे शाम के 7:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 और रात 8:30। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण, ये RNU देहरादून की प्रस्तुति होगी। रात 8:00 सुनिएगा संसद समीक्षा जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 8:15 पर आप सुनेंगे अनीता नौटियाल से हिंदी वार्ता। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात के 10:00, इसे भी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और रात 10:30 पर प्रस्तुत करेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये थी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आइए अब नजर डालते हैं केंद्र से कल दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

सुबह 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। रामचरितमानस गान का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 6:40 पर। सुबह 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रसधार। पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत प्रस्तुत करेंगे सुबह के 7:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे शेर सिंह के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के प्रसारण का समय रहेगा सुबह 8:30। जिले की चिट्ठी आरएनयू देहरादून की ये प्रस्तुति सुनिएगा सुबह के 9:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में पंजाबी लोकगीत।

श्रोताओं, ये जानकारी थी केंद्र से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और शो की होस्ट अंशिका शर्मा। दोस्तों, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये बहुत कुछ कहती है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा ठहर कर सुनने की। कभी कोई सवाल हमारे सामने होता है, कभी कोई सपना और कभी कोई चुनौती, और कभी बस एक ऐसी जानकारी जो शायद हमारे अगले कदम को थोड़ा और आसान बना दे।
1: और इन्हीं सवालों और जवाबों के बीच आज फिर हाजिर हो चुके हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयुषी भट्ट। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में होने वाली बातचीत शायद आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि आज कार्यक्रम युवाणी में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास सेगमेंट जिसका नाम है यूथ वेव। और यूथ वेव सेगमेंट के अंतर्गत आज हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका जवाब आप हमें देंगे व्हाट्सएप द्वारा।
1: दोस्तों, सवाल है कि क्या खेती में मुनाफा है? इसका जवाब आप हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7088000731। आपका जवाब के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, तो जवाब हमें ज़रूर भेजें।
0: दोस्तों, जब साइकोलॉजी की बात होती है ना, तो हमारा ध्यान सीधे सीधे माइंड और बिहेवियर पर जाता है ना।
1: बिल्कुल
0: लेकिन क्या आपको पता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी का ही एक फील्ड है? तो आइए जानते हैं कि क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब असली मैच दिमाग में खेला जाता है।
1: दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, स्कोर बराबरी पर है और आपके पास है बस एक मौका। धड़कन तेज है, हाथ थोड़े कांप रहे हैं, दिमाग में एक साथ 10 थॉट्स चल रहे हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबके सामने गलती हो गई तो अब क्या होगा? और तभी सवाल आता है, क्या खिलाड़ी सिर्फ ओपोनेंट से कंपीट कर रहा है?
0: और आयुषी, कई बार सबसे बड़ा मुकाबला होता है अपने ही माइंड के साथ,
1: बिल्कुल
0: और इसी इनविजिबल गेम को समझने का काम करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करता है कि खिलाड़ी के थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर और मेंटल स्टेट उसकी परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
1: मतलब एक खिलाड़ी कितना दौड़ सकता है, कितना प्रैक्टिस कर सकता है, कितनी स्ट्रेंथ रखता है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब प्रेशर आएगा तब वो क्या सोचेगा? जब गलती होगी तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? जब हार सामने होगी तो वो खुद को कैसे संभालेगा? और जब जीत मिलेगी तब उस कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करेगा? ये सारे सवाल भी आते हैं दोस्तों।
0: और पता है आयुषी, ये सब ना साइकोलॉजी का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो स्पोर्ट्स में बेहद इंपॉर्टेंट है। पता है क्या
1: क्या
0: आयुषी? वो है फोकस। जब हम किसी काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो परफॉर्मेंस अलग ही होती है, लेकिन जब हमारा दिमाग बार बार भटकता रहता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट से बाहर चले जाते हैं, और एक एथलीट के लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है।
1: क्योंकि उसे बार बार अपने माइंड को वापस लाना पड़ता है, और यही रीजन है कि एथलीट्स मेंटल टेक्निक्स जैसे ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन, अटेंशन कंट्रोल और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों।
0: दोस्तों, बात करते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करता क्या है। क्या वो खिलाड़ी को बस मोटिवेशनल बातें बताता है? नहीं दोस्तों, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक स्ट्रक्चर्ड फील्ड है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ी के साथ काम कर सकता है, जैसे परफॉर्मेंस, एक्टिविटी को मैनेज करना, फोकस और कंसंट्रेशन पर इम्प्रूवमेंट लाना, परफॉर्मेंस एंजाइटी को मैनेज करना, फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करवाना, गोल सेटिंग पर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर, प्री कॉम्पिटिशन रूटीन पर, फेलियर और सेटबैक हैंडल करने पर, यहाँ तक कि टीम कम्युनिकेशन पर, मोटिवेशन मेंटेन करने पर।
1: और सबसे इम्पॉर्टेंट, खिलाड़ी को अपने माइंड को समझाने और मैनेज करने पर भी मदद करने पर। आज हमने जाना दोस्तों कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता। स्ट्रांग बॉडी आपको मैदान तक लेकर जा सकती है, लेकिन स्ट्रांग माइंड आपको प्रेशर के बीच टिकाए रख सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था हमारे यूथ वेक सेगमेंट का ये सवाल, जो था कि क्या खेती में मुनाफा है। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7088000731। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। आइए तब तक सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म आजा नचले से सुनिधि चौहान की आवाज़ में।
2: Dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta din

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो दोस्तों, इस खूबसूरत ट्रैक से पहले हमने यूथ वेव सेगमेंट में आपसे एक सवाल किया था कि क्या खेती में मुनाफा है।
4: बिल्कुल, और हमको बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं हमारे लिसनर्स की तरफ से। रोहित हमको लिख भेजते हैं कि खेती में मुनाफा है, बस सही फसल और सही मार्केट चूज़ करना ज़रूरी है। कहते हैं कि मेरे हिसाब से मुनाफा तो है, लेकिन मौसम सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी फैक्टर है। तुम्हारा क्या कहना है?
3: बिल्कुल सही कहा है रोहित ने।
4: इसके बाद हमको अमन मैसेज लिखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्मिंग को काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। अगर फार्मर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे तो इनकम और बेटर हो सकती है। भाई वाह, हम तो अपने यूथ के विचार सुनकर बहुत ऐसे प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। दोस्तों, सेगमेंट जारी रहेगा कार्यक्रम के अंतर्गत। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 7088000731।
3: बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, लेकिन तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा के साथ। वैसे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास कोई छोटा सा बिजनेस आइडिया है, कोई हुनर है, लेकिन उसे शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए? या क्या बैंक आपकी मदद कर सकता है, या आपको बैंक से मदद मिल सकती है?
4: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य माइक्रो एंटरप्राइजेस को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी पीएम मुद्रा योजना।
3: सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा लोन आखिर है क्या। दोस्तों, मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था।
4: दोस्तों, आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और बिना किसी गिरवी के लिए लिया गया ऋण उपलब्ध कराना है। यानी अगर कोई व्यक्ति छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है या पहले से चल रहे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
3: दोस्तों, अब सवाल आता है कि मुद्रा लोन किसे मिल सकता है? तो दोस्तों, ऐसे एलिजिबल इंडिविजुअल्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो इनकम जनरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, वे मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4: दोस्तों, इसमें ज़रूरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग

0: और सर्विस एक्टिविटीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें मुर्गी पालन, डेयरी या मधुमक्खी पालन भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिलाई का काम करता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, कोई रिपेयर या सर्विस बिजनेस करता है, या कोई छोटा फूड रिलेटेड कोई बिजनेस चलाता है।
1: या कोई एलिजिबल माइक्रो एंटरप्राइज शुरू या एक्सपेंड करना चाहता है तो वो मुद्रा लोन के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकता है। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ बिजनेस शुरू करने की इच्छा होना लोन अप्रूवल की गारंटी नहीं है।
0: और अब सवाल ये है कि अप्लाई कहाँ करना है। दोस्तों, मुद्रा लोन सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में सरकार द्वारा कैश के रूप में नहीं दिया जाता। इसके लिए एलिजिबल एप्लीकेंट्स पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अनुसार संबंधित लेंडर की एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करनी होगी।
1: अब दोस्तों, मुद्रा लोन के तहत कितना लोन मिल सकता है इसे भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले आता है शिशु लोन, जो 50,000 तक का लोन है। इसके बाद आता है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन हमें मिलता है। फिर आता है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं एलिजिबल प्रीशियस तरुण बोरोवर्स के लिए तरुण प्लस के तहत 10 लाख से 20 लाख तक का लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी बिजनेस छोटा हो या उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, अपनी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज में लोन लिया जा सकता है।
0: दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि कार्यक्रम में आज चल रहा है एक खास सेगमेंट जिसका नाम है यूथ वेव, और इसके अंतर्गत हमने आपसे किया है एक सवाल, क्या खेती में मुनाफा है? इस सवाल का जवाब आपको लिख भेजना है हमको अपने व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, 7088000731। दोस्तों, आपके विचारों का हमको बेसब्री से इंतज़ार है। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम लौट कर आते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये ट्रैक केके की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी वो लम्हे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप बने हुए हैं मेरे यानी अंशिका शर्मा
1: और मेरे यानी आयुषी के साथ।
0: दोस्तों। सेगमेंट यूथ वेव के अंतर्गत हमने आपसे किया था एक सवाल कि क्या खेती में मुनाफा है, और हमें जवाब आया है निकिता वोहरा का। कहती हैं कि यस, खेती में मुनाफा है अगर सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ किसान योजना का उपयोग करे और गवर्नमेंट पॉलिसीज कृषि जगत की जीत है। बहुत खूब विचार हैं आपके निकिता जी। इसी के साथ हमको पूजा जवाब लिखती हैं कि किसान खेती करता है तभी हमारी थाली भर पाती है, इससे बड़ा मुनाफा और क्या होगा।
1: बिल्कुल सही कहा है पूजा ने, और ये बहुत बड़ी बात भी कही है पूजा ने, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: बिना खाने के तो जीवन मुश्किल है और
0: सही
1: सोचा
0: बात
1: भी नहीं
0: है,
1: जा सकता, क्यों है ना हम उनसे का?
0: बिल्कुल। अक्सर हम लोग मुनाफा देखते हैं कि हमको धन कितना मिल रहा है, हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, लेकिन असली प्रॉफिट तो वही है, हम धन कमा किस चीज़ के लिए रहे हैं?
1: बिल्कुल सही बात है, और कमाते हैं हम खाने
0: खाने
1: के
0: के लिए।
1: लिए। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि ये क्या-क्या जवाब इन्होंने हमें भेजे हैं हमारे सवाल जो हमने किया था यूथ वेव के अंदर, जो था कि क्या खेती में मुनाफा है। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। वैसे अंशिका, आज के डिजिटल दौर में हम अपना काफ़ी सारा काम ऑनलाइन करते हैं, क्यों है ना?
0: हाँ बिल्कुल।
1: चाहे पढ़ाई हो, शॉपिंग हो, बैंकिंग हो या फिर सोशल मीडिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया को सिक्योर रखने में कौन मदद करता है?
0: हाँ बिल्कुल आयुषी, तुम्हें पता है इसी से रिलेटेड एक टर्म है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है,
1: अच्छा।
0: वो है एथिकल हैकिंग। अच्छा, नाम सुनते ही सबसे पहले हैकिंग का ख्याल आता है ना, लेकिन ये एथिकल हैकिंग का मतलब है कि किसी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन परमिशन के साथ किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट की सिक्योरिटी को टेस्ट करना और उसकी वीकनेसेस को पहचानना ताकि उन्हें समय रहते ठीक किया जा सके।
1: यानी एथिकल हैकर का काम किसी का डेटा चुराना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करना है। वो ऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करता है, और अगर कोई वीकनेस मिलती है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में बताता है ताकि उसे ठीक किया जा सके।
0: लेकिन आयुषी, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हैकर एथिकल हैकर नहीं होता, एथिकल हैकर और साइबर क्रिमिनल के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है परमिशन और इंटेंशन का। एथिकल हैकर को सिस्टम ओनर की परमिशन होती है और उसका उद्देश्य सिक्योरिटी इम्प्रूव करना होता है, जबकि कोई व्यक्ति अगर बिना परमिशन या किसी सिस्टम अकाउंट को

0: एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है।
1: और आज के समय में साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? इसकी वजह भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट तक बहुत सी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े स्तर पर डिजिटल सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इन सिस्टम को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन अगर कोई यंग स्टूडेंट एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी को करियर के रूप में देख रहा है तो उसके लिए कुछ बेसिक स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखने की एबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
1: और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये फील्ड काफ़ी वाइड है दोस्तों। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स के साथ स्टूडेंट्स आगे चलकर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट जैसे रोल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज और रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन के ज़रिए अपने नॉलेज और स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यूथ वेव के तहत आपसे पूछा था कि क्या खेती में मुनाफा है। इसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। आइए तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म रेस 2 से।

दोस्तों, कार्यक्रम युवानी के अंतर्गत आज जो सेगमेंट चला है जिसका नाम था यूथ वेव, और इसमें हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि क्या खेती में मुनाफा है, और हमने आपसे कहा था कि आप हमें अपने विचार लिख भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, और अभी हमें काफ़ी सारे जवाब हमें मिल चुके हैं। आरव देहरादून से हमें कहते हैं कि खेती का सबसे बड़ा मुनाफा ये है कि हमें ज़िंदगी चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और वो खाना देती है। बिल्कुल सही आरव, पैसा बाद में है, सबसे पहले तो हमारी थाली इसी मिट्टी से भरती है। नेहा हमें मैसेज लिखती हैं कि मेरे लिए कीमती सिर्फ कमाई नहीं, मिट्टी से जुड़ा रहना और अपनी रूट्स को समझने का तरीका है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने नेहा, खेती हमें सिर्फ ज़मीन से नहीं अपनी जड़ों से भी जोड़ती है। पूजा हमें मैसेज करती हैं कि किसान खेती करता है तभी हमारी थाली भर पाती है, इससे बड़ा मुनाफा और क्या होगा। बिल्कुल भाई, किसान की मेहनत का असर सीधा हमारी रसोई और हमारी ज़िंदगी तक पहुंचता है। सिमरन हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं कि मेरे हिसाब से खेती का असली प्रॉफिट है सेल्फ रिलायंस, अपनी ज़रूरत की चीज़ खुद प्रोड्यूस कर पाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, अपने पैरों पर खड़े होने का एहसास जो है ना, वो किसी मुनाफे से कम नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खेती कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और शायद इसीलिए खेती का मुनाफा सिर्फ रुपयों में नहीं गिना जा सकता। एक बीज जब मिट्टी में जाता है ना, तो सिर्फ फसल नहीं, एक पूरी ज़िंदगी की उम्मीद उगती है। किसान की मेहनत हमें रोटी देती है, प्रकृति से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बेसिक ज़रूरत भी किसी की मेहनत का नतीजा ही है। इसी सोच के साथ आज के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त और सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है, शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

0: दोस्तों, देखते ही देखते अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की हमारी ये मुलाकात पसंद आई होगी। और अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, पिन कोड है 248001।
1: दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है uddn@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। इसी के साथ मुझे यानी आयुषी भट्ट
0: और मुझे यानी अंशिका शर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 होने को है। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम सुनने द्वारा सभी भाई बंधुओं तय विनय ध्यानिक छोड़ बेटी की नमस्कार सेवा सुन ली
1: दगड़ माँ ममता पांडे की तरफ बेटी ले नमस्कार प्रणाम पैलाग ध्यानी जी आपके लिए नमस्कार जय भोलेनाथ।
0: अरे बापा हैं अब कल दिन करे कौ थी कौर यू दो चार दिन
1: ध्यानी जी उसके तो 11 तारीख भूल छे जल चढ़ जा और हमार तो छे छे आज।
0: हाँ जी हमारा तो भोले बाबा 24 घंटा हमारे दगड़ छे
1: जी।
0: तो भगवान भोलेनाथ का दरबार बेटे की हम ई काम न करला कि भाई हमारा सभी शिव भक्त से लेके हमारे जो जनता छन आर्दन छ हमारा जो सुनदारा छन सभी पर भोले की कृपा बनी रहे और आप सभी थे ये पर्व की भोल जो शिवरात्रि को पर्व होलो वही बहुत बहुत शुभकामना। यूं शुभकामनाओं का दगड़ बता दिना कि आज कार्यक्रम में छ क्या
1: जी।
0: आज कार्यक्रम में हम आप खातिर लेके आया छुआ गढ़वरी कुमाऊनी पत्रिका जखमा डॉक्टर ममता कुंवर प्रस्तुत करेल अपन गढ़वरी कविता पाठ
1: और भी कदगढ़ हम कुमाऊनी वार्ता ले सुनू अपन श्रोताओं के कुमाऊं साहित्य में महिला
0: वार्ताकार छन राखी पांडे। तो यह वार्ता आप सुन ला और ये का अलावा गीत तब छ छन
1: जी बहुत सारे छन और वी कदगढ़ रहवार ले हम अपन श्रोताओं के सुनू
0: तो इन छन कि जब हम बात करना छुआ बरखा बतौनी की तो तीन दिन खुण तो मौसम विभाग ने भी बोलू बल कि अभी अलर्ट चुबल
1: जी
0: पर क्या सच एक माह हम अलर्ट रहना छो
1: बिल्कुल नहीं ध्यानी जी जाम मनाई वाने जानू और देख लू लेने की आजकल तो मोबाइल में हर वक्त होनी छ मौसम की चेतावनी लेकिन बस हमल उठाए अपन गाड़ी नहीं जानू और एक बार जब रपटी हूँ ना गड्ढे मड्ढे में तब समझ में हूँ कि चेतावनी क्या के लिए दी राखी
0: बिल्कुल और खास कर की हम तो बोल रहा कि अगर आप आस पास जाना छ ऑफिस जाना छ तो कोई बात नहीं स्कूल भी जाना छन बच्चा और जब जब हाई अलर्ट की बात आन तब हमारा जिलाधिकारी महोदय छुट्टी भी करना छन
1: जी।
0: लेकिन खास बात यह छ कि यह अलर्ट ये का खातिर नहीं छ बल्कि यहाँ का खातिर भी छ कि जो होने वाली दुर्घटनाएं छन होने वाली आपदाएं छन वैसे पहले कुछ व्यवस्था भी करे जा
1: बिल्कुल।
0: अगर आप घर गो में रहना छ तो दूर दार का अपना कार्यक्रम ये बात स्थगित कर रहा जखमा पैण छ गदना छन ऊ तो तैरिक जाना अपन या पुल बुग गई और आप तब भी जाना छन तो वो खतरा छ
1: जी।
0: और अगर आप संवेदनशील इलाकों में रहना छन जबकि ढूंगा आना छन भूस्खलन होना छ आप तब भी सिया छन न तो आप संबंधित विभाग तक बताना छन और न खुद अपना प्रयास करना छन कि वही जगह बटे के हटे की सुरक्षित जगह चल जाओ।
1: बिल्कुल ध्यान दीजिए चेतावनी ये के लिए जी और ये तो उन्होंने जी छू ना जन जरूरी काम छ एक बार ले जानन आप अलग बाहर पड़े हो नल आज ले माल देवता जानी कोई बग गयो बल
0: हाँ।
1: ना ही जाना छन भाई यस मौसम में कस के रखल तो ध्यान सब आप
0: अभी तो बना ऐ चुप बेटा बरखा होनी चाहिए लगा अगिनताल भी नहीं होनी की रोलो गदनों में हम नहा लियो ना बा खेल ला इन भी नीचे
1: नीचे
0: पता नहीं केला का ना छन चला साहब उनकी गोंच उठाई रहन दिया हम तो हाथ जोड़े ही करण कि बारे अपन ध्यान रखा बसगाल में आपदा प्रबंधन का जतना भी तंत्र छन उनको भरपूर उपयोग कर आप हर जनपद में हर ब्लॉक में अलग अलग आपदा प्रबंधन केंद्र छन आपदा की सूचना तुरंत समय पर दिया अपन ध्यान रखा। तो अब कार्यक्रम में इनकर था कि कुछ गीत गात हुए जी छुए बस हमें तो लगा लिया
1: ध्यान जी। कार्यक्रम में हम आज अपन श्रोताओं के सुनो कुमाऊनी गीत स्वर प्रकाश रावतक

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: जल्दी करो यार प्लीज जल्दी दूसरा कोई मैच है क्या ऐसा ही कुछ है यार बैंक जाना है दादाजी को लेके
2: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है
1: पर बैंकिंग में नहीं
3: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले अगर आप 70 साल से ऊपर हैं डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर वो भी वाजिब दरों पर
1: सीनियर सबसे पहले RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: श्रोतो प्रकाश रावत गायो भलो भल कुमाऊनी गीत बाद एक बार आज स्वागत आप सभी जाने को कार्यक्रम ग्राम जगत में
5: तो आप इन कर रहा कि गढ़वाली कुमाऊनी जो हमारे पत्रिका छे ना ओखमा पहलू पन्ना पर हम प्रस्तुत करना छु यो गढ़वाली कविता पाठ कवित्री छन डॉक्टर ममता कुंवर
6: आज जो कविता प्रस्तुत करनु वो छे हमारी गाँव की खुद आजकल बस ग्याल लग्यू छे अरे ये बस ग्याल मा हमारा अपना घर गाँव मा हमारा पुतला और हमारो गाँव के लेके पलायन वेगिन तो यू क्या सोचना बोला तो दूर प्रदेश में बैठी था मैं जो कुछ भी सोचना चाहिए कविता का माध्यम से आप सब लोगों को सामने रखना चाहूँ

यह छे मेरी गांव की खुद। अब जो अगली कविता जे वह चे अपरा उत्तराखंड का अपरा वो डाली माटी वो पानी का बना जे का वास्ता हम सब लोग होते हैं। मैं तो लग रही एक मुठ फोड़ चेंदू और अपरा उत्तराखंड की अपरा भू कानून ते अपरा उत्तराखंड की डाली बोटनी माटी ते बचोड़ो एक प्रयास।

सली। और अब जो कविता ची वो हमारा पहाड़े की नारी ते माँ बहनी तो समर्पित ची कि जो ये सोना का मैंने अभी भिड़ा सोरी धारणा बोला तो पंक्ति छे ने कि

0: ऊंचा। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुनी गढ़वाली कविता पाठ, जगह प्रस्तुत करना चाहिए डॉक्टर ममता कुंवर।
2: तो कविताओं में भी देखा बस गाल छे चौमास छे है ना चौछोड़ी हम वही बात करना छो जो कि आप करना छे तभी हम कौन बोले जान के साहब समसामयिक विषय पर बोल दो बल तुम लोग है ना।
1: बिल्कुल
2: तो इन तो छे ना कि आप कौन बस गाल

0: रामकुंड यूं हुआ,
1: जी
0: रामकुंड भी बस गाल रही थे।
1: की पत्ते
0: तो
1: हैं
0: गढ़वाली कुमाऊनी पत्रिका का दूसर पन्ना पर एक कुमाऊनी वार्ता घड़ेक मा वे सपेल जरे से दुई छुई आपक दगड़।
1: जी
0: जब हम शिक्षा की बात करना तो उखमा नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ो इन बोले जा की भूमिका अदा
1: जी
0: करनु छ,
1: जी
0: तो वही बाबत तो जरा चर्चा करे जा।
1: बिल्कुल ध्यानी जी, अब तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज छन और हम जो ये बोली भाषा के यहीं बोल लू ना भी आज कहाँ तक पूछ गए। अब विश्वविद्यालय में ले हम देख लू कि नई शिक्षा नीति के तहत गढ़वाली कुमाऊनी पढ़ाई जा और नांदिन बढ़ चढ़ बेरिया में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ले कोर्स करना छन, तो यो हमारे जी बहुत ही गर्व की बात छू कि हम ये भाषा के अघिन के पढ़ो ने। दूसर कई बार ये ऊँची कि नानतीन जब बीए कर छी वो दूसर साल कर बेर छोड़ दी छी नौकरी ही नहीं जा छी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति का अंतर्गत वो कबेरी ले आबेर अपन जो तीसर साल से वो पूर कर सकूँ और भी के जो बीए की डिग्री छी वो पूर है जल।
0: ये से अगर पैतरा छोड़ा के हम शिक्षा व्यवस्था की बात करना तो
1: जी
0: एक माँ भी बहुत सुंदर व्यवस्था चाहिए, यानी
1: स्कूली
0: आप
1: नानतीन के लिए
0: हाँ
1: जी
0: जो जूनियर चे
1: जी
0: माध्यमिक चे वे में भी बहुत सुंदर व्यवस्था करी चे।
1: हुई
0: और खास कर कि ई बात पर जोर दिए जानू चे कि जबरदस्ती कई विषय को चयन नहीं करे जा,
1: जी बिल्कुल
0: बल्कि बच्चा अपन स्वेच्छा से विषय होता बदल भी सकत।
1: हुई
0: तो वैसे हो लियो कि एक उपयोगी परक जे हम शिक्षा बोलता वो
1: जी
0: आयल न तो उनका हाँ पे पेड़ ले रहे किर से और अकला पेड़ बल तू अन्य कभी हुए सकनु मी से तब।
1: बिल्कुल वो याद नहीं हुआ मत है। और
0: हाँ
1: कुछ यो नानतेन छन की उनर विषय अच्छे गणित में और साथ में वो करण चानन संगीत, तो
0: हाँ
1: अब तसले सुविधा छे कि आप ले सकता बल।
0: तो बहुत कुछ च नई शिक्षा नीति में हमारा जो अभिभावक छन, हमारा जो गुरुजन छन
1: जी
0: और हमारा जो विद्यार्थी छन सभी
1: हुई
0: अगर मिलजुल के ये पूरी नीति था लागू कराला तो पक्की बात छ कि जो नवाचार शिक्षा की हम बात करना चाहो
1: जी
0: उकमा पूरी संभावनाएं छन नई शिक्षा नीति में। छुई बातों का बाद अब कार्यक्रम में एक गड़वल गीत हम शामिल करना चाहवा, गीतांचन सृष्टि काला।

0: आप सभी तो हमर तरफ बटे बहुत बहुत बधे। अरे भाई, आप विदेशक दिन अपन बधे अपना शुभ चिंतकों तक, अपना परिजनों तक और अपना प्रियजनों तक। बस अगर आपक जन्मवार च कोई खास दिन च आप बधे दिन जाना चिन आकाशवाणी का माध्यम से, तो आप सिर्फ 300 रुपया यानी कम से कम 15 शब्दों का दगड़ी अपनो शुभकामना संदेश आकाशवाणी का माध्यम से पहुंचा सकते। तो देर के लगा ना, जब कोई राजकीय या लोक पर्व हो या आपक जन्मवार हो, तो आप बधाई दे सक दिन अपना मित्रवरों थे, अपना प्रियजनों थे। ये का खातिर आप हमारा विज्ञापन अनुभाग से संपर्क कर सकते।
1: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
2: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
1: सच में, क्या क्या है उसमें?
2: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आज

0: आसान भाषा में एक ही पुस्तक में मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो श्रोताओं, आप सुनी शिव जागर और गीतांजलि सृष्टि काला
1: दगड़ मरा बार भी सुने आपन। और अब पत्रिका का ये अंक में शामिल करना छुआ कुमाऊनी वार्ता, कुमाऊं साहित्य में महिला वार्ताकार छिन श्रीमती राखी पांडे। लिया सुना या पूर्व प्रसारित वार्ता।
3: नमस्कार दगड़ियों, आज हम बात करने वाले छा कुमाऊं साहित्य में शैणीनक योगदान पर। चूंकि समाज स्त्री और पुरुष बटी मिलबेर बढ़ा, तो यदि समाज का संपूर्ण रूप थे समझण चाचा तो आवश्यक हीन है बल्कि अनिवार्य लहजा कि हम समाजक उ अधु हिस्सक मनोभाव कल समझूं। उत्तराखंडक साहित्य में स्त्री चेतनाक पहली एहसास श्रीमती देवकी महर रचनाओं में मिलों। उनल 60 दशक में अपन साहित्य की यात्रा शुरू करी और यह यात्रा 60 वर्षों तल अधिक समय एक रहे। देवकी महर जन्म 1937 में अलमर जिल में भय। शिक्षा पूरी कर शिक्षिका के रूप में नल अपन कार्य शुरू करो और साहित्यिक गतिविधियन में सक्रिय रूप से भाग लिए। उनल हिंदी और कुमाऊनी द्विअधि भाषाओं में लिखो। इनर प्रमुख रचनाएं प्रेमांजलि, स्वाति, प्राणपुत्र शामिल छन। जहां प्रेमांजलि प्रेम व संवेदना, पहाड़ी समाज व संस्कृति, प्रेम व मुक्ति थे ओतप्रोत छ, वहीं स्वाति में जीवन असारता और वीक अर्थ खोजना चित्रण छ। उनल पहाड़ी समाज में सामुदायिक एकता को विशेषता का रूप में दिखा और वहीं पहाड़ी मनुष्यक सरल मनकल चित्रण करो कि कसी उ मेलन में खुशी मनू और धान रोपाई जस कठिन कार्य कल उस समूह में हुड़के एक थाप दगड़ उत्सव की तरह एकजुट हबेर मना। पहाड़ जैसे नाम थे ही पत्त चलो कि यहाँ जीवन आसान नहीं हैल, परंतु जीवटता ते भरी हुई त पहाड़ी मानव पहाड़ा भीतर रहबेर, मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल बिठेबेर, विषमताओं थे द्विधी हाथ करबेर और उनर आखन में आंख डालबेर, मानो ये कहने कोशिश करने कि हमें अपन आकार थे डराने की कोशिश जन करिया कि लकी तुम जतु प्रयास करला हमा जुगड़ी उतु का मजबूत फै जाल। पहाड़ में कभ त बगवाल छ, कभ त हाट थौल रामलीलाओं और कभ त पूजपाठ स्वर लगूंजो। सन 2025 में देवकी महर का नागरिक अभिनंदन करी गयो और उनन का मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दी गयो। कही गयो कि साहित्य समाजक दर्पण हूँ और ऊंचाहे दर्पण का उपयोग हो या दर्पण दिखुनक हुनर श्रेणिया प्रवीण छन। और ये प्रवीणता उत्तराखंड में शैणीनल शब्दन में पिरूण शुरू करी 1960 दौरान और फिर बाट में और महिलाएं जुड़ती चली गईं। कुमाऊं मिट्टी प्रकृति लोक जीवन और संस्कृति का जिन कुमाऊनी महिला लेखिकाओं अपन रचनाओं में सबन हबेर सशक्त ढंग से उतारण में प्रयास करो, उनमें एक प्रमुख नाम छ शिवानी गौरा पंतक। शिवानी के लेखन का कुमाऊं आत्मा लकई जा तो अतिशयोक्ति न हुल। कुमाऊं वर्णन करण वाले उनर प्रमुख कृतियों में 14 फेरे, कृष्णकली, मायापुरी, स्मृति कलश और कहानी आदि शामिल छन। 14 फेरे में समाजक परंपराओं में महिला शारीरिक मानसिक और आत्मिक संघर्षक चित्रण छ। वहीं सुरंगम और मायापुरी जस उपन्यास अलमड़ा और नंताल जस कुमाऊनी नगरक पृष्ठभूमि पर आधारित छन। उनर रचनाओं में कुमाऊं लोक संस्कृति रीति रिवाज बोली भाषा रहन सहनक जीवंत चित्रण मिलो। शिवानी लपुण उपन्यास में कुमाऊं समाजक वर्ण व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं दे बल्कि समाज में श्रेणियों और चिलिनक स्थिति काली और गोरी लड़की द्विअधिक नजरिए से समाज कष्ट ये लबता। शिवानी एक साहित्य में भाषा में कुमाऊं बोली संस्कृति और पहाड़ीपन घुल मिली छन। साहित्य में उनर योगदान लीजिए उनका पद्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिली। हिंदी की पितृसत्तात्मक आलोचनाल उनर औपचारिक मूल्यांकन कम कर दी थी लेकिन पाठकों द्वारा जो अभूतपूर्व प्यार और सम्मान उनन को दी गयो उ कैल पुरस्कार ते ठुल छ। यह क्रम में अगल महत्वपूर्ण नाम छ मृणाल पांडेक जो शिवानी गौरा पंतक चिल छ। साहित्यकार और पत्रकार मृणाल पांडेक साहित्यिक संस्कार विरासत में मिली। उ प्रसार भारतीक अध्यक्ष, साप्ताहिक हिंदुस्तानक संपादक, हिंदी दैनिक हिंदुस्तान समूह संपादक और पीटीआई बोर्ड सदस्य रह चुकी। यदि शिवानी और मृणाल पांडे कृतियों की तुलना की जाए, हम कह सकना कि शिवानी अपन रचनाओं में कुमाऊं लोक संस्कृति परंपराओं चित्रण करछी और मृणाल पांडे कथा संसार में आधुनिक स्त्री प्रमुख छन। उनर स्त्री अपन स्वाभिमान स्वतंत्रता और अधिकारों प्रति अधिक सजग छन। मृणाल पांडे उपन्यास पटरंग पुराण देवी और रास्ते पर भटकते हुए में नारी जीवनक विविध समस्या और संघर्षों को चित्रित करी गो। एक पत्रकार हुननाथ उनल समाज को बहुत पासबटी देख रखो। उनल ग्रामीण और शहरी द्व्यदी परिवेशन में महिलाओं और उपेक्षित वर्ग परेशानियों को अपन रचनाओं में स्थान दे। उनर साहित्य में वर्ण भेद छुआछूत अशिक्षा बेमेल विवाह जस सामाजिक कुरुतियों दगड़ में श्रमिक और शोषित प्रतिल संवेदनाएं दिखाई दी। साहित्य और पत्रकारिता में उनर योगदान लीजिए उनका हिंदी अकादमी उत्तर प्रदेश सम्मान और ओम प्रकाश साहित्य सम्मान आदि दी गई। यकड़ी में अगल नाम छ लक्ष्मी देवी टमटाक। इनर जन्म 1912 में अलमड़ में भय। उस समय में उत्तराखंड में महिलाओं की शिक्षा स्तर अत्यंत निम्न छी। विशेषकर दलित समाजक महिलाओं लिजी तो शिक्षा प्राप्त करन बहुत कठिन छी। यह समय में उनल स्नातक उपाधि हासिल की और वो उत्तराखंड पहली दलित महिला स्नातक बनी। बाद में उनल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा ल प्राप्त करी। यह उपलब्धि उस समय एक सामाजिक परिवेशक क्रांतिकारी घटना छी। उनल साहित्य का केवल मनोरंजनक साधन नहीं मन बल्कि समाज सुधारक माध्यम ल बढ़ाओ। उनर लेखन में कुमाऊँ साहित्य का एक सामाजिक दिशा प्रदान की। उमांछी कि साहित्य तभी सार्थक हूं जब वो समाज वंचित वर्ग आवाज बढ़ाओ। उनर द्वारा समता पत्रिका का संपादन ल की गो। भाषा सरल और प्रभावशाली छी और जनता के समझ अनुरूप ल हो छी। यह कारण उनर विचार दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकी। कुमाऊँ साहित्य में महिला चेतना को विकसित करने में लक्ष्मी देवी टमटाक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा। वे कुमाऊँ प्रारंभिक नारीवादी विचार को मैं लगी नहीं जा सकूं। उनल यह संदेश दो कि सामाजिक परिवर्तन सबनहबे प्रभावी माध्यम शिक्षा छ। उनर सबनहबे बड़ी विशेषता यह छी कि उनल साहित्य और सामाजिक कार्यन का अलग अलग निमान उज्जैल विषय पर लिखी उई दिशा में सामाजिक स्तर पर कार्यल कर छी। ये कारण छ कि उनर लेख केवल विचारों तक सीमित न रही और सामाजिक परिवर्तन माध्यम बढ़ो। उन्हें उनर साहित्य में योगदान अलीजी द्विवेदी पदक भारत भारती पुरस्कार दी गई। कुमाऊँ की साहित्य यात्रा में महिलाओं का योगदान रचनात्मक लेखन तक सीमित न है बल्कि उनल सामाजिक संवेदना लोक जीवन संस्कृति परंपराओं और परिवर्तन चेतना कला शब्द दे। शिवानी गौरा पंत हो लक्ष्मी देवी टमटा और अनेक साहित्यकार महिलाओं अपने लिखन माध्यम से कुमाऊँ सांस्कृतिक विरासत का समृद्ध करो और समाज को एक नई दिशा प्रदान करी। उनर साहित्य में पर्वतीय जीवनक संघर्ष प्रकृति सौंदर्य लोक संस्कृति आत्मा और मानवीय संवेदनाओं गहरी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ो। कुमाऊँ साहित्यिक धारा में इन शैणीनल शब्द ही नहीं लिखी बल्कि सामाजिक चेतना संस्कृति स्मृतियां और भविष्य संभावनाएं अंकित करी। आज आवश्यकता छ कि हम उन रचनाओं का अध्ययन कर बे उनका नई पीढ़ी तक पहुँचाण की। स्थानीय भाषाओं में लोक साहित्य संरक्षण को बढ़ावा देने ला आज आवश्यकता छ तथा युवा लेखिकाओं का सृजन लीजी प्रेरित करना बहुत जरूरी छ। यह उनर योगदान प्रति हमार सच्ची श्रद्धांजलि हुअल और यस करबेर हमरी कुमावनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा भविष्य में निरंतर विकसित होती रहल। समाज जो हमार सामाजिक जीवनक धुरी छ वीक आधुभाग अर्थात स्त्री यदि शोषित और असहाय छ तो समाज कसी अपन श्रेष्ठ पर पहुंचल। ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक और विचारणीय छ। धन्यवाद।
2: कुमाऊँ साहित्य माँ महिला यो विषय पर आपस सुनी कुमाऊनी वार्ता और वार्ताकार छी श्रीमती राखी पांडे।
1: तो साहब पत्रिका भी हुई गया हमारे छवी बद भी हुई गई आज कुछ और रही हूँ तो हमारा श्रोताओं का बठक कि आप हमारे दगड़ जुड़ेन साहब आप तो हमन चौछोड़ी द्वार खोलिया छन
2: जी
1: है ना। आप व्हाट्सएप पर जुड़ सक दिन ईमेल पर जुड़ सक दिन ये का अलावा आप हम तो सीधा फोन भी कर सक दिन कि फोन इन कार्यक्रम भी आने वाले समय में आप तक पहुँचा लो। और 12 तारीख मत हुई साप्ताहिक कार्यक्रम न्यार द्वार की बारी छ तो ये सभी कार्यक्रम आप तक करना लगना छ ना आपका राय क्या छ ये बाबत अपना बात विचार हम तक लिखिक जरूर भेजा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अपन झटझटाक वाल पत्ते बता देनु चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आपल हमन के चिट्ठी लिखन से और बतौन से कार्यक्रम का बाबत।
1: और अपना भेवनों का खातिर जो भी उनका सुझाव छन वे पर ही हम कार्यक्रमों में बदलाव करना छो
2: जी।
1: आपन बोल फोन इन करो जी, हम कर दिया। आपन बोल व्हाट्सएप पर भी आओ, हम आ गयो है ना। ये का अलावा कुछ नहीं सुनाओ दीवल, हम न्यार द्वार सुना दे। और ये का अलावा हम ये भी बोना छो कि अजी होर भी कुछ चेणो। हाँ आपन बोल चाहे गिरगुंजन का गया बोल, हमने वो भी शुरू कर दिया। अब बोला रात 9:30 आप गिरिगुंजन कार्यक्रम में सुन ला, तो भारे अपन छोड़ बैठे हम कोई कसर नहीं करना
2: जी।
1: अब बाकी आप गोंच
2: बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे दगर जुड़न चाहनी है ना। और हमन के चिट्ठी लिखिया अमर के जो ले ये नहीं कि बहुत भल चलनो चाहिए कार्यक्रम, गट ले चलना चाहिए तबले बतौन चाहिए हमन के।
1: तो कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता एक सक्रिय श्रोता का तौर पर ही ना बल्कि एक वार्ताकार, एक कहानीकार, एक कवि का तौर पर भी आप हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हम आप तो बार बार यही खातिर बता कि कुछ नए लोग भी तो हैं जरा
2: जी,
1: है ना। आप बोल रहे यूं की तो हमन पढ़ से सुन छा
2: जी।
1: अरे तो ऊँ तभी तो दे लगाना जो नए नए लिखना छे, या बहुत दिन बैठो कभी सोची नहीं कि हम भी आकाशवाणी जाऊला। आप एक निर्धारित प्रक्रिया छे वही का हिसाब से चला, हम बताना छो आप तक। आपन कन कुछ नहीं छे, अपना आलेख हम तक भेज देने, आलेख भेज देला वह पर अपन नाम पता टेलीफोन नंबर आजकल सबसे सौंग काम वो भेज देला, हम आप तक खबर कर ला। फिर एक निर्धारित जो प्रपत्र चु हुए तब भरण आपन और तब आप हमारे यक पंजीकृत हुए चंदन। वो एक बात एक निश्चित तिथि पर आप तो हमारे केंद्र पर बुलाए जाल, वही दिन आप कविता वार्ता कहानी की रिकॉर्डिंग करे जाली और एक निर्धारित प्रसारण तिथि आप तो बताए दिए जाल कि भारे वही दिन सुन लिया। तो यो च एक सीधी प्रक्रिया, बस आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे ग्राम जगत कार्यक्रम में। तो ये हमारे तरफ बेटे की आप सभी हाथ जोड़े कि आप भी हमारे दगड़ जुड़िन। श्रोता का तौर पर तो आप छह हमारे दगड़ है ना
2: जी।
1: और अब तो ममता जी आप जन नाच ने देखा कि विस्तार चो छोड़ी होना चाहिए हमारे। आप हम तय आप रेडियो पर सुन सकते हैं
2: जी,
1: आप DTH पर सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। कितना तरीका छे ना हम तक पहुंचने का खातिर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बस उम्मीद छे कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता जुड़ी और नई छोलिक नानतीन ले जुड़ो। कई बार हम देख लू की वो सोचना तो छन लेकिन लिखना नहीं छन, बस थोड़ी देर में चैनल बदल देना, लेकिन जहाँ सुनना न पूर्ण प्रकार गीत होने तो थोड़ी देर तो सुन ले लन, लेकिन सुन बेर प्रतिक्रिया ले दियो ना हमन के दबे पत्ते चलल की नई छोली का नानती ले सुना छन हमन के।
1: हाँ जो कुण जैन जी बना बिल
2: जी
1: आजकल सब गिराना जैन हम पे तो रह गयो, लेकिन हम भी बोला आप सभी कुण की जो लोग अभी चिताना छन की हमारी बोली भाषा क्या छ
2: जी,
1: भारे आप जना लोग जरूर सुनी कार्यक्रम
2: जी।
1: किला कि हम अपनी जो मातृभाषा छ अपनी बोली भाषा छ वही में सब भी कार्यक्रम प्रसारित करना छो
2: जी।
1: और एक से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ ना, वही सकता आप तो सुंदर लगन पड़ जाए
2: बिल्कुल
1: कि हाँ भाई एक मतलब यू हूं एक मतलब यू हूं, यानी बोली भाषा तो अगर सीखने की जरूरत आने चाहिए तो यह एक चिंताजनक स्थिति चाहिए, लेकिन हाँ शुरुआत कक्षी मीटिंग भी करी जा सकती
2: जी।
1: तो शुरुआत कक्षिम बटक भी करे जा सकत, तो हाजी बटक लेना और अभी बटक लेना
2: जी
1: है ना। तो अब सुन दो तो बतौला कि कखनी जान अपन 6:50 तक अजी हम आपक दगड़ छुआ और भी छु बात लगोला आपक दगड़। ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
4: कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
8: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज के विद्यार्थी ही भविष्य में प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अधिकारी को निर्देश दिए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 के समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। हमारा आज का प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी जिन्हें जेल भेजा गया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, उत्तराखंड की पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी जिन्हें जेल भेजा गया। श्रोता अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033888643 या ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को पर्वतीय गांधी कहा जाता है। सही उत्तर है इंद्रमणि बडोनी। सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले विजेता हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की दया। आकाशवाणी समाचार देहरादून की ओर से आपको हार्दिक बधाई।
9: मेरा नाम दया है, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनती हूँ। 15 अगस्त पर जो प्रोग्राम आप लोगों ने क्वेश्चन रखा हुआ है, काफी अच्छा है।
0: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जबकि विद्यालयी छात्र छात्राओं के बीच होने वाले मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य के लिए मेरा दृष्टिकोण विषय की निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का वर्तमान और भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
10: आने वाले हमारे ये भारत के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, और उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी थोड़ा भी अगर इधर उधर होते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम सब की है। हम लोग उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब उनकी बात सुने, इसलिए आज उनकी बात सुनी है। बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव बच्चों के बीच में से आए हैं। शानदार उन्होंने सुझाव दिए हैं, जिसको निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे।
0: प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 140 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन चयनित छात्रों को नीट, जेईई, क्लैट, सेट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग सहित एवं अन्य आवश्यक शुल्कों का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर के 2,828 सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के 3,00,000 से अधिक छात्रों ने वर्चुअल तरीके से प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 15 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मॉनसून की स्थिति, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबंधन, जन जन के द्वार कार्यक्रम, सत्यापन अभियान जैसे विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने जिलाधिकारियों को मॉनसून के दृष्टिगत सतर्कता बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं।
11: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में राजस्व वृद्धि के लिए नए प्रयासों और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने SGST में कर चोरी रोकने के लिए AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अगले 4 से 5 महीनों में AI आधारित तंत्र तैयार करने को कहा गया है। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कर संबंधी सभी विभागों के डेटा को एकीकृत करने के साथ ही परिवहन विभाग के ANPR कैमरों को खनन, वन और राज्य कर विभाग के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में निबंधन और रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कार्यों के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया। श्री वर्धन ने वन और गैर वन क्षेत्रों में नए खनन प्लॉट चिन्हित करने तथा इसके लिए जिला प्रशासन का सहयोग लेने को कहा। साथ ही वन निगम द्वारा संचालित न किए जा रहे खनन और प्रकाष्ठ लॉट पर वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जड़ी बूटियों के आय की संभावनाओं का अध्ययन करने और राजस्व के नए स्रोतों में कार्बन क्रेडिट तथा नए इको टूरिज्म स्थलों के विकास को शामिल करने पर भी जोर दिया।
12: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
11: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। राजधानी देहरादून समेत अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धराली जैसी आपदाओं से भविष्य में बचाव और उनसे निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
13: धराली में आपदा आई थी, उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा कहा गया था कि आप इसको स्टडी करिए कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसको सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हमारी टीम ने पूरा स्टडी किया है कि ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ है जहाँ ऊपर के क्षेत्र से पानी आने पर आबादी को खतरा हो सकता है। तो उसमें कुछ स्थान छांटे हैं हम लोगों ने भी प्रथम चरण में, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जनपद के भाग शामिल हैं। इस पूरी सूची को हमने जिलाधिकारी के साथ में शेयर किया है, तीनों DM के साथ में मीटिंग की है और उनसे कहा कि ग्राउंड ट्रूथिंग कर लें, एक बार देख लें कि जो सेटेलाइट इमेजरी है वास्तव में कितना खतरा है, फिर इसके बाद उसमें क्या क्या किया जाएगा, इसके लिए अलग से रणनीति बना रहे हैं हम लोग ताकि भविष्य में कोई ऐसी आपदा की स्थिति बनती है तो वहाँ लोगों को नुकसान कम से कम हो।
11: चारधाम यात्रा मार्ग और सभी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रूप से खुले हुए हैं। राज्य में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हुई 1700 से अधिक सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि बंद पड़ी शेष ग्रामीण सड़कों को तेजी से खोलने का कार्य जारी है। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने ये जानकारी दी है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 30 मई को खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक देश विदेश से 2,38,000 से अधिक श्रद्धालु धाम के दर्शन कर चुके हैं। श्री बिंद्रा ने ये यात्रा के सफल संचालन में सहयोग के लिए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल, सेना, सेवादारों और संगत का आभार व्यक्त किया है। राज्य में सावन के सोमवार के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर अधिकांश शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के विभिन्न हिस्सों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस बीच बागेश्वर जिले के बाबा बागनाथ धाम में बारिश के बीच भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। बाबा बागनाथ धाम के आचार्य कैलाश उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का घंटों कतार में खड़े रहकर दर्शन का इंतजार बाबा बागनाथ के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है।
14: हमारे जो प्लेन्स में तो अभी दूसरा सोमवार चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड कुमाऊं में लगभग जो पहाड़ में गढ़वाल में जहां भी देखें, जो यहां पर लोग रहते हैं, हमारा चलता है सूर्य को लेकर के चलता है। सूर्य जब कर्क राशि पर प्रवेश करता है दरअसल में हमारा महीना आरंभ हो जाता है। जब कर्क के सूर्य गया तो एक गति जिस दिन हुई उस दिन से हमारा महीना आरंभ हो गया था और आज हमारा ये लास्ट सोमवार के रूप में देखा जाएगा। महीना ही श्रावण का है और शिव पूजा के लिए विशेष है। इस शिव पूजा से सभी के अरिष्ट दूर होते हैं।
11: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज के विद्यार्थी ही भविष्य में प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
16: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
15: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
17: हर घर सूर्य घर।
18: पापा लाइए 3,000।
19: क्यों भाई?
18: मेरी पॉकेट मनी।
19: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
18: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
19: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
18: अपना मोबाइल लाओ,
19: ले ले।
20: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
21: हर लेन देन अब है आसान।
2: श्रोताओ, उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार के बाद एक बार आज स्वागत आप सभी जानने को कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसर पाली में। मीचुआ पगदगढ़ ममता पांडे और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे आप सुनना चाह अपनी बोली भाषा को यो कार्यक्रम। श्रोताओं, बातचीत करने की ये जो चौमासक दिन उन्न ये मैं कतु चटपट खाने का हमारा मन करें न, कबक तय ठ्यालक किनार ठाड़हरी पानीपुरी पानी बताश खाने का मन करें, कबक तय घर में पकौड़ तलबीर हूके खाने का मन करूँ। लेकिन कभी हम ये सोच लूँ कि दिन भर में हम कतु बार चहा और कतु बार लून खा दिनू, चहा में मिठ हमन के बार बार मन करूँ कि रत्ते उठ्यू हमल चहा पी ले, वीक बाद हमल रोट खाई नाश्ता में वीक दगड़ चहा पी ले, दिन में फिर पी ले कह गया वहाँ पी लियो और ब्याह के फिर पी लियो, तो इतु बार हमल मिठ खा दियो और दूसर हम कोई ले चीज़ खानू फल काटनू इमेले मल में बैठे छिड़क बेर लून खा दिनू, या फिर हम मन के मन करें कि हरी साग बने छे आज तो ये मैं खूब तेल डालन, या भिंडी का साग छे मैं जब तेल में पुड़ पुड़ूँ तबे भल वल, तो यो चीज़ हम कई बार कर दिनू दिन भर में। और यो जो लून छ और मीठ छ और तेल छ यो हम इतु बार खा दिनू कि हम भूल जानू कि यो हमारे शरीर के कदू नुकसान पहुँचाल। जन लोगों के बीमारी छ शुगर की बीमारी छ या गुनन की उच्च रक्तचाप की बीमारी छ, तो उन्हें ले जी तो यू लाभप्रद बिल्कुल ना, उन्हें के लिए फैद होने वाला ना, नुकसान करल। और वे के अलावा अगर हम लोग ले जो सामान्य लोग छ हमन के अगर कोई बीमारी ना और हम इतु बार मीठ या इतु बार लून खा दिनू या तेल अधिक मात्रा में खा दिनू कबक तबिहार बैठे खाण मंगा फिर, तो वो तेल हमारे शरीर के नुकसान करें और हम पकौड़े तलनू और वो तेल बच जा, वे तेल के बार बार गर्म कर में ही साग बनून दाल छौकण, तो उमे खावेर ले हमन के नुकसान है होने वाले छे। हाँ, तो अपन शरीर का ध्यान अपने हाथ में छो, अपन घर की रसोई में छो, अपन घर वाल जो ले छन आप घर में अगर उन्हें देखभाल आप करण चाचा, तो मिठ लून और तेल कम कम खाया। तो ये जो भसक पर्याव छे ना ये यहीं पे विराम दिनू और कार्यक्रम में अब शामिल करनू आप अगले जी एक भलो भल जौन सारी गीत।
22: से केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNES पर्स प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
23: अच्छा,
22: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
23: तो उसके लिए क्या करना होगा?
22: बताता हूँ, बस आपकी आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार से लिंक के साथ ही में DBT की सुविधा भी चालू है, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें email sale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार उदगढ़, मी ममता बड़ोला। पहली मुख्य समाचार, उत्तराखंड विकास में अब विद्यार्थियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीनवाल, छात्र छात्राओं को उपयोगी सुझावों तय सरकार के नीतियों में शामिल करे जाए। सोनक सोमवार को आज हरिद्वार में कावड़ियों की भारी भीड़। वर्ष 2036 ओलंपिक को मेजबानी संकल्पक दगड़ खेल मंत्री रेखा आर्यन हरिद्वार बिटेन ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सड़कों तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दें और मुख्य सचिव आनंद वर्धना ने GST में कर चोरी रोकने को AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दें। अब समाचार विस्तार से, उत्तराखंड के विकास में अब सरकार विद्यार्थियों की सोच और सुझावों तय भी महत्व दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीनवाल की छात्र छात्राओं को उपयोगी सुझावों तय सरकार के नीतियों में शामिल करे जाए। मुख्यमंत्री आज देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम तय संबोधित करना छन।
2: आप सब लोग आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियों पर काम करना है। आप ही में से अच्छे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, अलग अलग फील्डों में, कोई एग्रीकल्चर में अच्छा फार्मर बनेगा, कोई इंडस्ट्री के किसी फील्ड में जाएगा और किसी न किसी रूप में देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। इसलिए आपके विचार क्या होने चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हर एक से मैं चाहता था कि एक एक स्टूडेंट से बात हो, उनके विचार आए और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं, उन पॉलिसी में आप सब लोगों के विचार जरूर कहीं ना कहीं सम्मिलित हों और उसमें कोई रास्ता बने, कोई पॉलिसी बने। अच्छे विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को शामिल करके उसको जो है जमीन पर उतारें, उसको फील्ड पर काम करें।
1: ये दौरान श्री धामीन मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल और मेरा सपना उत्तराखंड एक विकसित राज्य हितु मेरा दृष्टिकोण विषय पर निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ कर। कार्यक्रम में प्रदेश के 2,828 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को कक्षा 11वीं और 12वीं के 3,00,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग कर। मुख्यमंत्री दगड़ संवाद में विद्यार्थियों ने खेलों तय बढ़ावा देने को सप्ताह में 4 दिन खेल पीरियड आयोजित करने के विद्यालयों में अवसर बढ़ाण, उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्तराखंड तय अग्नि लिजाण, पर्यटन गतिविधियों तय बढ़ावा दीण और विकासक दगड़ पर्यावरण संरक्षण तय प्राथमिकता दीण जन सुझाव दें। मुख्यमंत्री ने सुझावों पर विचार कर दो अधिकारियों तय यूं के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दें। सोनक सोमवार को आज हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ छू। डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच पूर्व शहर में बम बम बोले और जय शिव का शंकरक जय घोष गुंजणु छू। हालांकि पैदल कांवड़ियों की संख्या में कमी आई छू, लेकिन भारी बरखा के बावजूद डाक कांवड़ियों को उत्साह बढ़ो छू और दिन भर उनकी आवाजाही जारी छ। ये बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शंकराचार्य चौक और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करी और सुरक्षा और हरी व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन गंगा घाटों और कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों तय सतर्कता से ड्यूटी करने का निर्देश दें। जिलाधिकारी ने कांवड़ियों से गंगा घाटों पर सावधानी बरतन और प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों को पालन करने की अपील कर। अभी अभी खबर मिली कि चमोली जिला में लगातार होने वाले बरखा के कारण नीति घाटी की तरफ जाने वाले मार्ग प्रभावित हुआ छन। तमक नाला पर बनी वैली ब्रिज भी तेज बहाव की चपेट में एकन बह गया। ये से नीति घाटी की ओर जाण वाले आवाजाही फिलहाल बाधित हुई छ। प्रभारी जिलाधिकारी विवेक प्रकाशन बताया कि क्षेत्र में लगातार बरखा होनी छ, कुछ वाहनों और एक व्यक्ति के बगने की सूचना मिल। स्थिति तय दिखते हुए SDRF और तहसील प्रशासन की टीमों तय मौके पर रवाना करेगी। ये बीच भारत तय वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्पक दगड़ राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्यन हरिद्वारक हर की पैड़ी बिटेन ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर तक 22 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाल। भारी बरखा के बावजूद यात्रा में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, एथलीट, युवा, महिला और आम मन की शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: खेल मंत्री रेखा आर्यन सुबेर हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना का बाद गंगा जल उठाई और भारत थे 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिलन तथा देश थे खेलों की दुनिया में अग्रणीय शक्ति बनान को संकल्प ले। यात्रा का दौरान हर हर महादेव, भारत माता की जय और जय देव भूमि को उद्घोष गुंजती रहे। बाटा में चार प्रमुख पड़ाव पर स्थानीय लोगों यात्रा को स्वागत करी। यात्रा का दौरान तेज बरखा का बाद भी श्रद्धालु और खिलाड़ियों को उत्साह बनी रहे। खेल मंत्री ने बोली कि यु यात्रा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी नीचे बल्कि देश का युवाओं है खेलों से जुड़ और भारत है खेल महाशक्ति बनान का संकल्प को प्रतीक भी च। हरिद्वार बड़े ऋषिकेश पहुंचने का बाद वीरभद्र मंदिर में गंगा जल से भगवान शिव को जलाभिषेक करी गये और ओलंपिक 2036 की मेजबानी का संकल्प है दोहराएंगे। यह अवसर पर खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को शुभारंभ की घोषणा भी करी। आकाशवाणी देहरादून खुण समाचार कक्ष बटे आशना कंडियाल।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सड़कों तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दें। उन आज भी सभी जिलाधिकारियों दगड़ वर्चुअल बैठक में मानसून, आपदा प्रबंधन, सड़क मरम्मत, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार और सत्यापन अभियान समेत अलग अलग विषयों की समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध सड़कों तथा खराब ड्रेनेज व्यवस्था का विवरण तैयार कर मानसून समाप्त होंद ही मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दें। उन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 साल पुरानी और खराब स्थिति वाली सड़कों तय चिन्हित कौरिक सुधारक कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दें। मुख्यमंत्री ने जिला में आपदा प्रबंधन तंत्र तय अलर्ट रखण, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में तेजी लाण और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा का निर्देश दें। उन सत्यापन अभियान के तहत सरकारी योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों तय चिन्हित कौरिक कार्रवाई करना। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में राजस्व वृद्धि को नए प्रयासों और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन SGST कर चोरी रुकने को AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया। ये गुणी अगले 4 से 5 महीनों में AI निर्धारित तंत्र तैयार करना को बोल। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कर संबंधित सभी विभागों को डेटा तय एकीकृत कनक दगड़ ही परिवहन विभाग को ANPR कैमरों तय खनन वन और राज्य कर विभाग दगड़ जोड़क निर्देश दें। उन सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में निबंधन और रिकॉर्डक रख रखाव से संबंधित कार्यों को डिजिटलीकरण पर भी जोर दे। श्री वर्धन ने वन और गैर वन क्षेत्रों में नया खनन लॉट चिन्हित करने को तथा यहाँ को जिला प्रशासन को सहयोग लेने को बोल। दगड़ ही वन निगम द्वारा संचालित नहीं करे जान वाल खनन और प्रकाष्ठ लॉट पर वन विभाग तय आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दें। मुख्य सचिव ने जड़ी बूटियों से आ की संभावनाओं का अध्ययन करण और राजस्व के नया स्रोतों में कार्बन क्रेडिट तथा नए इको टूरिज्म स्थलों के विकास तय शामिल करने पर जोर दें। देहरादून के सहजपुर विकास खंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस बार हर घर तिरंगा अभियान को हतन तैयार कर तिरंगा बनाना छन। शंकरपुर स्थित सिलाई यूनिट में महिलाओं ने अब तक 5,000 से ज़्यादा सूती कपड़ों को तिरंगा तैयार करें। रीप और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्थापित इन सिलाई यूनिट में 15 से 20 जननी राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का काम करना छन। महिलाओं के अनुसार सिलाई यूनिट के माध्यम से उतर घोरक नजदीक ही रोजगार को मौका मिलो छ। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि रीप परियोजना के तहत समूह की जननियों ने अब तक 5,000 से ज्यादा तिरंगा तैयार करे।
5: रीप परियोजना के तहत हमने सहजपुर ब्लॉक में एक सिलाई यूनिट का स्थापना की थी और उसी सिलाई यूनिट में हमारी जो आस्था क्लस्टर की महिलाएं हैं वो इसमें झंडा बनाने का काम कर रही हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा झंडे बनाए जाते थे पर क्योंकि अब इनको एक

प्रॉपर यूनिट सेटअप करके दिया है, तो इस बार इनका बहुत लार्ज स्केल पे झंडा बनाने का योजना है और इसमें हमारी लगभग 15 से 20 महिलाएं हैं जो इसमें झंडा बनाने का कार्य करेंगी। बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव भी है और अच्छा कार्य भी, इनको मतलब आमदनी में भी इनकी काफी बढ़ोतरी इससे होगी।

0: 10 अक्टूबर को बंद भल। 23 मई को कपाट खुनक बाद अब तक 2,38,000 से ज्यादा श्रद्धालु नु दर्शन करें। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। उत्तराखंड विकास में अब विद्यार्थियों की भूमिका भेल महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीनवाल छात्र छात्राओं के उपयोगी सुझावों तय सरकारक नीतियों में शामिल करे जाए। स्वर्णक सोमवार को आज हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़। वर्ष 2036 ओलंपिका को मेजबानी संकल्पक दगड़ खेल मंत्री रेखा आर्यन हरिद्वार ब्रिटेन ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सड़कों तय गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। और मुख्य सचिव आनंद वर्धना ने SGST में कर चोरी रोकने को AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। यही दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों के यू अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, और मैं हूं आपका साथी मधुसूदन नौटियाल। किसान साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इन दिनों खेती किसानी में आप जुटे होंगे और साथ ही साथ पशुओं की देखभाल में भी आपका समय गुजर रहा होगा। आखिर किसान का जीवन ही ऐसा है कि सुबह की पहली किरण के साथ खेत और पशु, और फिर दिन भर मेहनत के बाद परिवार की देखभाल। जी हाँ, यही तो है हमारे मेहनतकश किसानों की कहानी। साथियों, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में खेतों में हरियाली बढ़ने के साथ पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता तो बढ़ रही है, लेकिन यही मौसम पशुओं में कई तरह के परजीवियों के पनपने के लिए भी अनुकूल होता है। गीली और नम जमीन, दूषित चारा, पानी और पशुओं के रहने की अस्वच्छ जगह के कारण परजीवियों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में पशुपालकों के लिए पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज के कृषि जगत कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, पशुओं की अंतः व बाह्य परजीवियों से सुरक्षा के बारे में। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पशुओं में मुख्य रूप से दो प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, पहले अंतः परजीवी और दूसरे बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी वे परजीवी होते हैं जो पशु के शरीर के अंदर, विशेष रूप से आंतों, पेट या अन्य आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कृमि या कीड़े प्रमुख होते हैं। इनके कारण पशुओं में भूख कम होना, वजन कम होना, दस्त या कब्ज, पेट फूलना, कमजोरी, खून की कमी और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। छोटे बछड़ों और कमजोर पशुओं पर इनका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बाह्य परजीवी पशु के शरीर की बाहरी सतह पर रहते हैं। इनमें जूं, किलनी, पिस्सू और माइट्स प्रमुख हैं। ये पशुओं का खून चूसते हैं या त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं। किलनी और अन्य बाह्य परजीवी कई संक्रामक रोगों को एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकते हैं, इसलिए इनसे बचाव केवल पशु के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पशुधन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। किसान साथियों, अब सवाल है कि इन परजीवियों से पशुओं को कैसे बचाया जाए। सबसे पहला उपाय है, पशुओं के रहने की जगह को साफ सुथरा रखा जाए। पशुशाला को नियमित रूप से साफ रखें, गोबर और गंदगी को प्रतिदिन हटाएं तथा फर्श को यथासंभव सूखा रखें। बरसात के मौसम में पशुशाला को पानी जमा न होने दें, क्योंकि नमी और गंदगी परजीवियों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण देती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, स्वच्छ चारा और पानी। पशुओं को साफ और ताज़ा पानी पिलाएं, चारे और मिट्टी से उसे बचाएं, गंदे पानी के संपर्क में वो ना आ पाएं। विशेष रूप से बरसात के दिनों में ज़मीन पर पड़ा हुआ या दूषित चारा पशु को ना

खिलाएं। साफ सुथरा चारा ही पशु के लिए लाभदायक होगा। अंतः परजीवियों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवाओं का उचित समय पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसान भाइयों ये ध्यान रखना चाहिए कि कृमिनाशक दवा अपनी ओर से बार बार या मनमाने ढंग से न दें। पशु की प्रजाति, आयु, वजन, स्वास्थ्य और स्थानीय परजीवी प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सक की सलाह से उचित दवा और मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। विशेषकर छोटे बछड़ों, गर्भवती पशुओं और कमजोर पशुओं के मामले में ये अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी, उनसे बचाव के लिए पशुओं के शरीर को नियमित जाँच करते रहें, विशेषकर कानों के आसपास, गर्दन, पूंछ के नीचे, जांघों और त्वचा की सिलवटों में किलनी या जूं दिखाई दे सकती हैं। यदि परजीवी दिखाई दें तो पशु चिकित्सक की सलाह से उपयुक्त स्प्रे, डिप या अन्य पशु चिकित्सा उपचार कराया जा सकता है। ध्यान रखें कि बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का प्रयोग हमेशा लेबल पर दिए निर्देश और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। दवा की मात्रा अधिक कर देना पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसान साथियों, यदि किसी पशु में अत्यधिक कमजोरी, लगातार दस्त, खून की कमी, दूध उत्पादन में अचानक गिरावट, शरीर पर बहुत अधिक किलनी या गंभीर त्वचा संक्रमण दिखाई दे तो पशु को अलग करके तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसान साथियों, इस जानकारी के बाद अब समय हो चला है संगीतमय विराम का। आइए आपको सुनवाते हैं एक रागिनी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: किसान साथियों इस रुहेलखंडी लोकगीत के पश्चात अब समय हो गया है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है नींबू के बागों में सामयिक कार्य। डॉक्टर रश्मि पंवार से इस विषय पर महत्वपूर्ण बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रश्मि पंवार जी। मैम आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: मैम जैसे कि हमारे किसान भाइयों खेतों में नींबू के बाग लगे हुए हैं तो इस समय ऐसे कौन कौन से जो है समसामयिक कर रहे हैं हम कार्य अपने नींबू के बागों में, तो इसमें सबसे पहले बात हम करते हैं मैम कि उचित जल का जो प्रबंधन है कैसे करें। मैम
3: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमें पता ही है कि इस समय जो है वर्षा ऋतु चल रही है और जो है मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफी जो है बारिश हो रही है और भूस्खलन जैसी जो है समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो अगर मैं इस स्पेसिफिकली नींबू के बागों की अगर बात करूं तो नींबू को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिक नमी पाकर के इसमें फफूंद संबंधित रोगों का पनपना बहुत जल्दी होता है और कीट व्याधियों से पूरा का पूरा बाग जो है रोगग्रस्त हो जाता है जो अल्टीमेटली हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है। तो इसके लिए नींबू के बागों में उचित जल निकासी प्रबंधन बेहद आवश्यक है क्योंकि हमें जो है पहली बात तो जो हमारा फील्ड है हमारा जो बाग है उसमें ढलान रखा जाए ताकि पानी भरे ही नहीं और पानी भरे तो हम जो है उसकी निकासी का तुरंत प्रबंध करें। दूसरा ये क्योंकि वर्षा ऋतु है और इस समय घास एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो बागों में ये देखा जाता है कि जो हमारे किसान हैं वो थोड़ा सा इस समय लापरवाही कर देते हैं, बागों में घास हो रही है उस पे कि ठीक है बारिश का मौसम है लेकिन ये घास नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर घास की जो है कटाई और साफ सफाई हमें जो है खरपतवार प्रबंधन जो है जरूर करना चाहिए क्योंकि

0: ये जो है कीट व्याधियों को आमंत्रण देते हैं। जितना जो है घास रहेगी जो है पौधे के आसपास, उतना जो है कीट व्याधियां पनपने का उतना ही मौका मिलता है। तो वहां पे जो थाला है, क्योंकि हमारे बाग है, पौधा है, तो वहाँ पे थाले की साफ सफाई की जाए, पूरे बाग में एक बार हैरोइंग कर दी जाए ताकि साफ सफाई जो है बनी रहे। और थाले की साफ सफाई करके साथ ही साथ जो है वहाँ पे गुड़ाई की जा सकती है, ठीक है, जिससे कि जो वहाँ पे अगर कुछ कीट का या व्याधियों का भी जो है तो उसको जो है उसकी साइकिल को ब्रेक किया जा सके। तो वहाँ पे हम अच्छे से जो है गुड़ाई करते हैं वहाँ पे, और थाले की बढ़िया से बना करके साफ सफाई करें। इसके अलावा जो दूसरे अगर मैं बात करूं तो इस समय जैसे मैं अगर लेमन की बात करती हूं तो फल हमारा है इस समय, क्योंकि ये कई पिकिंग में होता है तो फल है। फल जो परिपक्व अवस्था वो प्राप्त हो रहे हैं उनकी समय से तुड़ाई करते रहे, नहीं तो उस पर भी व्याधियों का अटैक हो सकता है, व्याधियां आ सकती हैं। तो हम जो है नियमित रूप से फल की तुड़ाई करते रहे, और फल की तुड़ाई के साथ साथ जो हमें दिख रहा है कि रोगग्रस्त शाखाएं हैं या कुछ रोगग्रस्त जो है ऐसे पौधे हैं तो उनको जो है तुरंत ही उनका उन्मूलन कर दिया जाए, वहां से उनका रिमूव कर दिया जाए, ताकि जो है हमारा जो बाग है वो बारिश के मौसम में पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके।
1: जी मैम, अगला हमारा आपसे प्रश्न है कि जैसे कि जो नए बाग हमारे किसान भाइयों ने लगाए हैं उसमें जो पौधे लगाए हैं नींबू के, तो ऐसे नए बागों की किस प्रकार से मैम देखरेख करें हमारे किसान भाई?
0: देखिए किसान भाइयों, वैसे तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो मानसून है वो पौध रोपण के लिए सबसे उचित समय है, फल वृक्षों का पौध रोपण जो है इस समय किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कहीं कहीं तराई क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जुलाई में ज्यादा बारिश अगस्त तक भी होती है, ठीक है, तो हम जो है थोड़ा सा बारिश जब थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो हम अगस्त तक भी जा सकते हैं। जुलाई अगस्त दोनों ही ऐसे जो है जबकि हम पौध रोपण नए बाग लगा सकते हैं। तो नए बागों के रोपण के लिए जो हमें देखने की आवश्यकता है, तो हमें जो है इस समय नींबू के पौधों की रोपाई की जानी चाहिए, कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन उचित होने पर अगर हमारे पास है तो हम मार्च अप्रैल में भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे साल भर का सबसे उपयुक्त समय है वो मानसून जुलाई अगस्त को ही माना जाता है। हमारे इस समय जो है जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ये है कि रोपाई के लिए वर्गाकार और आयताकार विधि से किसान भाई नींबू के पौधों का रोपण कर सकते हैं, जिसमें जो वर्गाकार विधि है वो ज्यादा जो है स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जो है पॉसिबल है, प्रॉक्सिबल तो आयताकार भी है लेकिन इसमें जो है आप इसको ज्यादा किया जाता है, लोग ज्यादा इसको अपनाते हैं। तो किसान भाई खेत में कल्टीवेटर या देसी हल से एक से दो जुताई कर जो है ढेले रहित भुरभुरी जो है मिट्टी बना ले, उसको फिर समतल कर ले। अच्छे से तैयार कर लेने के बाद में अब 6x6 मीटर की दूरी पर 5x5 भी रख सकते हैं। इसमें जो है अगर लाइम और लेमन की मैं बात करूं तो इसमें जो है 5x5 भी रख सकते हैं, 6x6 मीटर भी रखा जा सकता है दूरी। और जो गड्ढा है वो 90x90x90 मतलब 90 लंबाई, 90 चौड़ाई और 90 गहराई, इतना जो है गड्ढा जो है खोद लें। वैसे तो ये गर्मी के मौसम में खोदने चाहिए
1: जी।
0: जब मई जून होता है तो ये गड्ढे 90x90x90 जो है सेंटीमीटर के गड्ढों को खोद करके मई जून में इनको खुला करके छोड़ देते हैं, ताकि इनके अंदर जो खरपतवार है या कीट है वो जो है तेज गर्मी के प्रभाव से, क्योंकि तापमान लगभग 40 के करीब पहुंच जाता है तो ये जो है उसमें सूर्य के ताप से मर जाते हैं। तो अब नींबू के पौधों के लिए रोपाई के 30 दिन पूर्व गड्ढों में आपको 50 से 55 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 से 2.5 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और फफूद जनित रोगों से बचने के लिए 150 ग्राम एल्जिन धूल या कोई भी जो है जिससे कि हम फफूंद ना आ पाए, जिसमें कॉपर हो, ऐसा फफूंदी नाशक जो है हम यूज कर सकते हैं, मिट्टी में मिला करके और जो है गड्ढे में भर दें। गड्ढों को दबाकर 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी की सतह के ऊपर तक भरिए, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे सेटल होती है तो वो लेवल में आ जाती है गड्ढों के, तो इतना करना चाहिए। अब गड्ढों में सिंचाई कर देते हैं ताकि मिट्टी व खाद गड्ढों में बैठ जाए। किसी ठंडे दिन शाम को गड्ढों के बीचों बीच नर्सरी में पिंडी सहित खोदे गए नींबू के पौधों की रोपाई कर दें। शाम का समय उचित रहता है क्योंकि सुबह करने पर अगर धूप आ जाती है तो पौधों को ट्रांसप्लांटिंग शॉक लग सकता है, तो शाम के समय करके और उसमें जो है हल्की सिंचाई कर सकते हैं, तो ये सबसे जो है उपयुक्त रहेगा। और उसके बाद में जब अपने पौध रोपण हो गया है तो अब निरंतर जो है हम देखभाल करें, क्योंकि छोटे पौधे हैं तो हमें जो है नींबू

0: के पौधों की निराई गुड़ाई और देखभाल और थाला बनाना, ये सब पे जो है उपयुक्त ध्यान देना चाहिए। और अनावश्यक खरपतवार ना होने दें, तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा दें, तो इससे जो है हमारे जो बाग है वो उचित रूप से अच्छा उनका प्रबंधन हो जाएगा।
1: कार्यक्रम के अंत में चलते चलते अगर कोई और महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आप हमारे किसान भाई को बताना चाहें।
0: देखिए किसान भाइयों, मूल रूप से मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है और जो है एक तो जिन किसान भाइयों को नया बाग लगाना है वो नए बाग लगा लें, लेकिन नए बागों का चुनाव जो है अच्छी किस्म के जो है आप पौधों से करें। किसी सुनिश्चित अच्छी ऑथेंटिक नर्सरी से पौधे लाएं और साथ में इसके बिल को जरूर रखें कि बाद में अगर कोई समस्या हो तो आप वहां पे उनसे जो है संपर्क कर सकें। तो आप एक अच्छी जो है नर्सरी से उपयुक्त जो है वैरायटी के पौधे ला करके लगाएं। दूसरा, जल निकासी का उचित प्रबंध रखें, बागों में अच्छी साफ सफाई रखें, उनकी देखभाल करते रहें। अगर ये सब चीजें आप करेंगे तो निश्चित रूप से ही जो है हमें अच्छी उपज मिलेगी।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रश्मि पवार जी को, जिन्होंने आज आपको बताया कि नींबू की जो हमारी फसल है, जो बाग हमारे लगे हैं, उसमें हमें कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। मैम, आप हमारी चर्चा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर रश्मि पवार के साथ भेंट वार्ता सुनी, विषय था नींबू के बागों में सामयिक कार्य। किसान साथियों, खेती का काम मेहनत के साथ साथ प्रकृति पर भी काफी निर्भर करता है। कभी अत्यधिक बारिश, बाढ़ या ओलावृष्टि फसल को नुकसान पहुंचा देती है, तो कभी सूखा, कीट और रोग किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि खेती में आने वाले संभावित जोखिमों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखें। साथियों, कृषि बीमा और जोखिम प्रबंधन इस जोखिम से निपटने का सही तरीका है। जी हाँ किसान साथियों, फसल बीमा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के अंतर्गत अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य निर्धारित जोखिमों से होने वाले नुकसान से बीमा सुरक्षा मिलती है। साथियों, फसल बीमा में किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम निर्धारित दर के अनुसार होता है। सामान्यतः खरीफ, खाद्यान्न और तिलहनी फसलों के लिए किसान का अधिकतम प्रीमियम 2%, रवि फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक, वार्षिक और बागवानी फसलों के लिए 5% तक होता है। शेष पात्र प्रीमियम पर सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि हर फसल और हर क्षेत्र अपने आप बीमित नहीं होता। संबंधित मौसम में कौन सी फसल और कौन सा क्षेत्र योजना के अंतर्गत अधिसूचित है, इसकी जानकारी किसान को अपने राज्य के कृषि विभाग, बैंक या अधिकृत बीमा कंपनी या आधिकारिक पोर्टल से अवश्य लेनी चाहिए। साथियों, फसल बीमा का लाभ लेने के लिए समय पर नामांकन कराना और सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। आवेदन करते समय फसल, क्षेत्रफल और भूमि संबंधी विवरण सही सही दर्ज कराएं, साथ ही प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह एक ही फसल पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय फसल विविधीकरण अपनाना भी जोखिम कम करने का अच्छा तरीका है। मौसम की जानकारी भी जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान बुवाई, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग तथा फसल कटाई जैसे कार्यों की योजना बना सकते हैं। तेज बारिश या आंधी की चेतावनी मिलने पर फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां पहले से की जा सकती हैं। किसान साथियों, याद रखिए, जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन सही योजना और सावधानी से उसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कृषि बीमा किसान को आर्थिक सुरक्षा देता है, जबकि वैज्ञानिक खेती और जोखिम प्रबंधन नुकसान की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए आप भी अपनी फसल की जरूरत के हिसाब से फसल बीमा, मौसम की जानकारी, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर जोखिम कम कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है एक और संगीतमय विराम का। आइए सुनते हैं ये रागिनी।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, देहरादून, 24800001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने साथी मधुसूदन नौटियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 होने को है। अब सुनिए कुमावनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़ मी कुसुमलता।

0: पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार, उत्तराखंडक विकास में अब विद्यार्थियों की भूमिका होली महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को छात्र छात्राओं को उपयोगी सुझावों के सरकारक नीतियों में शामिल करी जाल। शौनक सोमवार में आज हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़। साल 2036 ओलंपिक मेजबानी संकल्पक दगड़ खेल मंत्री रेखा आर्याल हरिद्वार बटी ऋषिकेश ताले 22 किलोमीटर कांवड़ यात्रा ले करी। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर ताले प्रदेशक सभ्य सड़कों के गड्ढा मुक्त करनक निर्देश दी। और मुख्यमंत्री सचिव आनंद बर्धनल SGST मा कर चोरी रोकनक लीजी AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करनक निर्देश दी। अब समाचार विस्तारल। उत्तराखंडक विकास मा अब सरकार विद्यार्थियों के सोच और सुझावों के लिए महत्व देल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की छात्र छात्राओं उपयोगी सुझावों के सरकारक नीतियों में शामिल करी जाल। मुख्यमंत्री आज देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के संबोधित करने छी।
1: आप सब लोग आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियों पर काम करना है। आप ही में से अच्छे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, अलग अलग फील्डों में, कोई एग्रीकल्चर में अच्छा फार्मर बनेगा, कोई इंडस्ट्री के किसी फील्ड में जाएगा और किसी न किसी रूप में देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। इसलिए आपके विचार क्या होने चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हर एक से मैं चाहता था कि एक एक स्टूडेंट से बात हो, उनके विचार आए और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं, उन पॉलिसी में आप सब लोगों के विचार जरूर कहीं ना कहीं सम्मिलित हों और उसमें कोई रास्ता बने, कोई पॉलिसी बने। अच्छे विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को शामिल करके उसको जो है जमीन पर उतारें, उसको फील्ड पर काम करें।
0: यह दौरान श्री धामिल मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल और मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेयर दृष्टिकोण विषय पर निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ करो। कार्यक्रम में प्रदेशक 2828 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों कक्षा 11वीं और 12वीं 3 लाख हबेर सकर विद्यार्थियों वर्चुअल माध्यमल प्रतिभाग करो। मुख्यमंत्री तगर संवाद में विद्यार्थियों खेलों के बढ़ावा दिन हफ्त में 4 दिन खेल पीरियड आयोजित करण, विद्यालयों में अवसर के बढ़ान, उच्च शिक्षा का क्षेत्र में उत्तराखंड के ली जान, पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावा देण और विकासक दगर पर्यावरण संरक्षण के प्राथमिकता देण जस सुझाव ले दी। मुख्यमंत्री सुझावों पर विचार करते हुए अधिकारियों के इन आधारों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दी। शौनक सोमवार पर आज हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। डांग कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच पूर्व शहर बम बम भोले और जय शिव शंकरक जय घोषल गूंज नौ छी। हालांकि पैदल कांवड़ियों की संख्या में कमी आ रही, लेकिन भारी दियोग बावजूद डांग कांवड़ियों का उत्साह बनी हुई छू और दिन मान आ जाण रहो। यो बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल शंकराचार्य चौक और आसपासक क्षेत्रों का निरीक्षण करबीर सुरक्षा और दोहर व्यवस्थाओं जायजा ले ली। उन्होंने गंगा घाटों और कांवड़ बाटों पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सतर्कता ड्यूटी करने का निर्देश ले दिए। जिलाधिकारी कांवड़ियों ने गंगा घाटों पर सावधानी बरतनक और प्रशासनिक सुरक्षा निर्देशों पालन करने का अपील ले करी। यो बीच भारत तक साल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलनानक संकल्पक दगर राज्य खेल मंत्री रेखा आर्याल हरिद्वारक हर की पैड़ी बटी ऋषिकेशक वीरभद्र मंदिर ताले 22 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली। भारी दियोग बावजूद यात्रा में ठोल संख्या में खिलाड़ी, एथलीट, युवा श्रेणी और आम मनखिले शामिल हई। प्रस्तुत छो एक रिपोर्ट।
2: खेल मंत्री रेखा आर्याल आज रत्ते हर की पौड़ी पर पूछपाठ करने के बाद गंगा जल उठाए और भारत के 2036 ओलंपिक मेजबानी मिलन और देश के खेलों की दुनिया में अग्रणी शक्ति बनुनक संकल्प ले। यात्रा के दौरान हर हर महादेव, भारत माता की जय और जय देवभूमि उद्घोष गूंज दे रही। बाट में 4 प्रमुख पड़ावों पर वांग जानिनल उनर यात्रा का स्वागत करो। यात्रा के दौरान तेज बरखा के बावजूद ले श्रद्धालुओं और खिलाड़ियों उत्साह बनी रहो। खेल मंत्री को कि यो यात्रा केवल धार्मिक आस्था जुड़ी न है बल्कि देशक युवाओं के खेल थे जोड़न और भारत के खेल महाशक्ति बणुनक संकल्प प्रतीक ले छु। हरिद्वार पठे ऋषिकेश पुजनक बाद वीरभद्र मंदिर में गंगा जलल भगवान शिव के नवाई गयो और

0: ओलंपिक 2036 मेजबानीक संकल्प के दोहराई गयो। यो अवसर पर खेल मंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंडक पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुभारंभक घोषणा ले करी। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बठे ममता पांडे।
1: चमोली झील में लगातार है रही दियो कारण नीति घाटी ओर जाने वाला बाट प्रभावित है रो। तमक नाल में बनी वैली ब्रिज ले तेज बहावक चपेट में एबेर बग्गो। येल नीति घाटी ओर आवाजाही फिलहाल रोक है ली। प्रभारी जिलाधिकारी विवेक प्रकाशल बता कि क्षेत्र में लगातार तेज दियो हुनो कुछ गाड़ियों और एक मनखिक बगना सूचना ले मिल ले। स्थिति के देखते हुए SDRF और तहसील प्रशासनक टीमों के मौके लीजिए रवाना कर हेलो।
2: मौनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल 15 अक्टूबर ताले प्रदेशक सभे सड़कों के गड्ढा मुक्त करनक निर्देश दी है ली। उन्होंने आज सभे जिलाधिकारियों दगड़ वर्चुअल बैठक में मानसून आपदा प्रबंधन सड़क मरम्मत जनजन की सरकार जनजन का द्वार और सत्यापन अभियान दगड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा ले करी। मुख्यमंत्री मानसूनक दौरान क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध सड़कों और खराब ड्रेनेज व्यवस्था का विवरण तैयार कर मानसूनक खत्म होते ही मरम्मत काम शुरू करने के लिए को उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 साल पुरानी और खराब स्थिति वाली सड़कों के चिन्हित कर उनर सुधारक कार्य योजना बनाने के निर्देश ले दिए। मुख्यमंत्री जिला में आपदा प्रबंधन तंत्र के अलर्ट रोनक जन जन की सरकार जन जन का द्वार कार्यक्रम में तेजी लाणक और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नियमित समीक्षा निर्देश दिए। उन्होंने सत्यापन अभियान के तहत सरकारी योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों के चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए ले को मुख्य सचिव आनंद वर्धनल प्रदेश में राजस्व वृद्धि के लिए नई प्रयासों और तकनीक का इस्तेमाल पर जोर दी। उन्होंने SGST में कर चोरी रोकने के लिए SI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। यह के लिए अगले 4/5 महीनों में AI आधारित तंत्र तैयार करने के लिए कई जेरो। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव कर संबंधित सभी विभागों के डेटा के एकीकृत करने दगड़ ही परिवहन विभागक ANPR कैमरों के खनन वन और राज्यक कर विभागक दगड़ जोड़नक निर्देश ले दिए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में निबंधन और रिकॉर्डक रख रखाव बटी संबंधित कामों डिजिटलीकरण पर ले जोर दी। श्री वर्धनल वन और गैर वन क्षेत्रों में नई खनन लॉट चिन्हित करण और यक लीजी जिला प्रशासनक सहयोग लेनक लीजी ले को दगड़ ही वन निगम द्वारा संचालित नी करी जरी खनन और प्रकाष्ठ लॉट पर वन विभाग के आवश्यक कार्रवाई निर्देश ले दी। मुख्य सचिव जड़ी बूटियों बटी आयक संभावनाओं का अध्ययन करनक और राजस्व नई स्रोतों में कार्बन क्रेडिट और नई इको टूरिज्म स्थलों विकास के शामिल करण पर ले जोर दी। देहरादूनक सहसपुर विकास खंड में स्वयं सहायता समूहक श्रेणियों यो बार हर घर तिरंगा अभियानक लीजी हाथल तैयार करी गई तिरंगे के बड़ा नहीं। शंकरपुर स्थित सिलाई यूनिट में श्रेणियों अब ताले 5,000 हबेर ज्यादा सूती कपड़ों तिरंग तैयार करहली। रीप और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनक माध्यमल स्थापित यो सिलाई यूनिट में 15/20 श्रेणी राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने काम कर नही। के अनुसार सिलाई यूनिटक माध्यमल उनके घरक पास ही रोजगारक अवसर मिली छू। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ताल बता कि रीप परियोजना के तहत समूहक श्रेणियों अब ताले 5,000 हबे ज्यादा तिरंग तैयार कर हेली।
3: रीप परियोजना के तहत हमने सहसपुर ब्लॉक में एक सिलाई यूनिट का स्थापना की थी और उसी सिलाई यूनिट में हमारी जो आस्था क्लस्टर की महिलाएं हैं वो इसमें झंडा बनाने का काम कर रही हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा झंडे बनाए जाते थे पर क्योंकि अब इनको एक प्रॉपर यूनिट सेटअप करके दिया है तो इस बार इनका बहुत लार्ज स्केल पे झंडा बनाने का योजना है और इसमें हमारी लगभग 15-20 महिलाएं हैं जो इसमें झंडा बनाने का कार्य करेंगी। बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव भी है और अच्छा कार्य भी इनको मतलब आमदनी में भी इनकी काफ़ी बढ़ोतरी।

0: क्षेत्रीय से होगी।
1: जिला प्रशासन और हर घर तिरंगा अभियान बटी जुड़ी लोग ले समूहक श्रेणियों दें तिरंग खरीद नहीं, यह श्रेणियों के रोजगारक दगड़ ही अपु प्रतिभा दिखाणक और आर्थिक रूपल मजबूत होनक अवसर मिलनो। चमोली स्थित सिखों पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिबक कपाट यो साल 10 अक्टूबर के बंद होल। 23 मई के कपाट खुलनक बाद अब ताले 2,38,000 हबे ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन कर हेली। आखिर में मुख्य समाचार आई। उत्तराखंड विकास में अब विद्यार्थियों भूमिका होल महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को छात्र छात्राओं को उपयोगी सुझावों के सकारक नीतियों में शामिल करी जल। सावण सोमवार में आज हरिद्वार में कांवड़ियों भारी भीड़। साल 2036 ओलंपिकक मेजबानी संकल्पक दगड़ खेल मंत्री रेखा आर्याल हरिद्वार बटी ऋषिकेश ताले 22 किलोमीटर कांवड़ यात्रा ले करी। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर ताले प्रतिशत सभी सड़कों के गड्ढा मुक्त करनक निर्देश दे। और मुख्य सचिव आनंद वर्धनल SGST में कर चोरी रोकनक लिजी AI आधारित जाँच व्यवस्था विकसित करनक निर्देश दे। का दगड़ ही कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों यो अंक ये खत्म हूं। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत आपने सुना, अब सुनते हैं वेश शर्मा को फिल्म मलंग से। गीत को बोल दिए हैं कुणाल वर्मा ने और संगीत वेश शर्मा का ही है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। ये RNU देहरादून।

श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति राज्य की समसामयिक घटनाओं पर विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में मैं नीता कांडपाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में हम आपके लिए लेकर आते हैं राज्य में घटित कुछ विशेष समसामयिक घटनाएं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। श्रोताओं समसामयिक घटनाओं से जुड़ी ये खबरें न केवल आपको अपडेट रखेंगी बल्कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की, एक जिला एक खेल नीति की और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की। श्रोताओं उत्तराखंड क्रीड़ा खेल विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त 2026 से विधिवत शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य की अगुवाई में इन विश्वविद्यालय को देश के एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी चल रही है। खेल विश्वविद्यालय की अवधारणा वर्ष 2022 में रखी गई थी। इसके बाद मार्च 2025 में विधानसभा से विधेयक पारित हुआ और 5 मई 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 अस्तित्व में आया। श्रोताओं ये भारत का 11वां खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ये विश्वविद्यालय नैनीताल जिले के हल्द्वानी गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में बनाया जा रहा है। इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय के संचालन और नियम बनाने की कमान इसके कुलपति अमित कुमार सिन्हा संभाल रहे हैं। श्रोताओं अब बात करेंगे इस विश्वविद्यालय की रोजगार सृजन की। अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में धामी कैबिनेट ने विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 प्रशासनिक शैक्षणिक और तकनीकी पदों के सृजन को वित्तीय मंजूरी दी है। इन पदों पर पारदर्शी सीधे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री धामी ने गोलापार निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं ये संस्थान केवल पारंपरिक खेलों तक सीमित न रहकर यूजीसी अधिनियम की धारा 2F के तहत वैश्विक स्तर के रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित करेगा। श्रोताओं विश्वविद्यालय का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत के भविष्य के ओलंपिक लक्ष्यों के लिए एथलीट तैयार करना है। ये विश्वविद्यालय राज्य के 8 प्रमुख शहरों में बनने वाली 23 खेल अकादमियों के लिए केंद्रीय हब के रूप में भी कार्य करेगा। इसके माध्यम से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के युवाओं को खेल शिक्षा, स्पोर्ट्स, इंजरी मैनेजमेंट और कोचिंग क्षेत्र में नए रोजगार मिलेंगे। श्रोताओं अब हम बात करेंगे उत्तराखंड एक जिला एक खेल नीति की। उत्तराखंड एक जिला एक खेल नीति को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट खेल प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर ग्राउंड लेवल के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देना है। श्रोताओं अगर बात की जाए उत्तराखंड एक जिला एक खेल नीति के मुख्य उद्देश्य और विजन की तो स्पोर्ट्स हब का निर्माण। राज्य के सभी 13 जिलों को उनकी भौगोलिक स्थिति और स्थानीय रुचि के अनुसार विशेष खेल केंद्रों में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चयनित खेल के लिए उस विशिष्ट जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान, सिंथेटिक टैंक, उपकरण और कोचिंग व्यवस्था करना, इसका बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा। वहीं युवाओं को ई कल्चर यानी स्क्रीन टाइम से निकालकर पी कल्चर यानी कि फिजिकल या शारीरिक खेल संस्कृति की ओर आकर्षित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य और विजन माना जा रहा है। श्रोताओं अब बात करेंगे इस खेल नीति के प्रमुख घटकों की। पारंपरिक और आधुनिक खेल नीति में राज्य के पारंपरिक पहाड़ी खेलों के साथ साथ पैरा एथलीटों और दिव्यांग यानी डेफ बच्चों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये नीति नवनिर्मित उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर बनने वाली 23 खेल अकादमियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिल सके। वहीं चयनित खेलों के जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए बजट बढ़ा दिया गया है ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं सीधे राज्य

0: और राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में प्रवेश पा सकें। श्रोताओं, पहाड़ी जिलों में उनके ऊंचे क्षेत्रों के अनुसार एथलेटिक्स, तीरंदाजी और साहसिक खेलों पर फोकस है, जबकि मैदानी जिलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसी विधाओं को प्राथमिकता दी गई है। श्रोताओं, एक जिला एक खेल उत्तराखंड योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस नीति के तहत हर जिले में चयनित खेल के अनुसार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी, खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे और ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाया जाएगा। सरकार ने जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय खेल क्षमता को ध्यान में रखते हुए खेलों का चयन किया है। श्रोताओं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चयनित खेल इस प्रकार हैं: अल्मोड़ा में बैडमिंटन, बागेश्वर में ताइक्वांडो, चंपावत में फुटबॉल, देहरादून में शूटिंग, हरिद्वार में कुश्ती, नैनीताल में मॉडर्न पेंटाथलॉन, पौड़ी गढ़वाल में एथलेटिक्स, पिथौरागढ़ में मुक्केबाजी, टिहरी गढ़वाल में कैनिंग और कयाकिंग, रुद्रप्रयाग में वुशु, उधम सिंह नगर में साइकिलिंग, उत्तरकाशी में कबड्डी, चमोली में रेस वॉक शुरू किया जाएगा। श्रोताओं, इस योजना से उत्तराखंड के युवाओं को अपने जिले में ही उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी सामने आएंगी और खेलों को करियर के रूप में अपनाने का माहौल बनेगा। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी होगी, युवाओं में फिटनेस और अनुशासन बढ़ेगा, वहीं खेलों के जरिए रोजगार और करियर के अवसर बढ़ेंगे, उत्तराखंड की खेल पहचान भी मजबूत होगी। श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की। राज्य में आगामी 1 सितंबर से खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। युवा कल्याण निदेशक दीप्ति सिंह की ओर से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर से शुरू होकर संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर तक आयोजित होंगी। शेड्यूल के अनुसार 1 से 30 सितंबर तक 3 चरणों में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें अंडर 14 और अंडर 19 वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग और कराटे जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ उत्तराखंड के पारंपरिक खेल मुर्गा झपट, पिट्ठू, रस्साकसी और गोली कंचा भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे। आदेश के अनुसार खिलाड़ियों की आयु की गणना पहले 31 जुलाई 2025 को संशोधित कर अब 1 अप्रैल 2026 निर्धारित कर दिया गया है। इससे कई नए युवा खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। श्रोताओं, खेल महाकुंभ में महिला ओपन 20 से 25 वर्ग और दिव्यांगजनों, महिला पुरुष ओपन के लिए भी विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनके मुकाबले सीधे राज्य स्तर पर खेले जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशना और उन्हें राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करना है। सभी संबंधित अधिकारियों और आयोजन समितियों को न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक पारदर्शी और सुचारू आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। इसके अंतर्गत श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्ञान दर्पण, जिसके तहत आज हमने बात की देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की, एक खेल एक जिला नीति की और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की। श्रोता, उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम ज्ञान दर्पण के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी नीता कांडपाल को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। ये RNU देहरादून की विशेष प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। रात के 8 बज रहे हैं। अब हमारे अगले कार्यक्रम
2: जया भारती से संसद में आज

वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया गया।
तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम

कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

0: श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात के 8:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी वार्ता। विषय है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता और वार्ताकार हैं श्री रजनीश कुमार द्विवेदी।
2: भारत में हिंदी पत्रकारिता का जनक पंडित जुगल किशोर शुक्ल को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूल रूप से कानपुर निवासी शुक्ल जी ने भारत के पहले हिंदी भाषा के समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से 30 मई 1826 को किया था। इसीलिए

प्रत्येक वर्ष 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष तो विशेष अवसर था जब 30 मई को उदंत मार्तंड का द्विशताब्दी समारोह मनाया गया। वास्तव में हिंदी पत्रकारिता का द्विशताब्दी वर्ष है और पंडित युगल किशोर शुक्ल हिंदी पत्रकारिता के आदि संपादक हैं। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने उदंत मार्तंड के प्रकाशन की अनुमति 16 फरवरी 1826 को शुक्ल जी को प्रदान की थी। इस प्रकार कोलकाता को हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यद्यपि उदंत मार्तंड का जीवन बहुत अल्प रहा और आर्थिक कारणों से इसे 4 दिसंबर 1827 को बंद करना पड़ा, उदंत मार्तंड के अंतिम अंक में शुक्ल जी ने इसके बंद होने की घोषणा काव्यात्मक पंक्तियों से की थी। अस्ताचल को जात हैं दिनकर दिन अब अंत, इसका उल्लेख कानपुर के इतिहासविद श्री अनूप कुमार शुक्ल ने अपने एक आलेख में किया है। हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षीय यात्रा उसकी विकास यात्रा की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से लेकर अभी 10-20 वर्ष पहले तक परंपरागत तरीके से ही अपनी यात्रा जारी रखी। एक समय था हिंदी पत्रकारिता में विद्वानों और साहित्यकारों का बाहुल्य था, जैसे अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, प्रभास जोशी, अक्षय कुमार जैन। संपादकीय से लेकर कंटेंट तक में इनके व्यक्तित्व की छाप होती थी। हिंदी पत्रकारिता की ये शानदार विरासत है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी पत्रकारों ने स्वाधीनता सेनानियों की भूमिका निभाई और इस कथन को चरितार्थ किया कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वास्तव में हिंदी पत्रकारिता एक मिशन रही, सशक्त रही, संघर्षशील रही। उसने सूचना के साथ साथ ज्ञान दिया, साहित्य दिया, विचार और संस्कार दिए। हिंदी पत्रकारिता समाज की शक्ति आज भी है। सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सुधार लाने में पत्रकारों और पत्रकारिता की महनीय भूमिका रही है। समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, जो हर क्षेत्र में दिखाई देता है। हिंदी पत्रकारिता में नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी के कारण बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन और सूचना क्रांति आई। अभी तक समाचार पत्रों की पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता ही लोगों के संज्ञान में थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से उभर रही है और अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। डिजिटल युग में ऐसा होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। हिंदी पत्रकारिता अब कागज या प्रिंट तक सीमित नहीं रह गई है। अब दैनिक समाचार पत्र प्रिंट के साथ वेब पोर्टल पर डिजिटल रूप में भी आ रहे हैं। यही कारण है कि अब हिंदी समाचार पत्रों ने ई पेपर, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया माध्यमों को अंगीकार कर पाठकों तक अपनी त्वरित पहुंच बनाई है। डिजिटल पत्रकारिता प्लेटफॉर्म पर पत्रकार वीडियो, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम और सोशल मीडिया कंटेंट का सृजन कर वह सीधे दर्शकों से जुड़ रहा है। डिजिटल पत्रकारिता के युग में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार हुआ है और वह समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है। अब हिंदी पत्रकार पारंपरिक डेस्क लेखक मात्र नहीं है, बल्कि मल्टीमीडिया स्टोरी टेलर में परिवर्तित हो चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में निश्चित समय से हिंदी पत्रकारिता का उभार सामयिक जरूरत है, लेकिन उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। अब सुबह तक खबर बासी हो जाती है, पाठकों दर्शकों तक शीघ्र समाचार पहुंचाने का दबाव रहता है और हम साफ साफ देख रहे हैं कि आज पत्रकारों को नई तकनीक अपनानी पड़ रही है। डेटा पत्रकारिता पर निर्भर होना पड़ रहा है और सूचना के साथ उसके विश्लेषण में भी निष्णात होना आवश्यक हो गया है। आज की डिजिटल पत्रकारिता को नई मीडिया का नाम भी दिया गया है। इसमें डिजिटल तकनीक से चलने वाले मीडिया के माध्यम शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों से जानकारी और समाचार प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। यह मल्टीमीडिया आधारित है
और पारंपरिक

प्रिंट मीडिया की तुलना में अधिक तीव्र है। चित्रों, वीडियो और ऑडियो का एक साथ उपयोग कर रिपोर्ट को रोचक स्वरूप प्रदान किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी पत्रकारिता का उभार जिस तेजी से हो रहा है, उसमें मोबाइल पत्रकारिता का भी योगदान है। स्मार्टफोन के उपयोग के द्वारा समाचारों की तत्काल रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रकाशन घटना स्थल से ही कर दिया जाता है और श्रोता और दर्शक समुदाय अपडेट होता रहता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब और न्यूज़ ऐप पर लोग जिस प्रकार खबरों में रुचि ले रहे हैं और उसे पढ़ रहे हैं, वह हिंदी पत्रकारिता के लिए गर्व की बात है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की रीच बहुत बढ़ी है और मोबाइल ने लगभग हर युवा को पत्रकार बना दिया है। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज का इसमें विशेष योगदान है। ऐसा कहा और माना जाता है कि डिजिटल पर आकर हिंदी खबर कंटेंट बन गई है। हिंदी पत्रकारिता पहले समाचार पत्रों और रेडियो तक सीमित थी, वह डिजिटल का स्पर्श पाकर और समृद्ध हुई है। अब आंकड़े सरलीकृत होकर हिंदी में ग्राफ के साथ पहुंच रहे, जो पहले जटिल होते थे। अब हिंदी पत्रकारिता लाइक देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। वास्तव में डिजिटल युग में पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल गई है। पत्रकारों की भूमिका भी विकसित हो रही है, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदी पत्रकारिता अधिक गतिशील हुई है और संवादात्मक भी बनी है। समाचारों की भाषा में बदलाव आया है, उसके प्रस्तुतिकरण की तकनीक भी बदली है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, एक्स जैसे माध्यम से भी पत्रकारिता के नए रूप सामने आ रहे हैं। डिजिटल युग में लोग प्रिंट की अपेक्षा ऑनलाइन समाचार पढ़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो हर समय हर जगह उन्हें सहज उपलब्ध है। डिजिटल मीडिया को अब न्यू मीडिया का नाम दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश पाठक ने इसका सांगोपांग विवेचन करते हुए लिखा है कि न्यू मीडिया ने संचार की रफ्तार और तरीके सब बदल दिए हैं। अब तो पलक झपकते ही कोई भी सूचना देश विदेश में कहीं भी आसानी से भेजी जा सकती है। न्यू मीडिया की बात की जाए तो इसमें टेक्स्ट मैटर या कोई भी कंटेंट जिसे ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स की मदद से तैयार किया गया हो, वे सभी शामिल हैं। इन सभी कंटेंट को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग आदि माध्यमों से सभी तक भेजा जाता है। न्यू मीडिया के माध्यम से जो भी कंटेंट शेयर होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दो तरफा संवाद होता है। इसमें पढ़ने वाला, जिसे यूजर या रीडर कहा जाता है, वह अपनी प्रतिक्रिया तत्काल देता है, यानी उस कंटेंट पर तुरंत फीडबैक मिलना भी शुरू हो जाता है। न्यू मीडिया की यही खूबी इसे जन जन में लोकप्रिय बनाती है, क्योंकि न्यू मीडिया के इन माध्यमों का प्रयोग चलते फिरते कहीं पर भी किया जा सकता है। न्यू मीडिया की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब कोई भी खबर न्यू मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर पहले वायरल हो जाती है। टीवी या अखबार या मैगजीन में आने में उसे कुछ वक्त लग जाता है, तब तक न्यू मीडिया के यूजर्स और रीडर्स उसे और उससे संबंधित तमाम जानकारियां शेयर कर चुके होते हैं। डिजिटल मंच ने पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं, अभिव्यक्ति को नया आकाश दिया है, बड़ा फलक दिया है। अब पत्रकारिता जनता की पत्रकारिता बनकर लोगों तक पहुंच रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी प्रमुख समाचार पत्रों के अपने वेब पोर्टल होने से इनकी ताकत बढ़ी है, इनके ब्रांड को नए पंख लगे हैं। बहुत से ऐसे डिजिटल स्टार्टअप हैं जिन्होंने बिना प्रिंट के अपनी ऑनलाइन पहचान बनाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदी पत्रकारिता की भाषा पर भी प्रभाव पड़ा है। जनता की भाषा में कंटेंट देने के लिए इंग्लिश का प्रयोग बढ़ा, स्थानीय बोली और मुहावरों को भी शामिल किया जा रहा है। जनता की आवाज़ जनता की भाषा में उठाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी पत्रकारिता को जन आंदोलन बना दिया है। वह अब गांवों, चौपालों और चाय की दुकानों तक पहुंच गई है।

0: मीडिया विशेषज्ञ मानते हैं कि इस डिजिटल माध्यमों के आगमन ने पत्रकारिता के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। समाचारों का त्वरित प्रसार होने लगा, साथ ही उनका बाजारीकरण भी तेजी से हो रहा है। यह भी सच है कि आज का डिजिटल मीडिया या नया मीडिया, ब्लॉग, सामाजिक माध्यम और वेब पत्रिकाएं संवाद को बहुआयामी बना रही हैं। यह भी एक पक्ष है कि नई तकनीक ने सूचना की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। दूसरी बात यह है, उभर कर सामने आ रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई संभावनाएं पैदा कर दी हैं। जैसे अब किसी पत्रकार के लिए किसी एक संस्थान से जुड़ना आवश्यक नहीं रहा, वह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार कर सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी पत्रकारिता के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जहां सूचनाओं की तो भरमार है, लेकिन उनकी सत्यता और प्रामाणिकता की पहचान एक बड़ा सवाल है। डिजिटल मीडिया के कारण प्रतिस्पर्धा की भावना से सूचनाओं में तेजी आई है, विश्वसनीयता का संकट भी आया है, फेक न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है, पत्रकारों की पहचान का सवाल भी पैदा हुआ है। खबरों और विचार के नाम पर कुछ भी परोस देने वाला क्या पत्रकार ही है? पत्रकार का उत्तरदायित्व होता है कि वे सच को सामने लाए, उसकी जवाबदेही भी होती है। लेकिन डिजिटल मीडिया में कैमरा, वीडियो और मोबाइल लेकर कोई भी पत्रकार बन रहा है, फिर तथ्यों की पुष्टि कौन करेगा? हम कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभर रही हिंदी पत्रकारिता में तमाम चुनौतियों के साथ असीमित संभावनाएं हैं, वे नई तकनीक के साथ नएपन का संचार करेगी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी हिंदी वार्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता। वार्ताकार थे श्री रजनीश कुमार द्विवेदी। FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून।
2: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: सुनो ना।
2: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
4: ओ, 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700001-4242 पर।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने को है। पेश है फिल्म संगीत।
5: अक्का की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर, मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की आगाज किया हमने राहत फतेह अली खान की आवाज में इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था मेरे ब्रदर की दुल्हन, बोल थे इरशाद कामिल की और संगीत था सोहेल सेन का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हर्षदीप कौर और सपना अवस्थी के युगल स्वर में फिल्म रॉकस्टार से ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान।

आइए अब सुनते हैं श्रोताओं निखिल डिसूजा और प्रियानी वाणी के युगल स्वर में फिल्म प्लेयर्स से ये गीत। बोल आशीष पंडित के हैं और सुरों से सजाया है प्रीता।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। रात के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को

0: साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
9: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास

0: इस योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest related issues. Protests intensify in Jharkhand.

आपने ये गीत सुनी सुना फिल्म थी रॉय, गीतकार थे माफ़ कीजिएगा, गीतकार थे अंकित तिवारी, आवाज़ भी इन्हीं की थी और जो गीत को बोल दिए थे वो थे अभिनेंद्र कुमार उपाध्याय के। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म जिद से ये गीत। बोल लिखे हैं शकील आज़मी ने और संगीत है शारिब तोसी का।

नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से ये गीत आप सभी तक पहुंचा। गीत लिखा था कुमार ने और इसे संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसारी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम से हिमेश रेशमिया को। बोल समीर अंजान के हैं और संगीत हिमेश का है।

फिल्म खामोशियां का टाइटल ट्रैक आप सुन रही थी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार रश्मि सिंह और संगीत था जीत गांगुली का। अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत जिसे लिया गया है फिल्म गदर से। गीत को अपनी आवाज़ दी है अजॉय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना ने। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और संगीत उत्तम सिंह का।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। रात के 10 बजने को हैं। अब हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
3: क्वेश्चन नंबर 226 दाखिल लक्ष्मण गौरव।
4: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख, इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग, इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
3: लक्ष्मण गौरव
5: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर।

ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है। और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है। ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी सोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे, तभी हम रेगुलर पावर की स्थाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज करें, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय इसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसको उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं, टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है उस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर ट्रेड कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। ऐसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के सोल्यूशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम

0: उसमें डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, उसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लाभ किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडो जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप दिखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्ण सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय खंडकालिया जी, श्रीमान विजय खंडकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन सर। पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब नानकापल्ली डिस्ट्रिक्ट सर, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen.

0: derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
1: Honorable Minister. सभापति महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए दूसरा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन छूटे बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है, और नई गाइडलाइन मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई है। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां के भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखते हैं उसका उत्तर दे।
2: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है आपके माध्यम से। मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय को हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका जवाब दे।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है ना। यहाँ आवाज़ दिखाई नहीं देती, फिर भी दिल तक पहुँच जाती है, और जब उस आवाज़ के साथ बजता है आपका पसंदीदा गीत, तो लगता है जैसे कोई अपना ही आपसे मिलने आ गया हो। तो फिर आज कुछ ऐसे ही गीतों का सिलसिला लेकर हम आपके बीच फिर से आ पहुँचे हैं। ऐसे गीत जो आपने चुने हैं और आज आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तो ऐसे गीतों की फरमाइश आप हमें भेज डालिए। कार्यक्रम में आज मैं आपकी साथी हूँ मिताली पुनीठा। हमारा नंबर आप सब जानते हैं, फिर भी नए श्रोताओं के लिए 7088000731 7088000731। हमारे इस नंबर पर आप भेज डालिए हमें अपनी फरमाइश, और इस समय हम आपकी फरमाइशों का ध्यान रखते हुए ले रहे हैं आपकी पहली फरमाइश। ये फरमाइश हमें भेजी है, फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इनके साथ ही हमें फरमाइश भेजी है कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सादीब, नाजियाफिया, इब्राहिम सद्दाम ने। इनके साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम में हमें अगली फरमाइश मिली है। ये फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो की। इनके साथ ही हम अगली फरमाइश ले रहे हैं जो हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार की। ये अगली फरमाइश है, ये फरमाइश है हितेंद्र दास की आसाम से, और ये अगली फरमाइश ले रहे हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, और थाना टीन मोहल्ले से TW वाले इरफान खान। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म नया दौर से ये गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

श्रोताओं, आप भी हाथ बढ़ा के अपना फोन उठाइए और हमें भेज डालिए अपनी फरमाइश। देखते हैं ये अगली फरमाइश किसकी तरफ से आई है हमारे पास। ये फरमाइश हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इनके साथ ही हमें फरमाइश भेजी है। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की। साथ ही हमें फरमाइश भेजी है देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनी आहूजा, तनीषा आहूजा, सीमा द्वार से हैं ये, और चावला फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप सभी की तरफ से फरमाइश है। अगली फरमाइश हमें भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक ने। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश हमें मिली है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। ये एक और फरमाइश ले रहे हैं जो आई है ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, बिंदु और दिव्यांश नागनपुरे की। इनके साथ ही अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश हमें मिली है बिलासपुर से हैं आप अब्दुल वाही अंसारी, आमना अंसारी, साजिब अंसारी, नवीस अंसारी, सादिया अंसारी, जाहिद अंसारी, समसूल अंसारी। इनके साथ ही ये फरमाइश हमें मिली है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग की। एक और फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है अस्तोपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। इनके साथ ही ये फरमाइश करता

है, ये फरमाइश हमें भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया की। एक और फरमाइश ले रहे हैं चलते चलते। ये फरमाइश करता है जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी, आलोट, जिला रतलाम, एमपी से। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है राम और श्याम, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में स्वागत कर रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। फरमाइशों का ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। ले रहे हैं अगली फरमाइश जो हम तक आई है पद्मा टॉकीज नेपनगर मध्य प्रदेश से।

सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, इनके साथ ही हमें फरमाइश भेजी है। ये फरमाइश करता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मीराज जहां। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश आई है हम तक करूला मुरादाबाद से अय्यूब खान, ईरम गुड़िया शोएब खान की, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी की। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है, ये फरमाइश हमें आई है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, सादिक अली खान की। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश भेजी है, ये लांडू कोठाकुडम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और अम्मी, इनकी तरफ से ये फरमाइश आई है। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। अगली फरमाइश भेजी है हमें शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, विष्णु अग्रवाल जी ने। इनके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता। अगले फरमाइश करता है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। और अगली फरमाइश ले रहे हैं हम जल्दी से, ये फरमाइश करता है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। इनके साथ ही अगली फरमाइश है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। आप सबकी फरमाइश के साथ ही एक फरमाइश और शामिल कर रहे हैं, ये फरमाइश करता है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरे अब्बासी परिवार की तरफ से ये फरमाइश है। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। एक और फरमाइश हमें मिली है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आप हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं हम आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत, और ये गीत है फिल्म CID से शमशाद बेगम की आवाज़ में।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में. और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं. ये फरमाइश हम तक पहुंची है शांति निवास लेहगांव रेलवे, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े की. इनके साथ ही अगली फरमाइश हमें भेजी है. ये फरमाइश आई है कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नजीम अंसारी. इनके साथ ही हमारे पास ये अगली फरमाइश आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर राहुल. अच्छा, आपकी फरमाइश हम पहले ले चुके हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी फरमाइश पर आ रहे हैं. ये फरमाइश करता है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान. अगली फरमाइश ले रहे हैं. ये फरमाइश करता है हमारे पास सनावत से शेख मूसा मोहसिन की. और इसके साथ ही अगली फरमाइश ले रहे हैं खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मसरूर अली की. इनके साथ ही कार्यक्रम में अगली फरमाइश ले रहे हैं. ये फरमाइश करता है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी. इनके साथ ही हमारे पास अगली फरमाइश आई है. ये फरमाइश है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून की. अगली फरमाइश भेजी है. ये फरमाइश करता है फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार की तरफ से. श्रोताओं, एक बात आपको हम और बता दें कि आप सबकी, जिनकी भी हम फरमाइश ले रहे हैं, जिनके भी हम नाम ले ले रहे हैं,

तो वो बार बार जब हम मैसेज कर रहे हैं तो हमारे पास नाम रिपीट हो जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ के अलावा हम उन लोगों के नाम शामिल करें जिनके नाम रह जाते हैं। अगली फरमाइश हम ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। अगली फरमाइश ले रहे हैं कार्यक्रम में, ये फरमाइश करता है पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा। अगली फरमाइश भेजी है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और एक और फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश हम तक आई है, ये फरमाइश करता है महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज, नीरेंद्र राजपूत। अगली फरमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं, फरमाइश करता है मुकम पोस्ट फुल चिंचोली, तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी और मुलाणी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और इस ये फरमाइश करता है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम में आप सुनिए ये अगला गीत फिल्म पहचान से मुकेश की आवाज़ में।

श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और ये फरमाइश ले रहे हैं जो हम तक आई है। ये फरमाइश करता है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रथव सिंह। अगली फरमाइश है हमारे पास, ये फरमाइश करता है, ये फरमाइश हमें भेजी है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। और ये अगले फरमाइश करता है, ये फरमाइश करता है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पल्लेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। अगली फरमाइश ले रहे हैं जो हम तक पहुंची है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा की। अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश करता है, ये फरमाइश हमें भेजी है मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम की। और आगे बढ़ रहे हैं, अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश है चांदी वाली मस्जिद मुरादाबाद से मिराज अंसारी, वसीम अंसारी की। अगली फरमाइश है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। इस फरमाइश के बाद अगली फरमाइश है हमारे पास, ये फरमाइश करता है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्रा भाई ऐशबाग लखनऊ से रूपा अलाहाबादी, कुसुम गुप्ता। अगली फरमाइश हमें मिली है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान की। इसके साथ ही अगली फरमाइश ले रहे हैं, ये फरमाइश हमें मिली है गणेशपुर गंजडंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। अगली फरमाइश है, ये फरमाइश करता है दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, आबाद खान की। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत सुना रहे हैं आपको मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है फर्ज़।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हमारे पास आखिर के सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से आप सबके हम नाम ले सके। तो हमारे पास आज फरमाइश भेजी थी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। इनके साथ ही कार्यक्रम में आज फरमाइश भेजी थी वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी ने। इनके साथ ही अगली फरमाइश थी हमारे पास जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान की। ये फरमाइश हमें मिली थी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की। इसके साथ ही हमें फरमाइश भेजी थी गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे ने। कार्यक्रम में आज फरमाइश करता थे नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और इनके साथ मोहम्मद आलम हाशमी। ये फरमाइश थी पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू की। साथ ही फरमाइश करता थे अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और लाडली पोती रौनकदीप कौर। इनके साथ ही फरमाइश थी गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद अली, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, जीनत जावेद, समीरा की। साथ ही फरमाइश हमें भेजी थी, ये फरमाइश हमें मिली थी राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के समस्त परिवारजनों की तरफ से। और ये कार्यक्रम में ये फरमाइश हमें भेजी थी, ये फरमाइश मिली थी हमें पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु। और इनके साथ ही कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश ले रहे हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा की। और आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज आपने जो गीत हमारे साथ हमें भेजे, अपनी फरमाइश में शामिल किए, शायद आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ये गीत आपके बहुत करीब रहे होंगे और हमारी कोशिश रही कि आप में से ज़्यादा लोगों के हम नाम शामिल कर सकें। तो ये बात हम सब जानते हैं, रेडियो पर मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन रिश्ते बहुत लंबे होते हैं। तो हमारे साथ ये रिश्ता ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहिएगा। मैं मिताली पुनेठा अब इस कार्यक्रम से आपकी इजाज़त लेती हूं। फिर मिलेंगे किसी और नए कार्यक्रम में, नई आवाज़, नए किस्से, नए फरमाइशों के साथ और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। कार्यक्रम सम्पन्न करने की मुझे दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
3: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं